सुप्रभात, ये आकाशवाणी है। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त सन 2026। सवेरे के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। इन समाचारों के बाद आप जुड़ेंगे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्द

0: शब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। विविध भारती के कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग, डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर पर उपलब्ध हैं। इन सभी साधनों के जरिए आप विविध भारती के कार्यक्रम 24 घंटे और दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं।
4: ये है विविध भारती।
3: आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

पहले सुनते हैं आज का चिंतन। मुंशी प्रेमचंद का कथन, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं, बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना ठीक नहीं। भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लिखा जोखा। अब से कुछ देर बाद सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, आज भाग 267। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से शुरू हो रही है एक नई श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर आप सुन सकते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम। सुबह 7 भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8 समाचार प्रभात, 8:15 पर त्रिवेणी। त्रिवेणी कार्यक्रम दोबारा दिन में 2 सुना जा सकता है। सुबह 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित है अभिनेत्री मीना कुमारी पर।

सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। आज की कहानी है मिसमैच, लेखिका डॉक्टर जया आनंद। 11:30 पर मैटिनी शो कार्यक्रम होगा। जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग सुनवाया जाएगा। प्रस्तुति थी श्री कांबले। 12:05 पर यादों की महफिल, दिन में 1 बजे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम होगा। 3 बजे मन चाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम होगा। आज नाटक सुनवाया जाएगा विवाह का प्रस्ताव। मूल रूसी कहानी एंटोन चेखव की, रूपांतरकार उग्रसेन, निर्देशक मधुप शर्मा। बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत शाम 4 बजे फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 5 बजे छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर जो संगीत सरिता कार्यक्रम प्रसारित होता है उसका पुनः प्रसारण होता है शाम 6:45 पर। वर्षा चौमासा श्रृंखला की पहली कड़ी सुनिएगा शाम 6:45 पर। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल, संगीतकार जयदेव द्वारा प्रस्तुत जयमाला कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। 7:45 पर ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा, पिसनहारी का कुआं, सुनो कहानी श्रृंखला में आज इस कहानी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। हवा महल के अंतर्गत रात 8 बजे वाचन अमरकांत दुबे, प्रस्तुति हर्षवर्धन कवई। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता भगवान दादा पर। रात 10 बजे छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे मैटिनी शो में क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति थी श्री कांबले की। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान, आज भाग 267।

पवन पुत्र हनुमान सुग्रीव के गुप्तचर के रूप में श्रीराम लक्ष्मण के पास गए थे, किंतु उन्हें अपने इष्ट देव को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। सीता हरण की घटना सुनकर वे तुरंत श्रीराम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले आए, जिनकी असंख्य वानर सेना के लिए जगत जननी सीता को ढूंढ लेना असंभव नहीं। सुग्रीव ने विलाप करती परवश सीता को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हाराम हाराम कहकर रोती बिलखती सीता का एक वस्त्र वहां गिरा था। श्रीराम को धीरज बंधाते हुए सुग्रीव ने वह वस्त्र खंड उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार उन्हें श्रीराम के विश्वास और मैत्री का गौरव प्राप्त हुआ। जब श्रीराम ने सुग्रीव से उनके वन में निवास करने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई। अत्यंत स्नेही भाई बाली उनका शत्रु बन बैठा। उसने न केवल उनका राज्य बल्कि पत्नी तक छीन ली। ये सब उस मायावी राक्षस के कारण हुआ जिसका पीछा करते बाली ने यह कहकर गुफा में प्रवेश किया कि यदि वो राक्षस का वध करके 15 दिनों में लौट कर ना आवे तो उन्हें मृत मार लिया जाए। सुग्रीव ने पूरे 1 माह तक भाई की प्रतीक्षा की और गुफा से बाहर आती लहू की धार देखकर यह मान लिया कि बाली की हत्या हो गई।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता के श्रोताओं नमस्कार। आज से हम एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं जिसका शीर्षक है वर्षा चौमासा। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: शुभा जी आपका तो हम सभी, मैं व्यक्तिगत रूप से, विविध भारती परिवार की ओर से और विविध भारती के अनगिनत श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो श्रृंखला हम आरंभ कर रहे हैं वर्षा चौमासा, तो इसकी भूमिका में तो मैं अगर ज़्यादा बोलूँ तो अच्छा नहीं रहेगा, आप ही कुछ समझाएं बताएं कि आपके मन में क्या क्या सारी बातें हैं, हम कड़ी दर कड़ी बातचीत करते जाएंगे।
1: पहले तो ये बात आपको याद दिला दूं कि उत्तर भारतीय संगीत का और उत्तर भारतीय संगीत के जो विभिन्न प्रकार हैं, चाहे वो शास्त्रीय हों या उपशास्त्रीय हों या लोक संगीत हो, सभी का ऋतु से सघन संबंध रहा है। ये सत्य है एक, जो कि सर्वविदित है, सर्वमान्य है, तो इसे बार बार दोहराने की कोई आवश्यकता भी नहीं। और जो वर्षा का एक आप कह सकते हैं विशेष स्नेह रहा है संगीत के साथ, उसके बारे में भी सबको पता ही है। बल्कि मज़े की बात यह है कि बारिश ना हो सामान्य जीवन में या कम हो तो अकाल का डर पड़ जाता है,
0: आंखों से शुरू हो जाती
1: नहीं अकाल का डर हो जाता है, यदि ज्यादा हो जाए तो बाढ़ का कहर ढा सकता है। लेकिन जो रचनात्मक लोग हैं, जो कलाकार हैं, जो कि कलाकृति करते हैं, उनके लिए बारिश हो ना हो, कम हो, बूंदाबांदी हो, मूसलाधार हो, वो उसके बारे में लिखते हैं, उसे संगीत में ढालते हैं और अलग अलग प्रकार का साहित्य, अलग अलग प्रकार की रचनाएं हमें मिलती हैं। तो इससे लगता है कि वर्षा और ये जो चार मास हैं जिसमें कि बारिश हमको मिलनी चाहिए यदि कृषियों के लिए लाभदायक हम मानते हैं इसे, तो इस दौरान शायद इतनी प्रेरणा मिली है कलाकारों को कि आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा खजाना है हमारे पास जिसके जिसमें कितने भी आप गोते लगा लें तो कभी उसका अंत नहीं मिलता, इतना गहरा है वो खजाना।
0: और इसी खजाने को हम टटोलते जाएंगे कड़ी दर कड़ी। शुभा जी, वर्षा काल या बारिश या वर्षा ऋतु कहने से बंदिशें जो आपसे अब हम सुनेंगे, बहुत से ऐसे कुछ शब्द जो मन को बड़ा मोह लेते हैं। आप तो कह रही थी कि बरखा हो ना हो, बूंदाबांदी हो या अकाल हो, तो ये जो साहित्यिक रूप है शास्त्रीय संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत में या लोक संगीत में बारिश का, उसको लेके कि घने बादल, बादलों की उमड़ घुमड़, काली घटा, दादुर मोर पपीहे की बोली और बिजरी छाने वाली बदरी, और ये बदरी न सिर्फ आकाश में, आँखों में भी बदरी छा जाती है वाली बात, तो संयोग और वियोग, श्रृंगार की बातें, काफ़ी सारी चीज़ें आप हमसे बतियाते जाएंगी और हमारे सभी श्रोताओं को ये श्रृंखला बहुत ही पसंद आएगी। आज हम किस राग से या किस पद से आरंभ कर रहे हैं?
1: मैंने सोचा है कि आज जो पहली प्रस्तुति मैं करूं वो राग शुद्ध मल्हार की एक मध्यलय रचना आपको सुनाना चाहूँगी। शुद्ध मल्हार न केवल रागांग राग है, यानी कि शुद्ध मल्हार के जो अंग हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में रख के अलग अलग मल्हार के प्रकार, जो कि बहुत विभिन्न प्रकार हैं हमारे पास, इसका कुछ अंश लेके उनकी रचना की गई है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जनक सा साधक माना जा सकता है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके जो विशेष स्वर संगतियां हैं, वो आपको अन्य मल्हारों में मिलेंगी। प्राचीन राग भी है, जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ में इसे मल्हार कहा गया है, कुछ में मलार कहा गया है, कुछ में मल्लारी कहा गया है, कुछ में मेघ भी कहा गया है, मेघ मल्हार भी कहा गया है। लेकिन जो मुझे तालीम में बताया गया है कि राग शुद्ध मल्हार जो है वो ही रागांग राग है, और इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूंगी। बिलावल थाट का राग है ये, और इसमें जो विशेष स्वर संगतियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। मल्हार का आप कह सकते हैं कि जो प्राण स्वर समूह है वो एक ये है, मा

0: ये शुद्ध मल्हार का स्वरूप हमें बताया गया है और इसमें एक तीन ताल में निबद्ध रचना मैं सुनाना चाहूंगी, धूम धाम ते आई बदरिया।
1: तो धूम धाम ते आई बदरिया, वाह।
0: जो स्वर में जो इसके जो अक्षर हैं इसमें ही एक भारी भरकम एक चीज है। धूम धाम ते आई बदरिया, गरज बरसे झहरे झूम झूम।
1: झहरे
0: जी मतलब जो एक झरने की तरह जैसे फूटता है उस तरह। गरज बरसे झहरे झूम झूम, अंतरा कहता है मोरवा शोर करे पपीहा पुकारे।
1: वही जो मोर शोर करत है।
0: जी
1: जी,
0: मोरवा शोर करे पपीहा पुकारे, तापे पवन चलत सूम सूम।
1: हाँ,
0: तो ये रचना सुनाऊंगी
1: जी। ये ताल कौन सी?
0: तीन ताल,
1: तीन ताल में निबद्ध है। और शुभा जी, शुद्ध मल्हार किस जाति का राग है?
0: इसमें पांच स्वर लगते हैं तो औड़व जाती है।
1: औड़व जाती है तो मैं तो उत्कंठित हूँ ही, सुनाइए ना।

0: श्रोता मित्रों, आज की कड़ी हम यहीं समाप्त करते हैं। शुभा दीदी से हम अगली कई कड़ियों में मुलाकात करेंगे। आज शुभा जी को भी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में भूले बिसरे गीत कार्यक्रम होगा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।

0: आइए सुने भूले बिसरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अगस्त की पहली तारीख, और अब जानते हैं कि जब पहली तारीख होती है तो भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में पहला गाना कौन सा होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इस गाने को बनाने वाले लोग कौन से हैं? कमर जलालाबादी, बेमिसाल गीतकार जिन्होंने ये गाना लिखा और इसे स्वरबद्ध किया, हिंदी और मराठी के बहुत ही शानदार संगीतकार सुधीर फड़के ने किशोर कुमार की आवाज, और अगस्त के महीने का आगाज इस गाने के साथ कर रहे हैं। ये भी जरा गौर कीजिए कि 8 महीने 7 महीने बीत गए और 8वां महीना शुरू हो गया साल का।
1: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है। दिन

पुराने मेहरबान है, बड़े ही करीब है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को

0: राजा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाचने का दसाना, पाचने का दसाना, पाचने का दसाना,
0: अरे वापस नहीं।

भाभी की चूड़ियां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना। पंडित नरेंद्र शर्मा के बोल थे और संगीत सुधीर फड़के का था। आशा भोसले का स्वर, साहिर लुधियानवी, रवि, फिल्म का नाम है काजल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज का दिन याद का दिन है जाने माने शायर अली सरदार जाफरी का भी। यूं तो फिल्मों से उनका बहुत ज्यादा लंबा नाता नहीं था। अली सरदार जाफरी वो शायर हैं जिन्होंने वो नज्म कही, जब नहीं आए थे तुम तब भी तो तुम आए थे, आंख में नूर और दिल में लहू की सूरत। पर भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक ऐसा गाना जो जाफरी साहब और मजरूह सुल्तानपुरी ने मिलकर लिखा है, फिल्म का नाम फुटपाथ। तलत महमूद की आवाज, संगीत खयाम का।

फुटपाथ फिल्म का ये गीत आपने सुना। बोले बिसरे गीत कार्यक्रम आप विविध भारती से सुन रहे हैं, और आपको बता दें कि बोले बिसरे गीत कार्यक्रम के अलावा आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 बजे, और आप उस कार्यक्रम में भी पुराने गाने सुन सकते हैं। आज जाने माने अभिनेता भगवान दादा का भी जन्मदिन है, और ये गाना है उनकी पहचान। सन 1951 फिल्म अलबेला।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भई अलबेला फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना, लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजें थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल संगीत सी रामचंद्र का था। इसी के साथ आज का बोले बिसरे गीत कार्यक्रम हम यहीं खत्म कर रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में दिल एक मंदिर फिल्म का ये गीत आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में पूर्णिमा फिल्म का गाना, गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: चलो।
1: पाकीज़ा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना। कैफ भोपाली के बोल थे, संगीत गुलाम मोहम्मद का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में काजल फिल्म का गाना। साहिर लुधियानवी के बोल रवि की तर्ज।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
3: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
2: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
5: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
6: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते दो गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, त्रिवेणी की धाराएं आज मिल रही हैं बारिश की बूंदों पर। थोड़ी खुशी थोड़ा गम अपने आगोश में समेटे बारिश जब आती है तो गर्मी से निजात दिलाती है, नहीं आती तो परेशानियों का पहाड़ ठेल देती है धरती पर। लोग बूंद बूंद के लिए तरस उठते हैं। हर मौसम में छिपा होता है थोड़ा न थोड़ा कहर, ये प्रतीक है इंसानों का। हर इंसान में खामियां और अच्छाइयां होती हैं। स्वीकार कीजिए अच्छाइयां, दूर फेंकिए बुराइयां। बरसात के मौसम की खूबियों से खुशी पाइए, इसके कहर से बचने का उपाय सोचिए, तभी बरसात के मौसम की खूबसूरती को आप महसूस कर पाएंगे।

मखमल की चादर सी बिछ जाती है जब होती है बरसात। पानी से नहाए पेड़ पौधे हरे रंग की पोशाक पहनकर झूमने लगते हैं। क्या आपने सोचा है, अगर बारिश न हो तो जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या हो, जिनका जीवन यापन ही पेड़ पौधों और जलाशयों से होता है। अगर बारिश नहीं हो तो नदी तालाब सूख जाते हैं, जंगल के पशु पक्षी प्यासे ही दम तोड़ने लगते हैं। अब आप सोचेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम पेड़ पौधों को जिंदा रख सकते हैं, नए पेड़ पौधों की नई पीढ़ी तैयार कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण हमारी तरह स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ पर्यावरण से संतुलित बारिश होगी। हम बरसात के गीत यूं गाएंगे।

बरसात के सुहाने मौसम का गुणगान करना और बारिश की खूबसूरती पर फिदा होना सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, हम सबकी एक ज़रूरी जिम्मेदारी है बारिश के पानी को इकट्ठा कर संग्रह करना। वर्षा जल के संग्रहण के अंतर्गत घरों की छतों पर पड़ने वाले वर्षा जल को एकत्रीकरण के लिए बनी टंकियों से जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा पत्थर से विशेष तरह की नालियाँ बनाकर जल संग्रहण किया जाता है। खोद कर बनाए गए तालाबों का निर्माण, पत्थरों और सीमेंट से किनारा बनाकर बीच में गड्ढा खोद कर जल संग्रहण और भी बहुत सारे तरीके इजाद किए जा चुके हैं। चलिए खुद से पूछें, वर्षा जल के संग्रहण में हमारा अपना कितना योगदान है।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सुं आयो विनायक, करो ये नसीती विने धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारी।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ओले, ओले, ओले, ओले,
2: ओले, ओले। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में सुनिए चित्रलोक।
3: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
4: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
3: तुम्हीं ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
4: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
5: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
6: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
7: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।

आइए सुने चित्रलोक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 1 अगस्त की ये सुबह और मोनाली ठाकुर की आवाज। गीत अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत अमित त्रिवेदी, फिल्म का नाम लुटेरा।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह, इरशाद कामिल के बोल विशाल शेखर की तर्ज। फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। 1 अगस्त की ये सुबह के दिन लोकमान्य तिलक को भी हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: فرحان اختر اور ساتھیوں کی آوازوں میں یہ گانا آپ نے سنا. آپ کو بتا دیں کہ آج ہم مینا کماری اور بھگوان دادا کو یاد کر رہے ہیں. صبح 9:30 پر آج کے فنکار کاریکرم ابھینیتری مینا کماری پر کیندرت ہوگا, اور رات 9:30 پر ابھینیتا بھگوان دادا کو. اس کے علاوہ
1: ایک آواز جو آپ سبھی کے ذہن میں تازہ ہے اور جس سے جڑی ہیں آپ کی ڈھیر ساری ریڈیو کی یادیں.
2: میں نے یہ سوچا کہ بھارت میں تو بہت زیادہ بھاوک ہیں لوگ, کروڑوں کی سنکھیا میں سن رہے ہیں ریڈیو سے کان لگائے, تو میں نے تب اپنی آواز میں کمپن لاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میچ اب کمزور دل کے انسانوں کے لیے نہیں رہ گیا ہے.
1: جانے مانے کرکٹ کمنٹیٹر سوشیل دوشی کی زندگی کی کہانی, میٹنی شو 1 اگست دن میں 11 بجے صرف विविध भारती पर.
3: आए हाय
4: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा.
5: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए. 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है.
4: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
6: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
4: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
7: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
4: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
8: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा.
9: फोक कहते हैं आमद को. हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था. तो गडरण भवन सुयो विनायक करो ये नजीती मारा दिलीप सेन जीव धारिया.
8: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर. तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन.
10: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले.
0: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद.

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से चित्रलोक।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे राष्ट्र सेवा विविध भारती के कार्यक्रम। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.3 MHz पर। श्रोताओं, सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। इन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: फिर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटके हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाने की देशवासियों से अपील की। जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन सम्मेलन की शुरुआत। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता को विवाद समाधान का सशक्त माध्यम बताया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक गुरुवार को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। ये विधेयक छात्रों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक वीडियो में उन्होंने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध बजरी खनन करने वालों पर अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल जयपुर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने संबंधित जिला कलेक्टरों को, नोडल अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन नेटवर्क ध्वस्त करने की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में AI आधारित ऑनलाइन डैशबोर्ड, ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट मेजरी और थर्मल कैमरों के जरिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश भर में आज से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियान शुरू हो रहा है। राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद ने बताया कि सर्वे राज्य के सभी जिलों की तहसीलों और राजस्व गांवों में ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के तहत 4,62,00,000 से ज्यादा खसरों की नियमों के अनुसार गिरदावरी की जाएगी। 2,86,00,000 कृषि योग्य खसरों को सर्वे के लिए चिन्हित किया गया है। बाकी खसरों में सरकारी भूमि, गैर कृषि भूमि ई गिरदावरी की जाएगी। राज खसरा गिरदावरी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा दी गई है। गिरदावरी से प्राप्त आंकड़े फसल उत्पादन के आकलन, नीति निर्माण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्राकृतिक आपदा राहत सहित विभिन्न योजनाओं के लिए आधार बनेंगे। देश भर में आज से स्तनपान सप्ताह शुरू हो रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए परिवारों, समुदायों और स्वास्थ्य प्रदाताओं के बीच स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलाना है। नवजात शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। इस मौके पर मंत्रालय ने स्वास्थ्य पेशेवरों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों से स्तनपान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का आह्वान किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि मध्यस्थता, संवाद, सहमति और विश्वास पर आधारित विवाद समाधान की प्रभावी व्यवस्था है। साथ ही मीडिएशन न्याय तक आसान और तुरंत पहुंच सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बन रहा है। ये बात उन्होंने जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कही। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल, वाणिज्यिक और आधारभूत संरचना से जुड़े विवादों के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने ऑनलाइन मध्यस्थता में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान समय में मध्यस्थता केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि संवाद और मध्यस्थता से वर्षों पुराने विवादों का स्थायी समाधान संभव होता है।
2: संवाद और मध्यस्थता की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हार जीत से आगे बढ़कर समाधान की बात करती है। यह केवल एक कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि हमारे समाज की वह सांस्कृतिक शक्ति है जो सदियों से हमें आपस में जोड़े हुए है। आज हमारी अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ, न्याय में देरी से आम आदमी का समय, पैसा और मानसिक शांति तीनों छिन जाते हैं। ऐसे समय में मध्यस्थता एक वैकल्पिक मार्ग नहीं बल्कि समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है।
0: सम्मेलन में भारत और विभिन्न कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, विधि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और मध्यस्थ भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 2 दिन के उदयपुर और राजसमंद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आज उदयपुर के दूध तलाई में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करने के साथ चंदन वन में पौधरोपण करेंगे। इसके बाद झाडोल क्षेत्र के बीड़ा गांव में 10वीं ग्राम विकास चौपाल में शामिल होकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री उदयपुर में नारी शक्ति रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके बाद राजसमंद में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना के 39 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े शामिल होंगे। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने महिला 70 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड की रोजी रसेल को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में अरुंधति ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से पराजित किया था। आज रात भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे होने वाले फाइनल में उनका मुकाबला इंग्लैंड की चॉन्टिल रीड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भटके हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाने की अपील की। जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन सम्मेलन की शुरुआत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता को विवाद समाधान का सशक्त माध्यम बताया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब श्रोता सुनेंगे प्रोग्राम FM रेडियो पिंक सिटी।

0: के लिए है
1: चिट-चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
2: सैटरडे वीकेंड की गुड न्यूज लाता है और हमारा फोन कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाता है.
3: हेलो हेलो
2: भाई, फ्रेंड्स फन फ्रीक आउट की प्लानिंग या फिर घर पर हो फैमिली के साथ डाइनिंग,
4: किसी होटल में खाए,
2: रेडियो पिंक सिटी बनता है एक परफेक्ट पार्टनर. और हाँ, अकेले हो तो अल्टीमेट मूड फ्रेशनर. रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है. गुड मॉर्निंग जी, 9:12 हो रहे हैं, आप सुन रहे 100.3 एफएम. मैं हूँ तरुण और ये शनिवार का दिन है. जी हाँ, बहुत खूबसूरत सुबह होती है जब शनिवार का दिन ऐसा फील होता है कि छुट्टी वाला दिन हो और अगले दिन की फिर छुट्टी हो. तो दिल से स्वागत, उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन जो है बहुत ही खुशियों से भरा होने वाला है, चेहरे पर मुस्कान रहने वाली है और मन में नई ऊर्जा भी रहे और भी अच्छा, मतलब आज का दिन कमाल का हो जाए. तो अगले 50 मिनट तक हम बातें करेंगे, ढेर सारी सब दिलचस्प बातें होंगी, जैसे पसंदीदा गीत होंगे, जयपुर का हाल होगा, मौसम की चाल होगी और आज के कुछ खास दिन की जानकारियां होगी. तो एक मुस्कान के साथ चलिए शुरू करते हैं 100.3 FM, क्योंकि कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.

0: निकला वो गड्डी लेके।
1: पारा सिंह की गड्डी कहाँ होगी फास्ट और कहाँ होगी स्लो। टेम्परेचर अपडेट, टेम्परेचर अपडेट ओनली ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: बात तो ऐसी है जी कि 9:17 और 8 सेकंड हो रहे हैं। मैं हूँ तरुण और मौसम का हाल तो क्या ही कहिए। कल भी ऐसा लग रहा था कि बरस जाए बादल बरस जा, लेकिन उसने कहा नहीं बरसूंगा। मौसम अपना अंदाज दिखा कर चला जाता है, मतलब यही है कि बस हाँ भाई इंतज़ार है कि हम थाली आ गई लेकिन बस खाना नहीं मिल पाया, कुल मिला के बात ये। तो चलिए कोई बात नहीं, आज जो मौसम रहने वाला है वो देख लेते हैं कि क्या कह रहा है अभी। तो अभी 28 डिग्री सेल्सियस है और आज जो ऊपर चढ़ेगा पारा तो 3 और बढ़ जाएगा, 31 डिग्री सेल्सियस, नीचे आएगा 26 डिग्री तक। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि बारिश के कुछ चांस हैं, अब इंतज़ार करिए। वैसे मौसम तो बारिश का ही, बारिश हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मौसम क्लाउडी रहने वाला है जी, तो मतलब आनंद लीजिए। आज जो है वीकेंड की शुरुआत है, तो अब जयपुर की गलियों में आज अलग ही रौनक होने वाली है, क्योंकि कहीं परिवार के साथ घूमने का प्लान भी होगा, तो कभी कहीं चाय की महफिल चल रही होगी, अभी कॉफ़ी पी जा रही होगी, कहीं बारिश के मौसम को आनंद लेने की तैयारी होगी कि आज वहाँ चलेंगे उधर जाएंगे। अगर आप भी आज अगर घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो मौसम का तो आनंद लीजिए, लेकिन सुरक्षा और सावधानी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो बता दो मुझे 2200-0800 पर कि अगर आज पूरा दिन बिना किसी टेंशन के बिताने का मौका मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं। वैसे टेंशन होनी भी नहीं चाहिए, हम खुद ही पाल लेते हैं, है ना। तो चलिए अभी टेंशन की बात नहीं करते, उन गानों की बात कर लेते हैं जो टेंशन दूर भगाएंगे।

0: हाय मैं हूँ शाहिद कपूर। टेंशन छोड़िए, जीतिए और खुश रहिए। पर तरुण के साथ ओए हैप्पी सिंह जी, तुसी हो ना।
1: आजा प्यार की हो डील।
2: डील बोले तो
3: हाट हाट।
4: हाँ यार, सौदा सौदा।
3: ओहो,
1: दोनों डील कर सील।
3: टाइट टाइट, वेरी टाइट।

अगल बगल कौन बैठा है देख लीजिए। 9:23 है, मैं हूँ तरुण, आप सुन रहे हैं 100.3 FM। और अगल बगल की बात जब हो जाती है, जब हम कहीं टैक्सी में जा रहे होते हैं या सब लोग मिलकर कहीं जा रहे होते हैं, तो अगल बगल कोई ना कोई बैठा होता है। तो मैंने पूछा था कि भाई अब मौसम जैसे और वीकेंड होता है तो कहीं घूमने की प्लानिंग होती है, तो एक कॉल आया, उनका नाम सुनीता झाला नहीं, उन्होंने कहा कि साहब हमारा तो आज का प्लान हो चुका है, पिकनिक की तैयारी हो चुकी है, और उन्होंने 4-5 फैमिली है वो अलग अलग वो कार में अगल बगल बैठकर जाने वाले हैं और खूबसूरत जयपुर का जो नज़ारा वो देखने वाले हैं। मैंने कहा कहाँ दिखेगा ये नज़ारा मुझे भी बता दो। तो इन्होंने कहा कि साहब मैं हम जाएंगे जो खोले हनुमान जी के पास में एक रास्ता जाता है रंगीला महादेव की तरफ, और वहाँ से जब हम जयपुर को देखते हैं बारिश के मौसम में तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। वाह वाह क्या बात है। तो चलिए आप भी कहीं ना कहीं इन्जॉय कीजिए, और यही बात होती है, लाइफ इज़ टू इन्जॉय। और अपना ख्याल, अपने अपने ख्याल रखते हुए चलते जाइए, साथ में 100.3 FM सुनते जाइए, क्योंकि यही है श्याम गुलाबी शहर गुलाबी। तो 100.3 FM पर गाना प्ले कर देते हैं हम, शुद्ध देसी रोमांस फिल्म का।

0: where love needs no demands. Always leaves a smile on your face. It's radio. It's radio. It's Radio Pink City. 100.3 FM. Kuch toh khas hai. Kuch toh baat hai. Kuch kehta hai Jaipur.
1: Kuch kehta hai Jaipur.
0: Kya kehta hai Jaipur?
1: Kya kehta hai Jaipur?
2: पैलेस ऑफ विंड्स नाम है मेरा। लाल रंग से सजी 953 खिड़कियां मेरी पहचान है। श्री कृष्ण के मुकुट जैसी मेरी संरचना। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने गुलाबी लाल पत्थरों से मुझे बनवाया था। वजह थी मेरी खिड़कियों के जरिए राज परिवार की महिलाएं गलियों से निकलती सवारियों और वहां की रौनक को देखकर हर्षाया करती थी। गुलाबी नगर की शान हूं मैं, अपने जयपुर की पहचान हूं मैं। मैं कौन? मैं आपका अपना हवा महल।
3: हवा महल, हवा महल।
2: रोजाना मिलते हैं ना आते जाते, तो बस मेरा ख्याल रखिएगा क्योंकि मैं आपकी शान हूं।
0: हंड्रेड पॉइंट थ्री FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
4: चले चले चले चले, 5:30 अजमेरी गेट, घाट गेट, ट्रांसपोर्ट नगर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे बहन जी, जरा सा आगे तो बढ़ो।
5: अरे भैया जरा देख के, उफ, जगह ही नहीं है, कहाँ आगे बढ़े।
4: अरे भाई 50-50 ग्राम बढ़ो, आगे बढ़ो।
5: भैया आप आ जाओ, एक काम करो आगे।
6: अरे पूजा देख, वो सीट खाली हुई।
5: अरे अरे हाँ, अरे चल चल जल्दी चल। पर अरे पर ये बाबूजी भी तो बहुत देर से खड़ा है ना। बाबूजी आप बैठ जाइए।
7: धन्यवाद बेटी।
8: जो सुनते हैं रेडियो पिंक सिटी, वही तो खिलाते हैं मुस्कान। यही है जयपुर की पहचान।
2: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
9: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: के साथ, तुम के साथ।

गिमी सम मोर 9:34 मिनट और 54 सेकंड हो रहे हैं, और ये सम मोर वाली बात होती है कि और तो एक सुबह सुबह मेरे मन में ख्याल आया आज के दिन को देखते हुए, पूछ लूँ कि मान लो ज़रा अपनी आंखें बंद करके बस एक पल के लिए मान लो, सोच लो कि अगर कल सुबह उठे और पता चले कि पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो गया, न व्हाट्सएप, न यूट्यूब, न गूगल, न इंस्टाग्राम, न ऑनलाइन पेमेंट, न मैप्स, तो बताइए आपका दिन कैसे शुरू होगा, क्या करेंगे आप? यकीन मानिए हम में से ज़्यादातर लोग सबसे पहले यही कहेंगे, अरे वाईफाई चल क्यों नहीं रहा है, आज इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा है। तो आज बता दूं, आज एक बहुत ख़ास दिन है, आज का दिन है वर्ल्ड वाइड वेब डे, यानी www जो अपन लिखते हैं ना .com वाली बात, तो उसका आज दिन है, क्योंकि आज का दिन ही उसके लिए निर्धारित किया गया। वो सब मैं अगले घंटे बताऊंगा, लेकिन उससे जुड़े सवाल भी पूछूंगा। यानी आज का दिन उस तकनीक का दिन है जिसने पूरी दुनिया को एक क्लिक के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया, बस एक क्लिक और आप कहीं के कहीं, एक क्लिक और आपकी चिट्ठी जो है वो विदेशों तक पहुंच जाए, कहाँ भी, मतलब ईमेल के ज़रिए। तो आज हम घर बैठे बैठे टिकट भी बुक कर सकते हैं, दुनिया भर की जानकारी मिल जाती है, घंटों स्क्रॉल करके वीडियोस देखते रहते हैं, इंटरनेट भी इतना फास्ट है, अपने पसंदीदा गाने भी सुन लेते हैं, रेडियो भी सुन लेते हैं, टीवी भी उसी में देख लेते हैं, किताबें भी पढ़ लेते हैं। लेकिन एक मज़ेदार सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज का दिन है www वाला दिन, यानी वर्ल्ड वेब डे वाला दिन, तो अगर आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिले कि एक ही करेंगे सब आप एक दिन में, मतलब यही हो सकती है, तो आप कौन सा ऐप चुनेंगे? व्हाट्सएप चुनेंगे, यूट्यूब चुनेंगे, गूगल मैप चुनेंगे, या फिर जो आजकल पेमेंट वाले मैप ऐप जो है वो चुनेंगे, और क्यों चुनेंगे ये बताना आप। ये सवाल हो गया, 2200-800 पर कॉल करो, या फिर फेसबुक पेज रेडियो पिंक सिटी का जो है वहाँ पर बता दो कि अगर एक दिन के लिए आपको कहा जाए कि एक ही ऐप यूज़ करनी है तो कौन सी होगी, कौन सा ऐप चुनेंगे, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल मैप, इंस्टाग्राम, या कुछ भी, जो भी आप बताना चाहें उनमें से सिर्फ एक बताना है। 9:37, दूसरा कोई भी ऑप्शन मत बताना, ओके। 100.3 FM पर अब चालबाज फिल्म का गाना सुन लेते हैं, ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी, अब ये तकनीक जो है ऐसे ही चलती जाएगी।

0: ऑल राइट, तो फोन आ चुका है और कौन सी ऐप यूज होने वाली है देख लेते हैं। हेलो, कौन बोल रहे? अपना नाम बताइए।
1: सर मेरा नाम निकुंज है और मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा निकुंज, जो है आज WWW, तो हम दुनिया जानती है कि वर्ल्ड वेब डे जो है वो दिन है, तो बताइए कौन सी एप्लीकेशन अगर आपको कही जाएगी एक ही यूज करनी है तो कौन सी करेंगे आपसे?
1: सर दरअसल आज सैटरडे का दिन है और मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर एक एप्लीकेशन का चॉइस मिल रहा है आज के दिन तो अनडाउटेडली वो ChatGPT को जाएगा। मैं पूरे दिन ChatGPT यूज कर सकता हूँ आज।
0: अच्छा क्या उसकी खासियत होती है?
1: सर उसकी खास बात ये है कि आप मतलब वहाँ पे एक सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ ढूंढ सकते हो, आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, आप प्लान बना सकते हो, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। मतलब इट इज लाइक एन ऑटोमेशन टूल जिसमें आपको आपका दिमाग कम लगाना है और मशीन आपकी दिमाग लगाएगी।
0: तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई हम अपना दिमाग ही एक तरीके से यूज करना भूल जाएंगे?
1: नहीं, ऑब्वियसली नॉट। मेरे को लगता है AI है तो कहीं ना कहीं वो जो रिस्पॉन्स है उसके साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी मिक्स होए तब असली आउटपुट आता है। अपना इंटेलिजेंस तो लगाना ही है एनीवेज।
0: क्योंकि ChatGPT भी एंड में नीचे लिखा हुआ ये रखता है कि आई कैन मेक मिस्टेक्स।
1: यस,
0: वो कहता है कि आप फिर भी रीचेक करिए, तो ये बहुत अच्छी बात है।
1: तो ChatGPT हर रिस्पॉन्स को आप वैलिडेट करें और फिर उसी हिसाब से प्रेजेंट करें तो बेहतर है।
0: वेरी नाइस, तो आपने अपनी बता दी ChatGPT। और इनकी तरह अगर आप भी कोई बताना चाहें कि कौन सी ऐप जो है वो आप यूज़ करेंगे अगर आपको एक ही ऐप का लिखा जाए तो कौन सी होगी? 9:40 48 सेकंड, दिस इज मीतरुण।

9:43 और 28 सेकंड हो रहे हैं। मैं हूँ तरुण और बहुत सारे अलग अलग लोगों ने बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस बताए, लेकिन एक जो कमाल मैं बताऊँ, वो कहते हैं कि साहब मुझे तो है ना व्हाट्सएप जो है वो ज़्यादा पसंद है, कि सुबह आँख खुलते ही मुझे तो व्हाट्सएप देखना होता है कि किसका आया किसका नहीं आया। पूरे दिन में मैं बस उसी के नोटिफिकेशंस देखती रहती हूँ। नाम है रितिशा, तो ये कहती हैं मतलब मेरे को उसके बिना, और मैं इतनी ज़्यादा एडिक्ट हो चुकी हूँ कि मुझे अगर स्टेटस नहीं लगाऊँ तो मेरे को लगता है कि मेरा दिन ही शुरू नहीं हुआ। और लोग सोचते हैं कि तू जिंदा भी है कि नहीं है, तूने स्टेटस आज डाला ही नहीं है। तो मैं स्टेटस रोज़ डालती हूँ। तो इस तरीके से जो एप्लीकेशंस की बातें हैं ना, ये बहुत हमारी लुभावनी हो जाती है। कई लोग सोशल मीडिया के ऐप्स के बिना नहीं रह पाते। कोई मतलब कोई मतलब कि साहब मेरा तो धंधा ही यही है, मैं तो साहब अगर ये जो पेमेंट वाली ऐप्स नहीं होंगी तो मैं तो काम ही नहीं कर सकता, मेरा काम ही नहीं चलेगा, आजकल नगद कोई देता ही नहीं है। तो सबकी अलग अलग ऐप्स जो बताई गई, लेकिन ये है कि हमको पूरी तरफ से घेर लिया गया है, आपको चारों तरफ से घेर लिया है, हाथ खड़े कर दो वाली बात है जिसे फिल्मों में पुलिस आकर बोलती थी। तो हम इंटरनेट से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन सबकी अलग अलग चॉइस है किस पर किस ऐप ने जादू किया, ये वो बता सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐप जो है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, एक ही ऐप अगर कहा जाए कि यही यूज़ कर सकते हैं, तो वो कौन सी होगी, वो आप मुझे बताओ। और अभी जादू तेरी नज़र सुन लेते हैं। नौ चौवालीस हो रहे हैं।

9:49 और 30 सेकेंड। गुड मॉर्निंग, दिस इज मी तरुण और आप सुन रहे 100.3 FM। और आज इंटरनेट वाला दिन है जी, यूँ कहते हैं वर्ल्ड वेब डे। तो अब WWW बोलने में कई लोगों को लगता है कि कैसे बोलें साहब, तो चलिए। तो आज का दिन जो है, उस दिन मैंने पूछ लिया कि कोई ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपको कहा जाए कि एक ही यूज़ करनी है तो कौन सी होगी। तो बहुत सारे कॉल्स आए, जिसमें से अब एक कॉल और ले लेता हूँ मैं, जो मतलब उन्होंने कहा कि साहब मेरा नाम ले लो बस, मैं खुद नहीं आऊँगी। नाम है इनका विद्या शर्मा, नाम विद्या शर्मा, रहती विद्याधर नगर में ही है। वाह। तो इन्होंने कहा मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मैं डिज़ाइनिंग का काम करती हूँ, और मेरे को एक ही एप्लीकेशन पसंद है और उससे मेरा बिजनेस भी चलता है, वो है पिंटरेस्ट। तो पिंटरेस्ट जो है वो मैं उसमें तस्वीरें जो होती हैं, डिज़ाइन जो होती हैं, उसको हम लोग देख भी सकते हैं, उससे हम दुनिया को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उसके ज़रिए वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट मतलब WWW वाली, जैसे tarunvyas.com भी हो सकती है या फिर आपके नाम से भी हो सकती है। तो ये .com होती है जो कि पूरे विश्व में काम करती है, .in इंडिया वाली हो जाती है, मतलब चलती सब जगह, लेकिन वो .com वाला अलग पैसा लगता है, अलग अलग चीज़ें हमें ख़रीदनी होती है, तो वो उसके बस साथ ईमेल में मिल जाता है। तो ये वेबसाइट की कहानी होती, पर यहाँ पर चॉइस की बात है, तो चॉइस की ऐप इन्होंने पिंटरेस्ट बता दी, क्योंकि बिज़नेस रिलेटेड है। तो ऐसे ही आपको कौन सी ऐप पसंद है, और कहीं आप ये कहें कि मुझे तो फेसबुक पसंद है, तो दिन भर फेसबुक पर वक्त बिताते हैं। पर आजकल ज़माना थोड़ा सा बदल गया और ऐसा हो गया कि जो लोग मोबाइल नहीं जानते थे, मतलब नहीं जानते, मतलब कि ज़्यादा इंटरनेट से वाकिफ़ नहीं थे, मैं उस पीढ़ी की बात कर रहा हूँ जो कि 60 से 65 के पहले की, मतलब अब उनको धीरे धीरे उन्होंने ज़माना पूरा बदलता हुआ देखा। पर कीपैड वाले मोबाइल उनको चलाना में उसको भी दिक्कत होती थी, फिर धीरे धीरे सीखे। अब ये टच वाले आ गए, तो टच कहीं करते हैं, टच का कहीं हो जाता है, पर फिर भी सीखते सीखते आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो वृद्धजन हैं वो यूज़ करते हैं, और कोई भजन देख रहा होता है और एक के बाद एक स्क्रोल, कुछ ना कुछ कोई प्रवचन सुन रहे होते हैं, और ये बहुत सारा है, बहुत सारा डेटा जो है वो इंटरनेट पर है। सब लोग ऐसे अपने हिसाब से देखते रहते हैं, जो देखते हैं वैसा वाला ही आना शुरू हो जाता है, एल्गोरिदम ऐसा ही हो जाता है कि वो बोलता है कि अच्छा आपको ये पसंद है तो यही लो, यही लो, यही लो। अभी जैसे हाल ही में जो ये प्रोटेस्ट हुआ था, तो प्रोटेस्ट का एक बार वीडियो देखा तो सारे उसी के आने लगते थे। तो इस बात एक बहुत अच्छी बात है कि माफ़ी कर देने वाली बात होती है ना, जैसे मोदी जी ने सबको माफ़ कर दिया, बोले कि बच्चे हैं जाने दो और बच्चों को सीखना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात जो लगी। तो आप भी हमेशा ये ध्यान रखिए कि माफ़ी देने वाला सबसे बड़ा होता है। अभी आपके मन में कौन सी एप्लीकेशन है आप मुझे बता सकते हैं। नंबर है 2200800। अगर एक दिन के लिए कहा जाए कि भाई एक ही एप्लीकेशन यूज़ होगी, वो आप एक ही कर सकते हैं, एक ही चॉइस कर लीजिए, तो कौन सी होगी। अभी बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, वैसे होली नहीं है लेकिन फिर भी गाना तो गाना है।

0: 9:56 और 10 सेकेंड हो रहे हैं और अब जो सीनियर सिटीजन भी जुड़ चुके हैं वो क्या कौन सी एप्लीकेशन या क्या इंटरनेट का उपयोग कैसे करते हैं, कौन सी ऐप उन्हें बहुत पसंद आती है, ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ में हैं सुशीला दत्ता जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 100.3 FM पर मैडम।
1: नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुनने वालों का भी, रेडियो पिंक सिटी का धन्यवाद कहती हूँ मैं। एक तो सुबह सुबह का टाइम इतना अच्छा गुजरता है कि पूछिए मत, और अब जब से इसका ऐप सारे फोन पे आया है तब से तो और भी सुविधा हो गई है। हाँ। कहीं भी जाओ इसको सुन सकते हैं।
0: तो आप...
1: दूसरा, मैं शेर व शायरी बड़ा पसंद करती हूँ, तो बहुत सारे मुशायरे ये अपलोड होते रहते हैं तो मैं उनको सुनती हूँ, तो मेरा टाइम बड़ा अच्छे से पास हो जाता है।
0: तो कोई ऐसी शायरी या ऐसा शेर कोई जो आपको बहुत पसंद आता हो वो सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं?
1: हाँ, एक शेर है कि आंखें कहीं, दिमाग कहीं, दस्तों पा कहीं, रास्तों की भीड़ भाड़ में दुनिया बिखर गई। रास्तों की भीड़ भाड़ में दुनिया
0: बिखर गई, बहुत सुंदर। और नेटवर्क शायद इनका चला गया है। खैर, तो यहाँ बात इस तरह से निकल कर आती है कि वृद्ध जन भी जो हैं वो वरिष्ठ जो हमारे नागरिक हैं वो भी जब सुनते हैं तो वो रेडियो भी सुनते हैं, तो साथ में उनको एक तो कॉल आया, वो कह रहे थे कि मेरे को तो कोई एप्लीकेशन चलाना आता भी नहीं है साहब, और मैं तो वो मोबाइल भी मेरे को समझ में नहीं आता कैसे चलाएं, तो मेरे भले ही इंटरनेट बंद हो जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बस रेडियो पिंक सिटी बंद नहीं होना चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसे मुशायरे देखने का इन्होंने कहा सुशीला जी ने, तो ऐसे ही हम जो भी चाहते हैं ना वही चीज़ एल्गोरिदम हमें देने लग जाता है। और कभी आपने ये भी सोचा कि आप कोई चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई मुझे घुटने में दर्द रहता है, या कोई भी चीज़ की बात कर रहे हैं और आपके मोबाइल पे फिर उसी चीज़ के ऐड आने लग जाते हैं कि घुटने पे लगाने की ये बाम ले लीजिए या फिर ये दवाई ले लीजिए, आपने किसी से बात भी नहीं की लेकिन ऐसा होता है। तो लोग कहते हैं मोबाइल भी सुन रहा है, सब कुछ इंटरनेट की जो चीज़ें हमें सुन रही है और वही चीज़ हमारे सामने पेश हो जाती है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अच्छी बात भी है लेकिन उसमें ये बात भी लगती है कि क्या हमारी बात सारी सुनते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दे की बात ये कि एल्गोरिदम है जो अपने को अपने हिसाब से चीज़ें बताता चला जाता है। 100.3 FM पर आँखें बंद करके ये गाना सुनेंगे और अभी थोड़ी देर में सुनेंगे, लेकिन अभी इतनी बात बता दूं कि अगले घंटे कुछ सवाल जवाब होंगे जहां म्यूज़िकल सवाल भी हैं, और ये वाला ऑप्शन भी ऑन है मेरा वर्ल्ड वेब डे वाला कि कौन सी ऐप आप यूज़ करेंगे, ये एक सवाल कंटिन्यूस चलता रहेगा। 100.3 FM तरुण आपके साथ में, और अब अगले घंटे जो है हम बात जिसकी करेंगे वो है मेरे सवालों का जवाब दो।
2: सोचिए, समझिए और दीजिए सही जवाब, क्योंकि आप सुन रहे हैं मेरे सवालों का जवाब दो।
3: ये मुलाकात एक बहाना है।
4: शब्दों की मुलाकातें, गीतों की बरसातें, दिलो दिमाग को रखती है तरोताजा। 100.3 FM की ये सौगातें,
5: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,
4: आपका साथी आपका दोस्त। रेडियो पिंक सिटी सुनिए रोज।
6: एक मुलाकात जरूरी है सनम।
4: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो

0: छत और दीवारों में सीलन
1: या पेंट के बाद बार बार निकलता नमक, दोनों समस्याओं का भरोसेमंद समाधान।
0: श्री संतोष ट्रेडर्स के नैनो टेक्नोलॉजी से बने सिकंदर सीलन कवच की शक्ति दीवार और छत पी जाती है, जिससे मिलती है दमदार वाटरप्रूफ सुरक्षा। पानी तेल की तरह फिसल जाता है और SST55 सिकंदर सॉलिड पंच दीवारों से नमक हटाकर पेंट की उम्र बढ़ाता है।
1: 25 सालों का भरोसा, श्री संतोष ट्रेडर्स, जयपुर। कॉल 9828310937।
2: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
3: पर भैया, ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
2: तुम्हें तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
3: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
4: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
5: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे, ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
0: सोचिए, समझिए और दीजिए सही जवाब, क्योंकि आप सुन रहे हैं मेरे सवालों का जवाब दो।

ऑलराइट, वक्त शुरू हो गया सवालों का। मेरे सवालों का जवाब दो, 10:07:36 हो रहे। गुड मॉर्निंग, दिस इज मितरुण। और पहला सवाल पूछ लेते हैं। पहला सवाल पूछने से पहले 2200800 ये मोबाइल, सॉरी ये फोन नंबर है, ये याद रखें, आजकल मोबाइल की आदत पड़ गई इसलिए बोल दिया। 2200800 ये नंबर है रेडियो का, तो आप यहां पर कॉल करके सही जवाब देंगे, और रेडियो पिंक सिटी का फेसबुक पेज है, वहां पर भी जवाब देंगे। तो ये अब प्रश्न आ रहा है। सबसे पहला www, ये तीन बार जो w लगता है वेबसाइट के लिए जब टाइप करते हैं, तो इनकी फुल फॉर्म क्या है? www, इसकी फुल फॉर्म क्या है बताइए 2200800 पर और फेसबुक पेज पर रेडियो पिंक सिटी का। और फिर अगला सवाल जो है इसके साथ में एक जोड़ लेता हूं, वो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आप बताइए ही बताइए कि ट्रिपल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है इंटरनेट की दुनिया में। और ये बताइए कि क्या आपको याद है आपने पहली बार इंटरनेट कहाँ इस्तेमाल किया था? पहली बार आपने खुद ने इंटरनेट कब इस्तेमाल किया था? साइबर कैफे में, स्कूल में, ऑफिस में, या घर के उस पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जिसकी आवाज पहले आती थी और इंटरनेट बाद में चलता था? ओके, सवाल एक बार फिर से, ट्रिपल डब्ल्यू का मतलब क्या है, पूरी फुल फॉर्म बताइए www की, और आपने पहली बार इंटरनेट कहाँ यूज किया था? साइबर कैफे, स्कूल, ऑफिस, या घर के पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर, या वहां पर जिसकी आवाज पहले आती थी और इंटरनेट बाद में चलता था। सुनते रहिए 100.3 FM, और अभी गाना प्ले करते हैं स्वीटी।

ऑल राइट जी, इंटरनेट का प्यार तो सबको ही चाहिए जी। 10:12 और 45 सेकंड हो रहे हैं। दिस इज़ मी तरुण। मैंने आपसे सवाल पूछा था ट्रिपल डब्ल्यू का मतलब क्या है, और इसका सही जवाब जो है सब देते चले जा रहे हैं। और अभी सुशीला जी ने तो कॉल करके कहा कि इसका तो सभी को आता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सभी को नहीं आता है। कोई वाइड को वाइल्ड बता रहा है और होता है, देखिए क्या है कि चीज़ें हम यूज़ करते हैं पर हम उनके बारे में कई बार ही पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, और ये ऐसा ही होता है। इसलिए एक कहते हैं ना कि अध जल घघरी छलकत जाए, तो उसी बात को यहाँ पर चरितार्थ करती है ये बातें। बहरहाल सही जवाब जो है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, और ये सही जवाब जो देने वाले हैं लोकेश कुमार मीणा मानसरोवर से और ममता लाखोटिया, इन्होंने सही जवाब दिया, और साथ में सुशीला दत्ता जी ने भी दिया। नरेश राज भी कहते हैं इसकी फुल फॉर्म इन्होंने फेसबुक पर बताई, और ये इसका उपयोग मेरी ब्रांच में किया था मैंने, और ये कह रहे कि मैंने पहली बार इंटरनेट जो है अपनी ब्रांच में यूज़ किया था, अब ये जहाँ भी काम करते होंगे। और पंकज अरोड़ा लिखते हैं कि लैपटॉप पर पहली बार इंटरनेट यूज़ किया था मैंने, और ये जनता स्टोर से कह रहे हैं पंकज अरोड़ा, और इन्होंने भी वर्ल्ड वाइड वेब सही जवाब दिया है। और अशोक कन्नौजिया ये भी कहते हैं कि इसकी फुल फॉर्म इन्होंने यही बताई है, और इन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग अक्टूबर 2003 में ऑफिस में एक ईमेल भेजकर किया था। और मुझे ये भी बताइएगा आपको ईमेल भेज के फिर कैसा लगा, कि तुरंत पहुंच गई तो उसकी सेंट में चेक किया, या क्या आपको उस वक्त कैसा लगा था ये ज़रूर बताना, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस जो है ना शुरुआती वो बड़े ही कमाल के हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता था कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फ़ोन करके पूछते थे बोले आ गई क्या ईमेल, आ गई क्या, टेस्टिंग भेजते थे पहले। ओके, अभी भी भेजते हैं कई लोग टेस्टिंग के लिए, 1 रुपया भेजते हैं आजकल वैसे वो पेमेंट करने के लिए, फिर उसके बाद में बड़ा पेमेंट भेजते हैं। सुनील टाक कहते हैं उन्होंने भी यही बताया वर्ल्ड वाइड वेब, और इन्होंने कैफ़े में यूज़ किया था पहली बार। और ऐसे ही विनोद कुमार ने भी बताया कि यही सही जवाब है। बनवाई लाल जांगिड़िया तो गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, चलिए ठीक है, इसके बाद कोई सही जवाब नहीं है, ये सब गुड मॉर्निंग के मैसेजेस हैं। और अब अगला सवाल कौन सा पूछा जाए, चलिए ये बता दीजिए कि आज का दिन क्यों है वर्ल्ड वाइड वेब डे, ये क्यों है। मैं वाइब क्यों बोल रहा हूँ, वाइब मतलब वाइब इसलिए बोल रहा हूँ, शायद मेरे मुँह से निकल रहा होगा, क्योंकि ये एक वाइब बन चुकी है हमारी लाइफ की इंटरनेट, तो वर्ल्ड वाइड वेब और ये वाइब भी हो चुकी है एक तरीके से, तो इसलिए शायद, खैर कोई बात नहीं, लेकिन सही जवाब वर्ल्ड वाइड वेब। अब अगला जवाब बताइए मुझे 2200800 पर, और 2200800 ये एक नंबर काफ़ी है, वरना दोनों तरफ कॉल आएंगे, तो आप मुझे ये बताइए इस पर, और साथ में रेडियो पिंक सिटी का फेसबुक पेज है वहाँ पर भी बताइए कि सही जवाब क्या है, क्यों मनाया जाता है आज का दिन ट्रिपल डब्ल्यू वाला दिन। ओके, अभी गाना कौन सा प्ले करें, ये दिल दीवाना दीवाने ने मुझको भी, पहचान गए, बहुत ही शानदार गीत है, बहुत फास्ट कार चल रही है, इसी फास्टनेस के साथ में इंटरनेट हमारे पास में आता है आजकल, जैसे म्यूजिक धीरे धीरे बढ़ेगा वैसे ही इंटरनेट ने हम पर काबू किया है, यह हमारे एक साधन बन गया है।

दस बजकर 22 मिनट दिल दिल ये किसके लिए? मैंने ये राजेंद्र जी के लिए, राजेंद्र गुप्ता जी का एक कॉल आया था। वो कह रहे थे कि साहब इंटरनेट का जो ये आज का दिन इसलिए मनाया जाता होगा कि इस दिन जिसने इंटरनेट बनाया होगा शायद उसका जन्मदिन होगा। तो कुछ भी चलता है, ठीक है, लेकिन ठीक है, आपने कोशिश तो की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहरहाल जो ये सही जवाब जो है ये एक तो अखबार में देखकर एक वृद्ध जन जो है उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि साहब राम सिंह चाकसू से बोल रहा हूँ और मैंने अखबार में पढ़ा था कि ये जो है टिम बर्नर्स ली जो है उन्होंने 1989 में इसकी स्थापना की थी, इसलिए ये शुरुआत हुई, मतलब शुरुआत हुआ था। वैज्ञानिक हैं, ब्रिटेन के वैज्ञानिक। बहुत सही जवाब। और सुनील टेलर ने भी इसका सही जवाब दिया, लेकिन वो पूरी तरीके से खुल के नहीं बता पाए। तो मैं बता दूँ आपको कि आज का दिन जो है विश्व वेब दिवस, हिंदी में अगर कहें तो विश्व वेब दिवस। वेब मतलब होता है मकड़ी के जाले होते हैं ना, जाला, तो एक तरीके से नेटवर्क बनाना। तो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब एक बहुत चौड़ा जो है एक नेटवर्क जो बन गया उसको ये चरितार्थ करता है। तो 1 अगस्त का दिन जो है ये मुकर्रर है, इसीलिए मनाया जाता है आज के दिन ये। और ये दिन इंटरनेट यानी वर्ल्ड वाइड वेब WWW जो लिखते हैं उसके बारे में जो हमारे जीवन पर बड़े प्रभाव पड़े उसको याद करने के लिए है। और इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी, टिम बर्नर्स ली ने की थी। और खोज की जहां तक बात करें इसकी WWW की, तो टिम बर्नर्स ली ने 1989 में CERN करके जो जगह थी वहां काम करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब का विचार रखा था। और 1991 जब आया, मतलब 2 साल बीते, तो इसी दिन पहला सार्वजनिक वेब पेज प्रस्ताव सामने आया था। तो पहला सार्वजनिक वेब पेज का प्रस्ताव जो आज के दिन सामने आया था। और फिर इसमें बदलाव ऐसे हुए कि आज वेब जो है शिक्षा, व्यापार और बातचीत के तरीके को पूरी तरीके से बदल चुका है। और इसका उदाहरण हम सबके पास में अपने मोबाइल फ़ोन्स में अपने आप मिल जाता है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इंटरनेट और वेब को भी हम अलग करके समझा दें, तो इंटरनेट जो है ये कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क होता है। इंटरनेट टू इंटरनेट कंप्यूटर जुड़ते हैं, लेकिन WWW जो ये है, वेब जिसको कहते हैं, ये इंटरनेट के ऊपर चलने वाले पेजों को और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक कलेक्शन होता है। मतलब किसी की वेबसाइट खोली तो एक पेज खुला, दूसरा पेज खुला। अब वो वेबसाइट फेसबुक भी हो सकती है, वेबसाइट इंस्टाग्राम भी हो सकती है, वेबसाइट कोई भी पेमेंट ऐप भी हो सकती है। तो वो सब वेबसाइट जब हम खोलते हैं, चाहे हम हमारे बैंक की वेबसाइट खोलते हैं, तो उनके अंदर जो पेजेस आते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, संग्रहण होता है, वो होता है वेब। तो यहाँ पर इंटरनेट और वेब में अंतर हुआ, ये दोनों चीज़ भी समझने वाली बात थी। तो आज के दिन मैंने आपको ये बताया, लेकिन आज का दिन एक और ख़ास बात के लिए है। तो सही जवाब के लिए अब मैं इंतज़ार करूँगा और सवाल शुरू होता है। सवाल शुरू करते हैं। सवाल ये है कि 1 अगस्त को एक ऐसा दिन मनाया जाता है, मतलब एक ऐसा वैश्विक तौर पर जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। दिन नहीं है, जागरूकता का पूरा सप्ताह मनाया जाएगा, 1 तारीख से शुरू होता है ये। तो ये किस बारे में मनाया जाता है? पूरे विश्व में 1 अगस्त से लेकर पूरा आगे का सप्ताह जो है कौन सी वैश्विक जागरूकता सप्ताह कहलाता है? 2200800 फोन नंबर है और फेसबुक पेज जो है वो आपको पता ही है, रेडियो पिंक सिटी का फेसबुक पेज, तो ये दोनों जगह। और इन सवालों के साथ में जो ये सवाल नहीं जवाब दे पाते उनके लिए एक क्वेश्चन ऐसा भी लेकर आया हूं जो कि म्यूजिकल है, तो ये भी आपके सामने अभी रखा जाता है। आपको बताने हैं 2 गाने पहचानने, म्यूजिक प्ले हो रहा है, बस ये वाला।

तो बस ये दो दो सवाल, दो गानों वाले और एक प्रश्न, एक अस्त वाला, जो भी आता है जवाब दीजिए। 10:27 हो रहे हैं अभी। मैं हूँ तरुण, और अगला गीत कौन सा प्ले करेंगे हम? अगला गीत कंगना तेरा नी सानू करे इशारे।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: सोचिए, समझिए और दीजिए सही जवाब, क्योंकि आप सुन रहे हैं मेरे सवालों का जवाब दो।
1: दस बजकर 38 मिनट हो रहे हैं और 6 सेकंड हो गए। गुड मॉर्निंग, दिस इज मी तरुण। और अब हम जो अगले सवाल की तरफ बढ़े, उससे पहले सही जवाब बता दें किस किस ने दिए। और सबसे पहला जो सही जवाब जो है उसकी बात कर लूँ मैं, लेकिन इधर मैं फेसबुक भी खोल लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों ने, क्योंकि एक के बाद एक सही जवाब वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे तरुण हमारा नाम तो लिया नहीं। तो चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, बहुत फास्ट हो गया ना इंटरनेट आजकल, तो हमें तुरंत चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, तो सही जवाब जो है, मैंने पूछा था कि 1 अगस्त को, और उसका सही जवाब जो है वो मेरे पास जो फ़ोन पर पहुँचा, वो सबसे पहले कौशल टांक दुलेश्वर गार्डन से सही जवाब दिया इन्होंने। सही जवाब जो है विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह। और उसके बाद में अब अगला जो जवाब है इसी बारे में, वो मैं म्यूजिकल के भी जवाब दूंगा। आप सोच रहे होंगे अरे तरुण वो भी तो बता दो, चलो ठीक है। तो रेनू गोविल ने भी फेसबुक पर सही जवाब दिया, और ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे नहीं, ये जागरूकता सप्ताह है, ये आप देख लें। और यहाँ पर नरेश राज ने कहा कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये मैंने जागरूकता सप्ताह की बात की थी, तो आपने नरेश जी उसका जवाब देना था। और पंकज अरोड़ा ने सही जवाब दिया, कमलेश कोटिया ने भी सही जवाब दिया, और आगे कोई सही जवाब म्यूजिक वाला आ गया है। कौशल कुमार ने कहा कि पहला गाना अनारकली डिस्को चली, दूसरा गाना देसी गर्ल है, जो सही है। और यही सही जवाब शैलेश ने भी दिया, शैलेश सोमानी ने, कि अनारकली डिस्को चली और देसी गर्ल। और यहाँ पर अशोक कनौजिया ने भी विश्व स्तनपान सप्ताह जो है उसकी बात की है, सही जवाब इन्होंने दिया है। और पंकज अरोड़ा ने वो जो पिछले सवाल का सही जवाब 1989 में वैज्ञानिक सर टिम बर्न्सली की याद में जश्न मनाया जाता है वगैरह इन्होंने लिख दिया। चलिए ये तो सही जवाब हमारे तक पहुंच गए। अब अगला जो प्रश्न है उसका सही जवाब यहाँ पर आना ज़रूरी है, तो कौन सा होगा वो? तो पहले तो इनके लिए कर देते हैं कि भाई हाँ आपने सही जवाब दिया, तो राइट आंसर का एक बैंक तो बजना चाहिए। सही जवाब, तालियां बज गई आप सबके लिए। तो चलिए अब अगला सवाल सुन लेते हैं, फिर और देखते हैं किस किस के लिए तालियां बजेगी। भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा किस वर्ष में शुरू हुई थी? और अगर तारीख भी बता दें तो बहुत अच्छी बात है, सही जवाब बताइएगा और इंतज़ार रहेगा। अब एक प्रश्न और साथ में पूछ लेते हैं, जैसा कि म्यूज़िक की बात होती है तो म्यूज़िकल क्वेश्चन साथ लेकर आया हूँ मैं। एक गाने को रिवर्स कर दिया गया है, थोड़ा सा समझ तो आप पहली बार में जाएंगे, लेकिन फिर भी रिवर्स किया है, तो ध्यान से सुनिए।

0: तो सही जवाब दीजिए और इंतजार रहेगा 2200800 पर और रेडियो पिंक सिटी का फेसबुक पेज है।
1: रपा सना हजारे ताऊ बहुत सारी ऐसे बेरा को नहीं कहता ना।
2: कभी भी आपको ये बातें सुननी हो मेरे पास आ जाया करें, और भी बहुत सारी मेरे पास चीजें आपको सुनाने के लिए।
3: हाय, मैं हूँ अक्षय कुमार। मेरी तरह खिलाड़ी बनना है तो लाइफ में जीतना सीखो, सुनते रहो तरुण के साथ।
1: बॉस रे बॉस।

दस बजकर 47 मिनट 50 सेकंड हो रहे हैं और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जो सही जवाब दे दे वो खिलाड़ी और जो नहीं दे पाए कोई बात नहीं, हम अनाड़ी तो फिर भी नहीं कहेंगे, आपने कोशिश तो की ये वाली बात हो जाती है, लेकिन टाइम अप हो जाता है फिर।

रहा है, बहुत स्पीड में होता जा रहा है धीरे धीरे। अब तो 5G की स्पीड में इंटरनेट हमारे पास में आ गया है, कितनी अच्छी बात है। और जो म्यूज़िक की जो बात मैंने पूछी थी, एक गाना प्ले किया था तो वो उसका सही जवाब आया था, सूरज प्रजापत ने सही जवाब दिया था कि रब ने बना दी जोड़ी को, गाने को आपने रिवर्स करके सुनाया है और सही जवाब यही है। शाबाश, तालियां बज गई जी, तालियां बज गई। तो चलो अब अगला सवाल पूछ लिया जाए, अगला सवाल ले लेते हैं। 10:49 हो रहे हैं। अगला सवाल जो है आपको बताना है, क्या भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? यस और नो में जवाब देना है, हाँ या ना में। क्या भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? ये सही जवाब बताइए, क्या भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, सही या गलत, ये आपको जवाब देना है। और अब तरुण चलता है अगले उसकी तरफ, गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले एक मैसेज होगा और क्यों ना बारिश की शुरुआत कर दें।

बारिश में छम छम करते गाने, बारिश में रूमानी कर देने वाले गाने।

0: बारिश को रोमांटिक बना देने वाले गाने।
1: प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
2: चमक चमक के लपटे बिजली हम पे गिर जाएगी।
0: अतीत की यादों की बारिश में तैरते गाने।
3: वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।
0: इन गानों की झड़ी लगेगी जब बारिश की बूंदे मल्हार गाएंगी 100.3 FM पर। यही बरसात है, कुछ तो बात है।
4: छत और दीवारों में सीलन
5: या पेंट के बाद बार बार निकलता नमक, दोनों समस्याओं का भरोसेमंद समाधान।
4: श्री संतोष ट्रेडर्स के नैनो टेक्नोलॉजी से बने सिकंदर सीलन कवच की शक्ति दीवार और छत पी जाती है, जिससे मिलती है दमदार वाटरप्रूफ सुरक्षा। पानी तेल की तरह फिसल जाता है और SST55 सिकंदर सॉलिड पंच दीवारों से नमक हटाकर पेंट की उम्र बढ़ाता है।
5: 25 सालों का भरोसा, श्री संतोष ट्रेडर्स, जयपुर। कॉल 9828310937।
6: जिंदगी है तो उम्मीद है तो विश्वास है तो जीत है। हाय, मैं हूँ अमिताभ बच्चन और जिंदगी में जीतना सीखो, सुनते रहो तरुण के साथ।

0: अजूबा फिल्म का गीत हमने सुन लिया, सुदेश भोसले की आवाज़, लगता है अमिताभ बच्चन ही गा रहे हैं। 10:57 हो रहे हैं और अब जो सही जवाब दे दें, किस किस ने सही जवाब दे दिया और कौन गलत जवाब दिया है ये भी मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले गलत जवाब ले लें, ओके तो सबसे पहले गलत जवाब ले लेते हैं। रेणु गोविल जी ने कहा यस, हॉकी इज़ ए नेशनल स्पोर्ट्स, तो ये जो है सही जवाब नहीं है, है ना जी। गाना तो कंटिन्यू चलता ही रहता है और साथ में सही जवाब भी बताने हैं ना, तो गलत जवाब के लिए एक बैंग हो जाए। गलत जवाब ये है कि अब ऐसे ही पंकज अरोड़ा जो हैं उन्होंने सही जवाब दिया, बोले नहीं है साहब, नहीं है, राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। विनोद कुमार जी ने कहा है, तो फिर वो रॉन्ग हो गए। तो सही जवाब अशोक कुमार सैनी जी ने भी दिया कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। ये सही और गलत वाले में लोग काफ़ी बता रहे हैं। अशोक जी ने भी कहा हाँ, अब नरेश जी ने भी कहा हाँ, तो नहीं, ये नहीं। तो सही जवाब आपको मिल गया, अब आप इसके बारे में और रिसर्च करिए ना, आपको मालूम चल जाएगा राष्ट्रीय खेल हॉकी है कि नहीं है। बहुत से लोग, क्योंकि हाँ हमारे देश में खेले जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्पोर्ट्स जो संघ वो ही कहता है कि हम सभी खेलों को बराबर तरीके से देखते हैं, तो सारे ही खेल खेले जाते हैं, ठीक है। हॉकी तो बहुत ज़्यादा खेला जाता है पर राष्ट्रीय खेल नहीं है। 100.3 FM पर तरुण आपके साथ में, और अगला गीत प्ले करूँ उससे पहले आपको बता दूँ अगला जो कार्यक्रम है वो अब मतलब सेगमेंट जो है कार्यक्रम, तो 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी सुन रहे हैं आप, शायरी से याद ही करेंगे। तो आप कौन कौन सी शायरी लेकर आए हैं आज?
1: हर शेर में एक एहसास, हर मिसरे में एक कहानी, आप सुन रहे हैं शायरी से यारी।
0: शायरी से यारी का वक्त होगा, अब 10:59 हो रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन सी शायरियां आपने निकाली हैं आज, तो कुछ आज शायरियां उन पर बनाइए। एक शब्द होता है माफ़ी, फॉरगिव कर देने वाला इंग्लिश में, और अपॉलॉजी भी, माफ़ी मांग लेने वाला भी। एक तो माफ़ करने वाला जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है, माफ़ी मांगने वाला भी अपनी गलती हो जाए तो माफ़ी मांग ले, वो भी अच्छी बात होती है, अपनी गलती को सुधारना बहुत अच्छी बात होती है। तो ये सब लगती छोटी सी है शब्द, माफ़ी बहुत छोटा लगता है, बोलने में बड़ी तकलीफ होती है पर मांग लेने में कोई बुराई नहीं, गलती हुई है तो मांग लेनी चाहिए।
2: कुछ अलग एहसास होता है उन छोटी छोटी बातों का जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, जैसे मम्मी की प्यार भरी डांट,
3: राहुल अरे देखो तुम्हारे हाथ गंदे हैं, राहुल धो के खाना खाओ,
2: पापा का कहना,
4: बेटा आई लव यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू,
2: बहन का नाना करते हुए भी फाइनली अपनी वो स्पेशल वाली चॉकलेट शेयर कर लेना,
5: क्या यार इमोशनल अत्याचार मत करो, लो रे खाओ ठूसो,
2: भाई का गुस्से से देखना मगर फिर बाइक की चाबी पकड़ा देना,
6: अम्मू मत बना ये ले बाइक की चाबी, जा जी ले अपनी जिंदगी,
2: दोस्त का कांधा और सीक्रेट्स रखने का वादा।
7: एक बात बताओ यार, किसी से कहेगी तो नहीं ना, पक्का पक्का ना,
2: यानी जिंदगी हसीन है जब अपने संग है, ऐसा ही एक साथी 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी,
8: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: हर शेर में एक एहसास, हर मिसरे में एक कहानी। आप सुन रहे हैं शायरी से यारी।
1: 11:08 हो रहे हैं और सपने से जुड़ा गीत हमने सुन लिया। जीवा फिल्म का गीत था और सपने से बात एक याद आती है शेर की कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो इसी बात पर दो पंक्तियां जो है वर्ड्स करता हूं कि सपनों की उड़ान को कभी कम मत होने देना, सपनों की उड़ान को कभी कम मत होने देना, हौसलों के दियों को कभी नम मत होने देना। मंजिलें मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर कोशिशों का सफ़र कभी ख़त्म मत होने देना, ख़त्म मत होने देना, कोशिशें जारी रहनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं तरुण व्यास और आप सुन रहे हैं 100.3 FM पर शायरी से यारी। तो ज़िंदगी में हर इंसान जो है कोई ना कोई अपना सपना तो देखता है ना। कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने भविष्य के लिए। सपने ही हमको आगे बढ़ने की वजह देते हैं कि आज वो करना है, आगे चल के वो करना है। और उम्मीदों को फिर इसी तरीके से हम बांधते हैं और उम्मीदें ज़िंदा रखती हैं हमें। इन्हीं ख्वाबों, इन्हीं एहसासों में दिल को छू लेने वाले कई अल्फाज जो हैं वो आ जाते हैं, फिर दिल शायरियां करने लगता है, शायरी से यारी हो जाती है। तो चलिए, आपने क्या शेर लिखा है सपनों पर ज़रूर बताइएगा, और नहीं लिखा तो लिखिए, खुद से लिखिए। देखिए, कलम जब उठा लेते हैं ना तो अगर आपने वो सोचते कैसे लिखूं, तो कैसे की जगह कहां से लिखूं ये सोचना चाहिए। कैसे छोड़ दीजिए, अब सिर्फ कहां से लिखूं, एक कोई सा भी शब्द लिख दीजिए, अब उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, बस फिर वो सब आपकी ओरिजिनल हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या है, फिर हम बशीर बद्र साहब, राहत इंदौरी, निदा फाजली, जावेद अख्तर साहब, इनकी तो पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन खुद की भी तो कुछ लिखें। तो यही तो शायरी से यारी होती है। क्या लिखा है, कोशिश करिए आज लिखकर। पहला जो शब्द हो गया, सपना हो गया, तो सपने में क्या क्या चीज़ें आ गई। सपने में जिम्मेदारी भी आ गई, परिवार भी आ गए, बच्चे भी आ गए, आगे बढ़ने की वजह भी आ गई, उम्मीदें भी आ गई, ज़िंदा रखने का एक जज्बा भी आ गया, ख्वाब आ गए, एहसास आ गए, अल्फाज आ गए। लिख दो आप कुछ भी। चलिए, आप क्या लिखेंगे बिल्कुल मुझे बताइएगा और मैं आगे फिर आपको और बताऊंगा। हाँ, लेकिन एक माफ़ी पर ज़रूर लिखिए आज। माफ़ी जो है इसकी बहुत बड़ी ख़ास बात है, और ये हमने देखा भी। कल हम जब देख रहे थे तो नाइट में जब देखा तो रील जब आई मोदी साहब की, मोदी जी ने जैसे बताया कि किस तरीके से बच्चों को देखना चाहिए, कैसे उनको माफ़ करना चाहिए, सब चीज़ें हुई। तो ये सबसे बड़ी बात है, माफ़ करने वाले सबसे बड़े होते हैं। तो अब आगे कौन सा गीत प्ले करें। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। सात रंग के सपने हमारे बड़े बुजुर्ग सभी लोग हमारे लिए जो अच्छा सोचते हैं वो बुनते हैं, लेकिन हम सपनों में अगर हम सोचें कि ये सपना मेरे लिए नहीं है तो शायद हम गलत होते हैं उस वक्त। लेकिन सपना आगे के लिए, जब आपके लिए बाद में फ्यूचर को डिसाइड करता है तो वो बड़ा हो जाता है, तब हमें याद आती है कि उन्होंने सही किया था हमारे साथ में।
2: मैंने

मुकेश की आवाज़ 11:15:20 हो रहे हैं, शायरी से यारी है और अब आपकी शायरियों की बारी है। मैंने कहा था कि हाँ कुछ अपने से लिखिए, कुछ बनाइए, तो बनाया गया और फिर मेरे तक पहुंचाया गया है। कहते हैं गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन माफ़ करना इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। जो दिल में शिकायतों का बोझ उठाए चलते हैं ना, वो कभी सुकून से नहीं जी पाते। कई बार छोटी सी माफ़ी जो है वो रिश्तों को फिर से मुस्कुराना सिखा देती है। इन्हीं एहसासों पर शेर आए हैं। अविनाश वर्मा लिखते हैं कि माफ़ करके देखिए दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, माफ़ करके देखिए दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, जो अपना है वो फिर से अपना नजर आएगा। राजेश खंडेलवाल का फोन आया, उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है कि बड़ा वो नहीं जो ऊंचे मकाम पर खड़ा हो, बड़ा वो नहीं है जो ऊंचे मकाम पर खड़ा हो, बड़ा वो है जो गलतियां देखकर भी माफ करना जानता हो। वाह क्या बात है। और इसी बात पर मैं भी कह देता हूं कि माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता और माफ कर देने से कोई बड़ा हो जाता है। ये हाँ बात, तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझने की बात है। और एक गाना यहाँ पर एक पेश करता हूँ कि गाना खुद ही बताए कि माफ़ी कैसे मांगी जाती है।

कहा ना दीदी, 11:23 हो रहे हैं, तरुण आपके साथ में शायरी से यारी चल रहा है और यहाँ जो शायरियाँ हैं वो आपकी पहुँच रही है और मैं पढ़ भी रहा हूँ और यहाँ पर अच्छा भी लग रहा है कि किस तरीके से माफ़ी को हम लोग देखते हैं और किस तरीके से माफ़ कर देना चाहिए, ये बात भी निकल कर आ रही है। और अब शायरी पढ़ लेते हैं, कौन सी है देखिए। शैलेश सोमानी ने अभी अपनी शायरी लिखवाई, उन्होंने कहा कि यदि गलती होने पर मांग ली जाए माफ़ी, यदि गलती होने पर मांग ली जाए माफ़ी,

और सामने वाला भी दे दे माफी, ये तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से बहुत है काफी, बहुत है काफी, क्या बात है। और आगे पढ़ता हूं मैं, उससे पहले बताऊं कि रिश्ते जो होते हैं ना, चाहे कैसे भी हो, रिश्ते टूटते नहीं अगर हमारी जिद उन्हें तोड़ना दे, क्योंकि जिद ही होती है। और जहां माफी और अपनापन साथ होता ना, वहां दूरियां ज्यादा देर टिक नहीं पाती। तो जो दिल से माफ कर दे वही सबसे अमीर होता है। ये नरेंद्र खुरानिया का पढ़ रहा हूं मैं शेर। वो लिखते हैं कि जो दिल से माफ कर दे वही सबसे अमीर होता है, नफरतों का बोझ उठाने वाला अक्सर अंदर से फकीर होता है। तो नफरत का बोझ मत उठाइए, दिल में जो है कहिए और माफ कर दीजिए, और माफी भी रखिए और माफी मांगिए भी, क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना कमजोरी नहीं है बल्कि मजबूत चरित्र की पहचान है। बदला लेने में क्या रखा है, सुकून तो माफ करने में है। जीत उसी की होती है जो अपने गुस्से पर काबू रखना सीख ले। ये लिखा रीता गुप्ता ने। 11:24 और 58 सेकंड हो रहे हैं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, ये गाना सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं।

0: हर शेर में एक एहसास, हर मिसरे में एक कहानी। आप सुन रहे हैं शायरी से यारी।
1: पतझड़ सावन बसंत बहार,
2: मौसम आते मौसम जाते, कभी खुशी कभी गम है लाते, पर कौन है जिसे आप हमेशा अपने पास है पाते। आपका अपना रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

11:33 हो रहे हैं। मेरे अपने फिल्म का गीत सुन लिया हमने, किशोरदा की आवाज़ में, गुलजार की ये फिल्म थी। और कितना इस फिल्म में सब कुछ जो देखने लायक था वो ये कि किस तरीके से मीना कुमारी के अभिनय, और वो एक जोड़ना चाहती है दो अलग अलग पक्षों को, शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना, और फिर उस दुनिया से चली जाती है। और फिर मेरे अपने इसका जिक्र होता है कि कौन है अपना। तो माफ़ी की जहाँ बात आ रही है वहाँ पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और फ़ोन कॉल्स आते जा रहे हैं और बता रहे हैं सब अलग अलग अंदाज में। नरेश करोड़ा लिखते हैं सुडाला से, वो कह रहे हैं कि बदला लेने में क्या रखा है। ये लिखा है इन्होंने कि हर रिश्ता एक दूसरा मौका मांगता है और वो मौका अक्सर माफ़ी के रूप में मिल जाता है। तो इस पर उन्होंने लिखा है कि कड़वी बातों को दिल से निकाल दीजिए, माफ़ करके रिश्तों को फिर से संभाल लीजिए। वाह क्या बात है। जगदम्बा शर्मा मानसरोड से लिखते हैं, और वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जो झुककर माफ़ी मांग ले वो छोटा नहीं होता, जो मुस्कुराकर माफ़ कर दे उससे बड़ा कोई नहीं होता। वाह बहुत सुंदर। तो आपने भी कुछ अगर लिखा हो तो 2200800 या रेडियो पिंक सिटी के फेसबुक पेज पर बताइए क्या लिखा है आपने माफ़ी के लिए आज, और मैं भी आपको इसी प्रकार सुनाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और अभी गाना सुनते हैं कतरा कतरा।

11:40 और 55 सेकंड हो रहे हैं। तरुण आपके साथ में है और शायरी से यारी चल रही है। संस्कृत में 3 शब्द लिखे हैं और ये मैसेज आया है, मतलब फोन के माध्यम से। डॉक्टर भारत मोहन रतूड़ी जी कह रहे हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम्, माफी कर देना वीरों के आभूषण की तरह है, और वही माफ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल वही माफ कर सकते हैं जो वीर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जो कुछ लिखा है इस बार मैंने, क्योंकि आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं इस बीच, मैंने लिखा कि दिल में अगर गिले शिकवे ही बसाए रखोगे, दिल में अगर गिले शिकवे ही बसाए रखोगे तो खुशियों के लिए जगह कहाँ बचाओगे, तो खुशियों के लिए कहाँ जगह बचाओगे। आओ आज किसी को माफ़ करके देखते हैं, आओ आज किसी को माफ़ करके देखिए, यकीन मानिए खुद भी मुस्कुराएंगे और वो भी मुस्कुराएंगे। मुस्कुराना ही जिंदगी।

0: छत और दीवारों में सीलन
1: या पेंट के बाद बार बार निकलता नमक, दोनों समस्याओं का भरोसेमंद समाधान।
0: श्री संतोष ट्रेडर्स के नैनो टेक्नोलॉजी से बने सिकंदर सीलन कवच की शक्ति दीवार और छत पी जाती है, जिससे मिलती है दमदार वाटरप्रूफ सुरक्षा। पानी तेल की तरह फिसल जाता है और SST 55 सिकंदर सॉलिड पंच दीवारों से नमक हटाकर पेंट की उम्र बढ़ाता है।
1: 25 सालों का भरोसा, श्री संतोष ट्रेडर्स, जयपुर। कॉल 9828310937।
2: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
3: पर भैया, ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
2: तुमने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
3: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
4: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
5: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे, ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
6: हर शेर में एक एहसास, हर मिसरे में एक कहानी। आप सुन रहे हैं शायरी से यारी।

11:54 हो रहे हैं, आजकल पांव ज़मीन पर नहीं पड़ते, और ये पेरेंट्स जब कहते हैं तो अब क्या करें, बच्चे फिर माफ़ी मांगते हैं। तो इस बात पर भी बहुत खूबसूरत बात है कि

कहते हैं इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा दिल किसी का होता है ना, तो माता पिता का होता है। बच्चे जाने अनजाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं, करते हैं, कभी जिद कभी ना समझी, लेकिन माता पिता का प्यार जो होता है ना, अक्सर उन गलतियों से भी बड़ा दिल रखता है, माफ़ कर देता है। इसी एहसास पर एक शेर अर्ज है कि हज़ार भूल भी कर दे अगर औलाद कभी, हज़ार भूल भी कर दे अगर औलाद कभी, माँ बाप की दुआओं का दर कभी बंद नहीं होता। और दो पंक्तियाँ कि बच्चों की गलतियाँ उम्र का हिस्सा होती हैं, बच्चों की गलतियाँ उम्र का हिस्सा होती हैं, माँ बाप की माफ़ी उनके प्यार का हिस्सा होती है। तो अगर आज आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो मैं कहता हूँ कभी उनके पास बैठकर बस इतना कह देना, अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। यकीन मानिए इस सेंटेंस में इतना अपनापन है, उतना शायद हज़ार शब्दों में नहीं है। बस इतनी सी बात, मुझे माफ़ कर दीजिए, जाने अनजाने में गलतियाँ हुई होगी, माफ़ कर दीजिए, होती हैं। तब एक गीत के सहारे छोड़े जाऊँगा, लेकिन उसके साथ एक बात कहूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, नाराज़गी को लंबा मत होने दीजिए। अगर गलती आपकी है तो माफ़ी मांग लीजिए, अगर किसी और की है तो माफ़ करके दिल बड़ा कर लीजिए, क्योंकि सच ही कहा गया है कि माफ़ कर देने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो बड़े बनिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। तरुण कहता है बाय।

0: आपने सुना FM रेडियो पिंक सिटी कार्यक्रम। ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। श्री मोदी आज राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक

0: अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मदन मोहन की तर्ज पर लता मंगेशकर और साथियों को आपने सुना साहिल लुधियानवी के बोल थे। गजल फिल्म की ये प्यारी सी गजल आपने सुनी।
1: देख लिया कहाँ रहता हूँ, जहाँ मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब?
3: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं असरदार।
4: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं असरदार।

सुमन कल्याणपुर और सखियों को आपने सुना फिल्म पूर्णिमा में। भरत व्यास के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज थी, फिल्म थी दिल एक मंदिर।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है,
5: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
6: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
6: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
6: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
6: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और साथियों को आप सुन रहे थे। शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी, फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई। आज कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रोताओं अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों को।

0: गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पाकीज़ा से।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल का रिक्रम आपने सुना। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर माफ़ कीजिए हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे

0: हैं FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत में मध्यस्थता की परंपरा सदियों पुरानी है और यही हमारी संस्कृति तथा इतिहास का अभिन्न हिस्सा रही है। ये बात उन्होंने आज जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य व्याख्यान में कही। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें शासन के 4 सिद्धांत साम, दाम, दंड और भेद बताए गए हैं, जिनमें साम यानी संवाद और समझाइश को पहली प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि यही सिद्धांत आज की मध्यस्थता व्यवहार का आधार है और विधि के शासन को प्रभावी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाना है। ये बात उन्होंने आज बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 40वें स्थापना दिवस समारोह और डॉ के एन नाग स्मृति व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने विद्यार्थियों से UPSC और RPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय में इंडिया AI मिशन के तहत 20 करोड़ रुपए की लागत से कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। समारोह में राज्यपाल ने श्री मेघवाल को विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपाधि डॉक्टर ऑफ साइंस प्रदान की। शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और समुचित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। इस वर्ष सप्ताह की थीम जीवन की सतत और स्वस्थ शुरुआत के लिए स्तनपान जो प्रभावी भी है और उसे सशक्त बनाए रखी गई है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को नवजात शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव उपाध्याय ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि पहले 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होता है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण में राजस्थान ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान संपदा के संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान में राजस्थान का योगदान सबसे अधिक है। उपमुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय जनभागीदारी, संस्थागत सहयोग और समर्पित प्रयासों को दिया। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय और ज्ञान भारतम मिशन की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही पांडुलिपि संरक्षकों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों, शोध संस्थानों और स्वयं सेवकों के सहयोग की सराहना की। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतें आज कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपए हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से कहीं कहीं तेज तो कहीं कहीं हल्की बरसात का सिलसिला बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आज कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं राज्य के पश्चिमी हिस्सों में गरज और झोंकेदार हवाओं के साथ बरसात हुई। सबसे अधिक 60 मिलीमीटर बरसात डूंगरपुर के वेजा में दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून दक्षिणी राजस्थान के भागों से होकर गुजर रहा है। इसके असर से आज और कल उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज तो कहीं कहीं बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में भी बरसात के आसार हैं।

0: आज सिरोही और जालौर में बारिश का येलो अलर्ट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। पीएमआरबीपी के लिए 1 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सुरीला सफर कार्यक्रम।

ये परिंदों की आवाज और ये कौन सी खास जगह है श्रोताओं, जहां मीना कुमारी पर ये गीत फिल्माया गया, यानी स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो आपको बताना है। और फिल्म पाकीज़ा का ये गीत था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। तो फिल्म पाकीज़ा जो थी वो अपने डायलॉग्स के लिए भी बहुत जानी जाती थी। इस फिल्म का कौन सा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद आता है, ये आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख कर भेज सकते हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफ़र ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है। मीना कुमारी हिंदी फिल्मों की एक ऐसी महान अभिनेत्री थी जिनके अभिनय में भावात्मक गहराई और संजीदगी थी। वे अभिनेत्री होने के साथ साथ एक उम्दा शायरा और पार्श्व गायिका भी थी। फिल्मों में उनका योगदान अमूल्य है। वे केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक युग थी जिन्होंने अभिनय को भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति के साथ पिरोया यानी बनाया। उनका नाम आज भी भारतीय सिनेमा में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और इन्होंने कुछ गीत भी अपनी पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज मीना कुमारी जी के फिल्मों के गीत से सजेगी महफिल सुरीला सफ़र कार्यक्रम की। एक और श्रोता ने लिखा है कि अभिनेत्री मीना कुमारी जी को परिभाषित करता ये गद्यांश नज़र आ रहा है जिन्होंने अभिनय को अलग आयाम से नवाजा। जी हाँ, मीना कुमारी जी की जो अदायगी थी श्रोताओं वो बहुत ही अलग थी। वैसे उन्होंने बहुत कम समय काम किया फिल्मों में, लेकिन जो सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक पहचान बनी वो आज भी कायम है। मीना कुमारी की जो फिल्में थीं, कौन सी फिल्में आपको बहुत पसंद आती हैं और कौन सा किरदार पसंद आता है, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत में कुछ गीतों के नगीने सजे हैं जो एक महान कलाकार की याद का दिन है। मीना कुमारी जी को शत शत नमन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है इस कार्यक्रम में अपने जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं उनके द्वारा। ये गीत आपको पहचानना है श्रोताओं और बताना है इस गीत के गीतकार कौन हैं और मीना कुमारी जी के साथ कौन नजर आते हैं।

शंकर जयकिशन की तर्ज थी श्रोता और लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना दिल अपना और प्रीत पराही फिल्म से। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, पहले फिल्म में गुलाम मोहम्मद साहब की तर्ज थी और इसमें शैलेंद्र की रचना थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दर्द को अगर कभी कोई चेहरा मिला तो वो मीना कुमारी थी। उनकी आंखों की खामोशी और अभिनय की गहराई सीधे दिल को छू जाती थी। उन्हें यूं ही ट्रेजेडी क्वीन नहीं कहा गया, शरत और सफलता के बीच भी उनके जीवन का अकेलापन उनकी शायरी और अदाकारी में साफ झलक था। आज भी उनका नाम संवेदनाओं और दर्द की एक अमर दास्तान बनकर याद किया जाता है। लेकिन उनके आप जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखेंगे श्रोताओं, तो वो इतनी खूबसूरत नजर आती हैं मीना कुमारी के, और उनका नृत्य भी जैसा कि आपने इस गीत में भी देखा बड़ा ही खूबसूरत है। तो मीना कुमारी ठीक है ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जानी तो जाती हैं, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप चाहें तो जरूर लिखें इस बात को, क्योंकि वो मुस्कुराते बड़ी खूबसूरत लगती थी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीत जो हैं वो समझ में आ रहे हैं, इतने गीत तो याद नहीं आ रहे फिर भी, लेकिन अब देखना है कि इनमें से कौन सा गीत हमारे जो है वो लिस्ट से मैच होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इनकी फिल्में केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो हर पीढ़ी को ये सिखाती हैं कि महान अभिनय ऊंची आवाज़ या भव्य दृश्यों से नहीं बल्कि आँखों में उतर आए सच्चे एहसासों से जन्म लेता है। मीना कुमारी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी शायरी, उनकी खामोशी और उनके अमर किरदार हमेशा ये एहसास दिलाते रहेंगे कि कुछ कलाकार समय से विदा होकर भी कभी विदा नहीं होते। और आप तो समझ ही चुके हैं कि मीना कुमारी एक मशहूर शायरा भी थीं और मकबूल भी थीं। तो वो किस नाम से शायरी किया करती थी? क्योंकि मीना कुमारी तो वो लिखती नहीं थी और उनका एक और नाम था, बल्कि यूं कहें कि दो नाम थे। तो ये नाम अगर आपको याद आए तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखती हैं कि ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर वो पाकिज़ा की हसीना जिनका अंदाज बयां दिल को छू जाता था। चांद सी उनकी सूरत और उनकी जो हर कोई जो अदा होती है, लगता नहीं कि दिल मेरा उजड़े दयार में। और कुछ फिल्मों के गीत भी इन्होंने लिखे हैं, झील सी आँखें, और उनके बारे में बहुत कुछ इन्होंने अपने शब्दों से बयां करने की कोशिश की है। इस गीत में, इस फिल्म में मीना कुमारी के जो अभिनेता हैं उनको आपको पहचानना है, यानी को स्टार।

अभिनेता सुनील दत्त के साथ ये फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में राजन कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में, इस गीत के बारे में, जो इन गीतों के बारे में जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया उसके बारे में लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म में उनका किरदार बहुत कम बोलता है, लेकिन करुणा के मन की पीड़ा मौन समर्पण और त्याग उनकी आंखों से स्पष्ट झलकते हैं। बिना कुछ कहे भी राजकुमार सुशील के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, तो श्रोताओं, मीना कुमारी जी पर तो बहुत सारे डायलॉग हैं, आपको उन पर फिल्माया गया कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है फिल्म के बारे में कि अजीब दास्तां है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ और ऑन स्क्रीन उदासी और प्रेम की पीड़ा को अमर आवाज़ देता है ये गीत। इस गीत के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझसे कोई ये पूछे कि मीना कुमारी जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, मेरा जवाब होगा मुझे उनकी सभी फिल्में बहुत अच्छी और लाजवाब लगती हैं। जी हाँ, मीना कुमारी जी ऐसी ही थी जो अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि अलग पहचान की थी।

0: जाने कहाँ तुमसे, ना जाने कहाँ तुमसे, जादू ये देखो हम तुम मिले।
1: ये गीत आप सुन रहे थे जो मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया, जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गीत था, और प्रदीप की ये रचना आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने आप में एक भारतीय फिल्म में एक युग हैं। अभिनय में मीना कुमारी जी का कोई तोड़ नहीं था, और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी शायरा भी थी। उनकी मनमोहक आंखें संवाद खासकर दर्द में डूबे तो दर्शकों के दिल में छा जाते। मीना कुमारी जी अभिनेत्री यदा कदा ही उनकी तरह होती हैं। और चित्रलेखा और आरती फिल्म वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जब फिल्म का प्रसिद्ध गीत चलते चलते रिकॉर्ड किया जा रहा था, तब स्टूडियो में ये गीत सुनकर मीना कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ये गीत सिर्फ साहिबजान का नहीं बल्कि उनके अपने दिल की गहराइयों की आवाज़, और उन्होंने संगीतकार गुलाम मोहम्मद को बधाई दी। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं जो मीना कुमारी जी के बारे में जुड़ जाती हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पाकीज़ा मूवी का गीत जो है वो अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, पूरा जीवन इसी तरह ख़त्म हो गया, चाहे पाकीज़ा हो या साहब बीबी और गुलाम। तो साहब बीबी और गुलाम फिल्म की कुछ यादें आपके साथ हों तो आप उसे बांट सकते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं फिल्म मैं चुप रहूँगी, मीना कुमारी हैं इसमें, सुनील दत्त हैं इसमें, और तमाम इन्होंने डिटेल लिखी है उन गीतों की, उन उस फिल्म की। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर आज का कार्यक्रम है और मैं बचपन से ही मीना कुमारी जी का फैन रहा हूं। तो आपने कौन कौन सी फिल्में उनकी देखी हैं, और हमने आपसे पूछा भी था कि कौन सा वो प्यारा सा डायलॉग है जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया और आपको बहुत पसंद है और इस गीत को आपको पहचानना है।

मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत था आजाद फिल्म से। आजाद फिल्म में उनके को स्टार कौन थे श्रोताओ? और अगर आप किसी जो खास उनके को स्टार रहे किसके साथ, यानी आप जोड़ी मीना कुमारी की पसंद करते थे या किन के साथ वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, ये आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी को अपने अभिनय के लिए कई बड़े सम्मान मिले। उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीवी और गुलाम और काजल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक और श्रोता लिखती हैं, मीना जी की छोटी छोटी मगर नशीली आंखें बेहद खूबसूरत लगती थी। वो दर्द से भरी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही हों, उनको मेरा शत शत नमन। एक और श्रोता ने लिखा है, आपने मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों में सबसे पसंदीदा गीत की चॉइस पूछी है। जो गीत दिल एक मंदिर फिल्म से है और हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा का संवाद जो है वो आपके पाँव मैंने देखे बहुत हसीन है, इन्हें ज़मीन पे मत उतारिएगा मैले हो जाएंगे। ज़्यादातर श्रोताओं ने इसी डायलॉग के बारे में लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी अपने कलामों में नाज नाम का इस्तेमाल करती थीं और उनके निधन के बाद उनकी कविताओं का संग्रह तन्हा चांद नाम से प्रकाशित हुआ। जी हाँ, नाज नाम से वो लिखा करती थीं। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी को हंसते हुए बहुत कम देखा गया है, अतः मुस्कुराहट पर टिप्पणी मुश्किल है। वैसे जो गीत हमने आपको सुनवाया आज़ाद फिल्म का, उसमें तो मीना कुमारी बहुत ही प्यारी नज़र आती हैं और खिलखिलाती हुई नज़र आती हैं। तो आपको बताना है कि जब वो छोटी थी यानी बाल कलाकार के तौर पर उनकी पहली कौन सी फिल्म थी, और फिल्म जो रिलीज़ हुई और रातों रात जिससे मीना कुमारी स्टार बन गई, ये फिल्म कौन सी थी? आपकी सहूलियत के लिए बता दें, 1952 में रिलीज़ ये फिल्म थी।

ये आवाज़ आपको पहचाननी है श्रोताओं की। इस गीत को किसने गाया? नूरजहां फिल्म का ये गीत था, शकील बदायूनी का लिखा, रोशन की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार जी को ट्रेजेडी किंग नायक के रूप में प्राप्त था, ये कह सकते हैं कि तमगा, कि मीना कुमारी जी को नायिका के रूप में प्राप्त था। जितनी आसानी से वो किसी किरदार को बखूबी निभाती थी, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। छोटी बहू, साहब बीवी और गुलाम फिल्म का दर्द उनकी भावना को जिस तरह से प्रकट करता है वो बहुत ही सराहनीय है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ चेहरे यादों की चांदनी बनकर हमेशा चमकते रहते हैं। मीना कुमारी उन्हीं विरली शख्सियतों में से एक थी। उनकी मुस्कान में मासूमियत, आंखों में अनकहे जज्बात और अदाकारी में ऐसी सच्चाई थी कि हर किरदार एक एहसास बन गया। शायद इसीलिए आज भी उनका नाम आते ही दिल में गजल सी नरमी और पुराने गीतों की मधुर गूंज उतर जाती है। अभिनेता राजकुमार के साथ मीना कुमारी की कितनी फिल्में हैं श्रोताओं? इस फिल्म में एक और मुख्य कलाकार हैं जो मीना कुमारी के साथ हैं, वो कौन है?

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मीना कुमारी पर फिल्माया गया और इस फिल्म में दो कलाकार थे, राजकुमार और राजेंद्र कुमार। यही हमने आपसे पूछा था और हमारे श्रोताओं ने बताया भी है। और बतौर बाल कलाकार जो मीना कुमारी की फिल्म आई पहली, ये थी लेदर फेस। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। बेबी मीना के नाम से प्रसिद्ध हुई वो। 1946 में बच्चों का खेल, 1952 में बैजू बावरा फिल्म थी, जिसके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये फिल्म ऐसी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1953 में रिलीज़ हुई परिणीता, ये भी व्यावसायिक रूप से सफल थी। और बैजू बावरा फिल्म में क्या किरदार था श्रोताओं मीना कुमारी का, ये आप ज़रूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज मीना कुमारी जी का जन्मदिन है, उनको अभिवादन करते हुए सुरीला सफ़र कार्यक्रम में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ कहना चाहूँगा कि उनकी जो फिल्में थीं उनमें आज़ाद कोहिनूर बहुत कामयाब रही। आज इन दो सितारों का ज़मीन पर मिलन है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुनिया के खूबसूरत ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है कार्यक्रम। उनकी फिल्मों में संवाद, अदायगी, अभिनय और ऐसा तालमेल था कि उनकी आवाज़ में एक खास खनक और रूहानी दर्द छिपा हुआ था जो साधारण संवादों को भी असरदार बना देती थी। वो केवल मुंह से संवाद नहीं करती, बोलती, बल्कि उनका पूरा जो शरीर था, उनकी आंखें अर्थों का बयां करती थी। और प्रतिभा के बारे में लिखते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई अभिनय नहीं बल्कि अपने दिल की बातों को साझा कर रही हैं। फिल्म बैजू बावरा में कौन थे मीना कुमारी के साथ?

श्रोताओं, अगली फरमाइश उज्जैन मध्य प्रदेश से हीरा लाल घेराजानी पुष्पा एम गौरव की आई है। ये सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गाना, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत है साहिर का और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, अगली फरमाइश आई है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीशु, तासु, अर्नव, आनंद, सत्यमानंद की। ये सुनना चाहते हैं प्रेम बंधन का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अगली फरमाइश आई है महीर नगर महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, सिद्धांत और प्रिंस की। ये सुनना चाहते हैं हम आपके दिल में रहते हैं का टाइटल सॉन्ग, जिसे आवाज़ें दी हैं सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल ने। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, अगली फरमाइश आई है तहसील पीलीभंगा से प्रेमी बिशन लाल मेहरा जी की। वो सुनना चाहते हैं नई पड़ोसन फिल्म से गाना, जिसे गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने, गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, अगली फरमाइश आई है लालमाता सुदामा नगर रटलाई जिला झालवाड़ा से। हर्षिता, रामेश्वर, काना, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई, प्रभुलाल बागरी सुनना चाहते हैं गदर फिल्म से ये वाला गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है उत्तम सिंह ने।

श्रोताओं, अगली और अंतिम फरमाइश आई है गांव जाखोद से। शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमर जीव खटक, सुंदर लाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक, सुनना चाहते हैं बॉबी फिल्म से अगला गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी के साथ आपके साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है और अब से थोड़ी ही देर में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम, गुड इवनिंग खास साथियों, मेरे युवा साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त हिमांशु, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लेकर आते हैं युववाणी कार्यक्रम में आप सभी के लिए कुछ खास जो सीधे रिलेट करता है हमारे युवा साथियों से, जो सीधे बातचीत करता है हमारे उन युवा साथियों की जो तैयारियाँ कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को संवारने का प्रयास कर रहे हैं और अपने लिए नए इनोवेशंस, नए आइडियाज़ को तलाश रहे हैं। आप सभी ने ट्यून इन किया है 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जयपुर केंद्र, और ये है युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: दोस्तों कहते हैं कि अगर युवा जाग गया, अगर यूथ जाग गया तो देश बदल सकता है, और अगर यूथ ने ठान लिया तो वो कुछ भी मंजिल या कोई भी जो टारगेट है वो हासिल कर सकता है। हर दिल में एक कहानी है, हर नज़र में एक सपना है, और हर सपने को चाहिए एक आवाज़। तो आज अपनी उसी आवाज़ को दीजिए एक नई उड़ान, चाहे बात हो करियर की, टेक्नोलॉजी की, म्यूज़िक की, एंटरप्रेन्योरशिप की, या फिर उन छोटी छोटी बातों की जो ज़िंदगी को बड़ा बना देती है। युवाणी में हर मुद्दा, हर टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, यानी युवाओं के लिए। तो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, मुस्कुराहट चेहरे पर ले आइए, क्योंकि अगले कुछ पल होंगे आइडियाज से भरपूर, एनर्जी से लवरेज और इंस्पिरेशन से लोडेड। बिकॉज हम लेकर आए हैं युवाणी कार्यक्रम जिसमें तीन खास सेगमेंट आप सभी का इंतज़ार करते हैं, और अगले आधे घंटे में हम यही सेगमेंट्स को अपनी नज़र में रखेंगे, इस कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और एंटरटेनमेंट, इस तीन सेगमेंट के साथ में पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। आज खास डे मैं कहूँ तो आज से, यानी कि 1 अगस्त से, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, 7 दिन तक एक खास वीक मनाया जाने वाला है, और वो है ब्रेस्ट फीडिंग वीक। हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, साथ ही होगा मॉनसून का स्पेशल जिसमें हम बात करते हैं प्लांटेशन की, जल संरक्षण की, इन सभी चीज़ों पर आपसे बातचीत होगी। साथ ही होगी युववाणी कार्यक्रम में आपके प्यारे, आपके खास दोस्त हिमांशु की वो खास प्लेलिस्ट जो आप सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और याद करते हैं उन पलों को जब आप स्कूल के टाइम पे या फिर अपने कॉलेज जाते हुए इन गानों को सुनते हैं और वाइब करते हैं। अब अगर बात है हमारे उन युवा साथियों की जो म्यूज़िक पसंद करते हैं, जो थोड़ा सा आप ये चाहते हैं कि थोड़ा एनर्जेटिक म्यूज़िक पसंद करते हैं, उनके लिए मैं आज कुछ खास लेके आया हूँ। थिरकने की कोई रोक नहीं है, आप इन गानों पर थिरक भी सकते हैं, मुस्कुरा भी सकते हैं, गुनगुना भी सकते हैं, बस आपको बने रहना है युवाणी के साथ और सुनना है पहला ये गीत आज की इस एनर्जेटिक शाम में। सैटरडे इवनिंग आपका इंतज़ार कर रही है युवाणी में, आप सुने ये खूबसूरत गीत, बने रहिए युवाणी के साथ।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: दोस्तों आपने सुना है शाश्वत सचदेवा की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत फिल्म धुरंधर से, और उनका साथ दिया है जैस्मिन सैंडलेस ने और रिबेल ने। इसको संगीतबद्ध किया है शाश्वत सचदेवा ने और इसके बोल लिखे हैं जैस्मिन सैंडलेस और रिबेल ने। साथियों हम आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं है, हेल्थ का विषय नहीं है, यह जीवन की पहली पाठशाला है, पहला पोषण है, पहली सुरक्षा है और सबसे बढ़कर एक माँ के निस्वार्थ प्रेम का पहला स्पर्श है। जरा सोचिए इस दुनिया में आने के बाद किसी भी बच्चे को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? न खिलौना, न महंगे कपड़े, न कोई आधुनिक सुविधा। उसे चाहिए सिर्फ अपनी माँ की गोद और माँ का दूध। माँ का दूध केवल भोजन नहीं है दोस्तों, बल्कि प्रकृति का वह अनमोल उपहार है जिसे विज्ञान भी आज तक पूरी तरह बना नहीं पाया। यही कारण है कि इसे बच्चों का पहला वैक्सीन भी कहा जाता है। हर वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरी दुनिया में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना कि ब्रेस्ट फीडिंग केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि स्वस्थ समाज और स्वस्थ भविष्य की नींव है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सलाह है कि बच्चे के जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए और जन्म से लेकर पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना घूटी और ना ही कोई दूसरा आहार। इसके बाद 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक पूरक आहार के साथ ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखना बच्चे के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। दोस्तों आज के दौर में सोशल मीडिया पर हमें फिटनेस, डाइट और न्यूट्रिशन की हजारों सलाह मिलती है, लेकिन शायद ही कोई यह बताता है कि जीवन की सबसे पहली और सबसे संपूर्ण डाइट तो प्रकृति ने पहले ही तैयार कर दी है और वो है ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें मौजूद पोषक तत्व, एंटीबायोटिक्स, विटामिन और मिनरल्स बच्चे को संक्रमणों से लड़ने की शक्ति देते हैं। यह निमोनिया, डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम करता है, बच्चे के दिमाग के विकास में मदद करता है और भविष्य में मोटापा, मधुमेह जैसी कई समस्याओं के जोखिम को भी कम करता है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी जागरूकता से ही क्या हम इस खास वीक के उद्देश्य को समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, बिकॉज आज भी हम अगर देखें आसपास में अपने, या फिर मैं कहूँ छोटे शहरों में, छोटे गांव में, तो बच्चे के होने के बाद में सलाह ज़रूर दी जाती है, लेकिन अभिभावक गलती से या जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें बच्चे को ज़रूर खिलाते हैं या टेस्ट करवाते हैं जो उनकी सेहत के लिए सही नहीं होती है। उसके बजाय हमें ये प्रयास करना चाहिए, हम इसके लिए जागरूक करें लोगों को कि वो जो बच्चा पैदा होता है तो उसे सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग और माँ का दूध ही पीना चाहिए और इसके लिए डॉक्टर की पूरी सलाह हमें माननी चाहिए। माना कि एक समय था जब अनुभव ही इन चीज़ों में अच्छा साबित होता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे विशेषज्ञता हो गई, ये काफ़ी अच्छी है, तो आप डॉक्टर की सलाह माने, उनके कहे बिना बच्चे को किसी भी तरह की ऐसी चीज़ ना दें जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। इसी उद्देश्य के साथ और इसी रेस्पेक्ट को कायम रखने के लिए जो एक माँ के दूध में बच्चे के लिए होती है, वो एक बच्चे के लिए अपने शुरुआती जीवन में माँ के दूध जितने जो पोषक तत्व हैं वो जो बच्चे को मिलते हैं, उस रेस्पेक्ट को कायम रखने के लिए और इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए खास वीक मनाया जाता है जो कि 7 डेज तक मनाया जाएगा। इसमें आपके नियरेस्ट जितने भी स्वास्थ्य संस्थाएँ हैं वहाँ पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने नज़दीकी आशा से, आंगनवाड़ी से या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें
4: क्या गलतियां बच्चे के पैदा होने पर नहीं करनी है और माँ का दूध उसमें किस तरह से हमें हेल्पफुल करने वाला है। बिकॉज जब विकास हो रहा होता है, मैं एक एग्जांपल के साथ दूं, अगर किसी पौधे का विकास होता है तो उसमें बहुत सारी एफर्ट्स जो हैं वो लगते हैं। सिमिलरली एक इंसान, एक बच्चे का जो विकास होता है तो उसमें माँ का दूध का बहुत बड़ा रोल है। इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। डेट्स वाई ये वीक, खास वीक मनाया जाता है हर वर्ष एक अगस्त से 7 अगस्त के बीच में, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। दोस्तों आइए रुक करते हैं आज की शाम के अगले गीत की तरफ। आप सभी की रेडियो सेट्स पर फिल्म कॉकटेल से ये खूबसूरत गीत, आप बने रहिए युवाणी के साथ।

दोस्तों, भी आपने सुना है नीरज श्रीधर की आवाज़ में फिल्म कॉकटेल से एक खूबसूरत गीत, जिसे म्यूजिक दिया प्रीतम ने, इसके बोल लिखे इरशाद कामिल ने। दोस्तों, आज एक खास मौसम भी हमने फेस किया है, जो कि भरी गर्मी में एकदम से जो मानसून ने आज बहुत अच्छी बारिश की है। मुझे उम्मीद है कि सैटरडे की इस खूबसूरत सैटरडे की इस शाम में, या मैं कहूँ सैटरडे के इस खास दिन पे, आप सभी ने अपनी छतों पे जाके इस बारिश को एंजॉय किया होगा, मस्ती की होगी अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मानसून में बारिश का होना भी हमारी फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश होगी तभी पानी होगा, तभी पेड़ पौधे खुशहाल दिखेंगे, और तभी जो है ये जो क्लाइमेट की जितनी भी साइकिल है ना, वो कंप्लीट होगी। जैसे कि हम लास्ट 2 ईयर से देखते आ रहे हैं, बारिश अच्छी खासी हो रही थी, हमें ये कहें तो एक लक फैक्टर भी लग रहा था कि बारिश हो रही है, लेकिन मानसून इस बार काफ़ी लेट हुआ है, या मैं कहूँ उस एक तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं बरसा जिस तरह से आज बारिश हुई है। अब हम बात क्यों कर रहे हैं बारिश की दोस्तों, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ हम एक इनिशिएटिव चलाते हैं जिसे कहते हैं कि हमें मानसून के सीज़न में एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, उस पौधे की देखभाल ज़रूर करनी चाहिए, उस पौधे को इस तरह से रखना चाहिए जैसे वो हमारे परिवार का एक सदस्य हो, और उसे बारिश के मौसम में लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमें एक फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को का रियलाइजेशन दिलवाता है कि फ्यूचर में जाके ये पेड़ जो है वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, जब वो पौधा पेड़ बनेगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छी लाइफ देने की कोशिश करेगा। और वो अच्छी लाइफ, वो लाइफ है जो हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं या हमारे जितने एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने जो पौधे लगाए वो आज हमें इतने अच्छे लग रहे हैं, हमें अच्छे लगते हैं, उनके पास से गुजरना अच्छा लगता है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और हमें भी ये प्रण लेना चाहिए कि हम भी एक पौधा इस मानसून सीज़न में ज़रूर लगाएंगे, और वो पौधे को अपनी माँ के नाम डोनेट करेंगे कि एक पौधा अपनी माँ के नाम ज़रूर लगाएंगे, और उसकी देखभाल भी करेंगे, और मानसून में होने वाली बारिश में उसको और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसलिए वो जल्दी बढ़ेगा, जल्दी अच्छा होगा। और आजकल हमारे पास में इंटरनेट की दुनिया है, हमारे पास में इजी चीज़ों का, इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, तो आप ये फाइंड आउट करें कि कौन सा पौधा लगाने से आपको जल्दी उससे फ़ायदे होंगे, या जल्दी आप उसको ग्रो कर पाएंगे, आपको उसमें एफर्ट्स अगर थोड़े कम भी लगाने पड़े तो आप लगा लेंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से पौधे लगाएं, लेकिन उसकी देखभाल ज़रूर करें। और यही मानसून सीज़न में खास होगा हमारे लिए, हमारे फ्यूचर में आने वाली हमारी एक नई पीढ़ी के लिए। दोस्तों, उसी के साथ राजस्थान जैसी भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ पे पानी की समस्या बहुत लंबे समय से रही है, और अभी जाके कुछ चीज़ें सुधरी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तक हमें ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देख के चलनी होगी कि जब स्तर गिरेगा तो सबसे पहले जो परेशानियाँ होंगी वो राजस्थानी वासियों को होने वाली हैं। तो उसके लिए हमें अभी यह प्रयास करना चाहिए कि हम पानी को बचाएं, है ना, पानी को बचाएं, और जितना ज़्यादा हो सके रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़े, पानी जो बारिश का पानी है उसको संग्रहित करें, उसे संभालें और उसे यूज़ करना शुरू करें, चाहे उसको फिल्टर के, काफ़ी बहुत सारे तरीके हैं चीज़ों को यूज़ करने का, बहुत सारे जो आजकल नए घर बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही है, उनमें पहले ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है जिसमें जल संरक्षण किया जा सके, और बारिश के मौसम में ये आपको फ्यूचर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नए बेनिफिट्स ही देते हैं। साथ ही उन युवा साथियों के लिए भी एक नया ऑप्शन भी है, जो अगर इस चीज़ में, इनिशिएटिव में कुछ करना चाहते हैं तो अपना एक करियर भी अच्छा बना सकते हैं, बट ज़रूरत है जज्बे की, उम्मीद की और कोशिशों की, और उन कोशिशों में आपका जज्बा दिखना चाहिए, उम्मीद दिखनी चाहिए, फिर देखिएगा आप एक सफलता की एक बहुत बड़ी सीढ़ी पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और वो सफलता आपको दिखेगी एक अच्छे नेचर के साथ, अच्छे लोगों के साथ और एक अच्छे फ्यूचर के साथ। आइए दोस्तों, आज की शाम का ये अंतिम गीत सुनते हैं आप सभी की रेडियो सेट्स पर, आप बने रहिए युववाणी के साथ।

दोस्तों, भी आपने सुना है फिल्म साथिया से ये खूबसूरत गीत। अब समय हो चला है कार्यक्रम में अब रुक करें आपके पसंदीदा सेगमेंट रोजगार सूचना की तरफ। रोजगार सूचना की आज की खबर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से, जिसने 4098 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जो कि जूनियर इंजीनियर सहित अन्य की वैकेंसी है। आवेदन जो शुरू होंगे वो अगस्त मिड में यानी 14 अगस्त से शुरू होंगे, और इसकी अंतिम डेट जो है इसमें एग्ज़ाम वो फॉर्म भरने की वो है 13 सितंबर 2026। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि है rrbapply.gov.in, और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं वेबसाइट एक बार फिर दोहरा देता हूं दोस्तों, rrbapply.gov.in। तो दोस्तों, ये था आपके बीच आपका पसंदीदा सेगमेंट रोजगार सूचना। आइए सुनते हैं आज की शाम का एक और एनर्जेटिक सॉन्ग। आप सभी रेडियो सेट्स पर ये अंतिम सॉन्ग होने वाला है, क्योंकि ये सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। बिकॉज ये 2010 की एक फिल्म का गाना है, जो फिल्माई गई है इमरान हाशमी पर, और आप गेस करें कि ये फिल्म कौन सी है। आप सभी रेडियो सेट्स पर बने रहिए युवाणी के साथ।

ਲਾਇਆ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਮਾਇਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ

साथियों, इस गीत के साथ घड़ी ने इशारा कर दिया है कि मैं आप सभी से इजाजत लूं। उम्मीद करते हैं आपको आज कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। दोस्तों, बने रहिए आकाशवाणी के साथ, सुनते रहिए युवाणी कार्यक्रम। कार्यक्रम में मैं था आपके साथ आपका दोस्त हिमांशु। फिर मिलेंगे नए अंक के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। इस समय शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का पहला गीत रवैया वस्तवैया फिल्म से आतिफ असलम की आवाज़ में, प्रिया पांचाल के बोल और संगीत सचिन जिगर का।

फिल्म संगीत का अगला गीत सुनिए, फटा फोस्टर निकला हीरो फिल्म से। आतिफ असलम और चिन्मय स्प्रदा की आवाज़ें हैं, बोल है अमिताभ भट्टाचार्य और इरशाद कामिल की, संगीत प्रीतम का।

गीत में आवाज़ है राहत फ़तेह अली खान की, बोल है मनोज मुंतशिर की और संगीत है तनिष्क बागची का।

फिल्म संगीत का अगला गीत प्रस्तुत है हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से। आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की। गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत है विशाल और शेखर का।

राहत फ़तेह अली खान और ऋचा शर्मा की आवाज़ में आपने सुना ये गीत, जिसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत था विशाल शेखर का। हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत का अंतिम गीत सुनिए तमाशा फिल्म से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की, बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:57 हो रहे हैं एवं आइए अब आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 7 बजे प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम में बातचीत

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण। शाम 7:30 पर होगा खेती बाड़ी कार्यक्रम। इसके अलावा हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी इस प्रकार है। रात 8 बजे होगी संसद की साप्ताहिक समीक्षा का प्रसारण। रात 9:30 राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती का प्रसारण होगा। रात 10 बजे होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
1: मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरू का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय

0: गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथूला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मिन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर पर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, जब वी मेट फिल्म से, आवाज़ है मोहित चौहान की, गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से। फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से। आवाज़ें हैं उदित नारायण, साधना सरगम की। गीत को लिखा है मजरूह ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, पत्थर फूल फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में। बोल है रविंद्र रावल के और संगीत है राम लक्ष्मण का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
9: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी होगी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, कई मुकाबलों में पदक जीते। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में विमानन क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। श्री मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में बने नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साल 2014 से देश में 74 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या बढ़कर 166 हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार में छोटे शहरों के लोग भी हवाई सफर कर रहे हैं।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माय भारत पोर्टल के जरिए इस देशव्यापी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा स्थानों को जोड़ते हुए यह अभियान नशे के सेवन के खिलाफ सामूहिक संकल्प की एकजुटता को मजबूत करता है। इसमें सामाजिक आध्यात्मिक संगठन, युवा क्लब, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संघ और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवक अपने अपने स्थानों से जुड़ेंगे। 100 सप्ताह के इस अभियान के दौरान पदयात्रा, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक और खेल आयोजन तथा अन्य गतिविधियां होंगी। इन सभी के जरिए नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। ये अभियान युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है, इसमें हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। आज उदयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने को लेकर सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।
2: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी, आज वो एक जन आंदोलन बन गया है। और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूँ कि वो एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, हमारी माँ की स्मृतियों को भी सजोएं, आने वाली प्रकृति, आने वाले पीढ़ी को भी हम ये बताएं कि उनको हम फल भी दे करके जा रहे हैं, छाया भी दे करके जा रहे हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करके भी जा रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कालका माता नर्सरी परिसर से इस अभियान की शुरुआत की। गौरतलब है कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस साल मॉनसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस मिशन के तहत अब तक 20 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अरावली संरक्षण के लिए 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और बांसवाड़ा में चंदन वन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश भर में आज स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। इसके तहत 7 अगस्त तक लोगों में स्तनपान के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। इस दौरान प्रसूताओं, धात्री माताओं और उनके परिजनों को स्तनपान का महत्व बताया जाएगा। अलवर के मदर मिल्क बैंक में स्तनपान सप्ताह के दौरान वर्कशॉप, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और रैली सहित अन्य आयोजन होंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रदेश में सुरक्षित मातृत्व सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को समय पर बेहतर इलाज के लिए रेफरल परिवहन तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सुरक्षित प्रसव और जननी एक्सप्रेस सेवाओं के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश सहित परिपत्र जारी करने को कहा। जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन से वीसी के जरिए हुई इस बैठक से मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक, सीएमएचओ और अन्य अधिकारी जुड़े। मुख्य सचिव ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया और हाइपरटेंशन के लिए एसओपी जारी करने को कहा, जिससे प्रदेश भर में एक समान उपचार प्रोटोकॉल की पालना हो सके। राज्य में कर चोरी और अपात्र कर लाभ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से कई जिलों में आज सर्वे की कार्यवाही की गई। राजसमंद, बाड़मेर, प्रतापगढ़, जैसलमेर और जयपुर सहित कई जिलों में एक साथ जांच की। इसमें कई मामलों में कर कानूनों के उल्लंघन और कम टैक्स दिखाने और देने जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इन मामलों में दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है। विभाग ने कहा है कि राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। श्री बागड़े ने SKRAU में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने पिछले 40 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। करीब 28,000 से अधिक विद्यार्थियों ने कृषि प्रशिक्षण किया है। श्री बागड़े ने कहा कि विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
3: राजस्थान में अभी जो नीट का निकाल लगा उसमें राजस्थान ने अच्छी प्रगति की, लेकिन इससे और भी करने की जरूरत है। और माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक, हमारे जूनियर कॉलेज, यहाँ के जो छात्र छात्राएं परीक्षा देती है, अभ्यास करती है, उन्हीं के लिए उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों ने, अध्यापकों ने, यूनिवर्सिटी और स्कूल वालों ने कोशिश

0: करना है।
1: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि SKRAU को इंडिया AI मिशन से कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मंजूरी मिली है। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे क्षेत्र के किसानों और कृषि शोधार्थियों को फायदा मिलेगा। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में केंद्र सरकार और MCC ने वन टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग और ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन की नई व्यवस्था शुरू की है। इसमें छात्र घर बैठे ही फ्रीज और फ्लोट विकल्प ऑनलाइन चुन सकेंगे। विद्यार्थियों को कॉलेज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर आज चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल ने राज्य के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सत्यापन निर्धारित समय सीमा में पूरा करना होगा। देरी होने पर संबंधित सीट स्वतः ही निरस्त हो सकती है। श्री गोयल ने प्रवेश शुल्क की जानकारी पोर्टल पर तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। ऑल इंडिया कैटरर्स फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देशभर से कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सीतापुरा स्थित JECC में हो रहे इस सम्मेलन को आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संबोधित किया। श्री देवनानी ने इस मौके पर प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन यहाँ की पहचान और संस्कृति हैं। कैटरिंग उद्योग के लोग इसे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों से स्वाद के साथ साफ सफाई, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T127 दो शावकों के साथ नजर आई है। इससे वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों में उत्साह है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शावकों की सुरक्षा के लिए कैमरा ट्रैप और फील्ड पेट्रोलिंग के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से आज एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T127 दो शावकों के साथ जोन नंबर 7 में नजर आई है। बाघिन T127 लक्ष्मी T8 लाडली की बेटी है, जो करीब 6 वर्ष की है तथा पहली बार मां बनी है। यह बाघिन जोन नंबर 6 और 7 में विचरण करती है। बाघिन के साथ नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। बाघिन के क्षेत्र में लगातार निगरानी और प्रभावी गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
1: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जेवलिन थ्रो, ट्रिपल जंप, जूडो और मुक्केबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया ने स्वर्ण, नीरज चोपड़ा ने रजत, यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित विभिन्न नेताओं ने देश का गौरव बढ़ाने पर इन खिलाड़ियों की मेहनत और शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज और कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी की जीत के लिए भी प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। उनका मुकाबला आज इंग्लैंड की चेंटेल रीड से होगा। 8 गोल्ड, 15 सिल्वर और 7 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में भारत फिलहाल 6 स्थान पर बना हुआ है। फ्रेंडशिप डे यानी मैत्री दिवस कल मनाया जाएगा। देश भर में अगस्त के पहले रविवार को ये दिन मनाया जाता है। मैत्री दिवस दोस्ती को समर्पित है। इस दिन लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड, उपहार और कार्ड का आदान प्रदान करते हैं। ये दिन एक दूसरे से जुड़ने, मित्रों के आभार व्यक्त करने के साथ ही आत्मीय और खुशनुमा माहौल प्रदान करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, कई मुकाबलों में पदक जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। पिछले महीने बीकानेर जिले में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं। हरियाली राजस्थान अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण हुआ, नशा मुक्ति अभियान को गति मिली, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हुई और विभिन्न विभागों ने जन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। प्रस्तुत हैं बीकानेर जिले की प्रमुख गतिविधियां। हरियाली राजस्थान अभियान के तहत राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय में औषधीय पौधों के वृक्षारोपण का विशेष कार्यक्रम हुआ। महाविद्यालय परिसर में पारिजात, अर्जुन, बिल्व, करंज, मीठा नीम और खेजड़ी सहित अनेक औषधीय पौधे लगाए गए। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने इन पौधों के औषधीय महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका की जानकारी दी और अधिक से अधिक पौधरोपण करने का आह्वान किया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की तैयारियां जिले में शुरू हो गई हैं। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ध्वजारोहण, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा, पेयजल, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की तथा विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत जिले के वरिष्ठ नागरिकों को भी बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। देवस्थान विभाग के अनुसार बीकानेर जिले के 205 वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के ठहरने, सुरक्षा, अन्य आवश्यक सुविधाओं का बंदोबस्त किया गया है। दहेज प्रतिषेध दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों ने दहेज नहीं लेने और नहीं देने की शपथ ली। इस अवसर पर दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता का संदेश दिया गया। विभाग की ओर से सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और छात्रावासों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक में नशे की रोकथाम और जन जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि नशे के खिलाफ प्रशासन, समाज, शिक्षण संस्थानों और आमजन की संयुक्त भागीदारी जरूरी है। बैठक में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई, जागरूकता अभियान और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। पुलिस विभाग ने बताया कि ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है तथा सूचना देने के लिए विशेष हेल्पलाइन भी चलाई जा रही है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं कुलानुशासक कार्यालय का शुभारंभ किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर अभ्यागत केंद्र भी शुरू किया गया है। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य आगंतुकों को आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। जिले में जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेद सिंह रत्नू ने सभी सरकारी अस्पतालों में जन्म और मृत्यु का शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम में हेल्प डेस्क स्थापित करने, वृद्धजनों और महिलाओं को प्राथमिकता से सहायता उपलब्ध कराने तथा पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों छतरगढ़ क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न सरकारी संस्थानों और ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास, अस्पताल, पशु चिकित्सालय, अन्नपूर्णा रसोई और अन्य कार्यालयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आमजन से जुड़े कार्यों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। ग्रामीण सेवा शिविर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए और ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने पर बल दिया गया। इसी के साथ बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो उड़ान योजना जनता सारू हवाई सफर किफायती बनायो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उदयपुर राज्य स्तर रा वन महोत्सव री शुरुआत की। पर्यावरण बचावण ने सगला री भेली जिम्मेदारी बतायो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनावण माथे जोर दीनो। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलना माए भारत रा खिलाड़ियों रो चोखो खेल रो दर्शाव। 30 तमगा सागे फिलहाल छठी ठौड़ माथे। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि देश में विमानन हलको तेजियों बढ़ रही है। वह कहो कि उड़ान योजना जनता सारू हवाई सफर न किफायती बना दिनो है। वह आज आंध्र प्रदेश रा भोगपुरम माई बनाई जानुआ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रा उद्घाटन रे मौके बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि साल 2014 में देश में 74 हवाई अड्डा है, जारी तादाद अब बेधर 166 वैगी है। वह कहो कि एनडीए रा राज में नाना शहरां री जनताई हवाई सफर कर रही है।
2: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान री वर्चुअल तरीकों शुरुआत करण रो कार्यक्रम है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रा माई भारत पोर्टल रे जरिए वो अभियान आखा देश में चलायो जावेला। 10,000 बत्ती ठोड़ा ने जोड़ता थका वो अभियान नशो करण रे खिलाफ भेड़ा संकल्प ने मजबूत करेला। 100 सप्ताह रा ई अभियान रे दौरान हर दीतवार ने पदयात्रा ध्यान सत्र सांस्कृतिक और खेल आयोजन सागे न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखर नशो नी करण रो संदेश दियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि पर्यावरण ने बचावण री सगला री भेली जिम्मेदारी है, जिणमाय हर रहवासी री भागीदारी वेवणी चाहिए। वे आज उदयपुर में राज्य स्तर रा वन महोत्सव कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि आवती पीढ़ियां सारू सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण बनायो राखण बाबत सगला ने मिलर कोशिश करनी वेला।
3: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी, आज वो एक जन आंदोलन बन गया है। और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूँ कि वो एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, हमारी माँ की स्मृतियों को भी सजोएं, आने वाली प्रकृति आने वाले पीढ़ी को भी हम ये बताएं कि उनको हम फल भी दे करके जा रहे हैं, छाया भी दे करके जा रहे हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करके भी जा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री पौधों रो पर कालका माता नर्सरी परिसर इंदी शुरुआत किन्नी। ध्यान जोग है कि मिशन हरियाणो राजस्थान रातेत इं चौमासा माए 10 करोड़ पौधा रोपणों तय करीचियो है। ई मिशन रातेत हाल ताई 20 करोड़ बत्ता पौधा रोप दिया चिया है। अरावली री डूंगरिया ने बचावण सारू 30,000 हेक्टेयर बत्ता हल्का माए पौधा रोपया जावेला, जदकै उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही और बांसवाड़ा माए चंदन वन बनाया जावेला। प्रदेश में आज स्तनपान सप्ताह शुरू हुयो। इन रतेत बच्चा ने मारो दूध पावन रे बारा माए 7 अगस्त ताई जाग जगाई जावेला। इन दौरान नुवी मायड़ा दूध पावन वाली मायड़ा अरवाना परिवार वाला ने स्तनपान रा महत्व री जानकारी दी जावेला। इस सप्ताह रे दौरान अलवर रा मदर मिल्क बैंक माए वर्कशॉप सवाल जवाब री होड़ और रैली समेत न्यारा न्यारा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। प्रदेश में हिफाजत सागे माँ बनवाऊ जुड़ी सेवाओं रो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जायजो लीनो। वे आस वाली लुगाइया ने टेम सर बेहतर इलाज सारू रेफरल परिवहन तंत्र ने मजबूत बनावन रा हुक्म दीना। मुख्य सचिव हिफाजत सागे जापो करावण और जननी एक्सप्रेस सेवा सारू एकदम साफ दिशा निर्देश समेत सर्कुलर जारी करण बाबत कहो। जयपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल अस्पताल रा सुप्रिंटेंडेंट CMHO और दूजा अहलकार सागे बातचीत करता थका मुख्य सचिव घनी जोखिम वाली आस वाली लुगाइया माए खून री कमी और हाइपर टेंशन जुड़ी SOP जारी करन रा हुकम दीना। राज्य में कर चोरी और अपात्र कर लाभ के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान रा तहत

0: विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह में शामिल थिया व वठ ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र रो उद्घाटन कीनो। ई मौके राज्यपाल कहो के ओ विश्वविद्यालय लारला 40 साल में 28,000 विद्यार्थियों ने खेतीबाड़ी री सिखावण दीनी। श्री बागड़े कहो के विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनावण आज रा भगत री सब मोटी जरूरत है।
1: राजस्थान में अभी जो नीट का निकाल लगा उसमें राजस्थान ने अच्छी प्रगति की, लेकिन इससे और भी करने की जरूरत है। और माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक, हमारे जूनियर कॉलेज, यहाँ के जो छात्र छात्राएं परीक्षा देती है, अभ्यास करती है, उन्हीं के लिए उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों ने, अध्यापकों ने, यूनिवर्सिटी और स्कूल वालों ने कोशिश करना है।
0: ई मौके केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो के SKRAU ने इंडिया AI मिशन खेतीबाड़ी में जुड़ियो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलन री मंजूरी दीनी है। ओ सेंटर खोलन सारू करीब 20 करोड़ रुपया रो खर्चो आवेला। नीट UG काउंसलिंग 2026 में केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एक दफा जावण और ऑनलाइन तरीकों कागजात रो सत्यापन करावण री नई व्यवस्था शुरू कीनी है। इन तहत विद्यार्थी घर बैठियाई फ्रीज और फ्लॉट विकल्प ऑनलाइन तरीकों चुन सकेला। नीट UG काउंसलिंग रे बारे में आज चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल प्रदेश रा सगला मेडिकल और डेंटल कॉलेजों रा नोडल अहलकारा सागे मीटिंग कीनी व कागजात रो ऑनलाइन सत्यापन ते मियाद में पूरो करण रा हुकम दीना। ऑल इंडिया कैटरर्स फेडरेशन रो राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में राख्यो जा रियो है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इनरो उद्घाटन कीनो। ई मौके वे एक प्रदर्शनी री शुरुआती कीनी। कार्यक्रम में देवनानी कहो कि राजस्थान रा पारंपरिक व्यंजन अठरी पिछाण है और कैटरिंग उद्योग रा लोग इन्हें देश दुनिया ताई पुगावण रो काम कर रहा है। वह कैटरिंग एंड मेहमान नवाजियों जुड़िया लोगों स्वाद सागे साफ सफाई नई तकनीक और पर्यावरण ने बचावण माथे खास ध्यान देवण बाबत कहो। श्री देवनानी कहो कि प्लास्टिक कम काम लेवण और भोजन री बर्बादी रोकण सारू सगला ने मिलर कोशिश करनी वेला। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T127 दो बच्चा सागे नजर आई है। माणा खबर नवीस बतायो कि बाघिन रा बच्चा री हिफाजत सारू कैमरा ट्रैप और फील्ड पेट्रोलिंग रे जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से आज एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T127 दो शावकों के साथ जोन नंबर 7 में नजर आई है। बाघिन T127 लक्ष्मी T8 लाडली की बेटी है जो करीब 6 वर्ष की है तथा पहली बार मां बनी है। यह बाघिन जोन नंबर 6 और 7 में विचरण करती है। बाघिन के साथ नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। बाघिन के क्षेत्र में लगातार निगरानी और प्रभावी गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: अरब खबर राष्ट्रमंडल खेलाऊं। स्कॉटलैंड रा ग्लासगो में चल रहा राष्ट्रमंडल खेलना में भारत रा खिलाड़ी भाला फेंक, तीन दफा कूद, जूडो और मुक्केबाजी री होड़ा में तमगा जीतिया है। महिलाओं री मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मीन लंबोरिया सोनारा, रजत चौपड़ा चांदीरो और यशवीर सिंह कांसारो तमगो जीतियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत न्यारा न्यारा नेता देश रो माथो ऊंचो करण वाला आंख खिलाड़ियों री मेहनत और शानदार खेल री सराहना कीनी है। इन बीच भारत री मुक्केबाज और कोटारी बेटी अरुंधति चौधरी रो आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड री चेंटल रीड मुकाबलो फैला। सोनारा 8, चांदीरा 15 और कांसारा 7 तमगा सागे पदक तालिका में भारत फिलहाल छठी ठौर माथे है। काम धंधा सारू काम ली जावन वाली रसोई गैस री टंकी रो मोल करीब 200 रुपया कम करती उचियो है। तेल कंपनियां रा इन फैसलाओं रेस्तरां, होटल, ढाबा और खान पीन री चीजा रा कारोबारियां ने फायदो मिलेला। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रे मुजब गैस री टंकियां रो नुओ मोल आज लागू फेंक्यो है। वस्त

0: तुअर सेवा कर जीएसटी री मदमाए लारला महीना 2,11,200 करोड़ रुपयों बत्ती रकम भेड़ी करी जी। लारला साल जुलाई महीना रा 1,83,065 करोड़ रुपया रे मुकाबले आ 15% बत्ती बढ़ोतरी है। माली साल 2026-27 सारू काल ताई 5,90,00,000 बत्ती आयकर रिटर्न दाखिल करी जी। इन सारू आयकर विभाग री ओरों सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए रिटर्न दाखिल करन वाला रो धन्यवाद करी जियो। प्रदेश रा कई हलका माए आज ही मैं बरसियो। बांसवाड़ा, पाली और भीलवाड़ा माए चोखो मैं व्यो, जदका भरतपुर और बाड़मेर माए छाटो छिड़को फियो। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो उड़ान योजना जनता सारू हवाई सफर किफायती बनायो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उदयपुर राज्य स्तर रा वन महोत्सव री शुरुआत कीनी। पर्यावरण बचावण ने सगला री भेड़ी जिम्मेदारी बतायो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनावण माथे जोर तीनो। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत रा खिलाड़ियों रो चोखा खेल रो दर्शाव। 30 तमगा सागे फिलहाल छठी ठौड़ माथे। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाड़ा सगला श्रोताओं ने आशा भाई का घना घना राम राम सा, और प्रभु भाई आपने भी मारा घना घना राम राम।
7: बिल्कुल, आपने और सुनवा वाला जता भी अपना हितालु श्रोता है जगह दूर दराज गांव ढणी रामायण बैठ रेडियो सुने है, और आज को तो आपनो विशेष कार्यक्रम है किसान वाणी, तो आप सगला हितालु ने घने मानसो थका भाई प्रभु दयाल वर्मा की तरफ से भी राम राम सा। देखो बिरखा रो दौर चालन लाग रहे है, और अस्यारे मायने ज्या आप रोजिना कोई ना कोई कार्यक्रम के माध्यम से बातड़ी आप किसान भाई तक पूगती हुए कि भाई अच्छा टाइम कमाए तो एक तो आपने पानी है भी की अपन बचत करनी चाहिए।
6: बिल्कुल,
7: क्योंकि आपने जीवन को जल ने है जो जीवन को आधार बताए गए है, और महापुरुष भी कहे कि भाई तीन रतन है जगत में, दाणा पानी और बोल, आंखें आगे और क्या देखा खूब टटोल, यानी कि दाणा है पानी है और बोल है इंसान रा, ए दुनिया का बड़ा जगह रतन है, कीमती वस्तुओं वहाँ कमाए अन्न शामिल किया गया है, तो भाई सोच समझ रहा अपन शब्दों को इस्तेमाल भी सोच समझ रहा करना चाहिए।
6: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
7: और अन है बिन भी अपन बचना चाहिए, क्योंकि विश्व अपनी उधर पूर्ति हुए, और पानी को भी अपन बचत करनी चाहिए, क्योंकि पानी बचलो तो अपनो जीवन है जो बचलो, पानी पर देखो अपनो पूरो जीवन को निर्माण या कैस कहा जीवन की उत्पत्ति है जगह भी पानी से हुई, ई वास्ते अपन बिरखा रो टेम है तो अपना जगह भूमिगत जल स्तर है बिन उपचो लेवा के वास्ते बरसात रो पानी अपन परंपरागत अपनी नाडी है बावड़ी है बाको अपन संरक्षण फुटड़ा टूटड़ा पड़िया है तो बन अपन थोड़ा सा ठीक कर बांग मान अपन पानी की बचत।
6: और प्रभु भाई अपना काश्तकार भाया ई बात ने बहुत अच्छी तरह समझे छे, भाई सूखा प्रदेश में भी रहे छे राजस्थान छे, पानी की कद कमी हो जावे कद कोई अतोपतो को ना ई ताई ई महत्व ने तो वे अच्छी तरह ही समझे छे। और अब देखो आगे कार्यक्रम किसान वाणी ने आगे बढ़ावे ला आपा,
7: और आगे बढ़ाता था अपने किसान भाइयों तक जो की जानकारी है भी के वास्ते डॉक्टर महेश कुमार शर्मा जी अपने स्टूडियो में है, तो क्यों ने आशा भाई थे ही बातचीत मसू करो, और किसान भाई ने जगी आज को जो विषय है अपनों किसानों की आमदनी बढ़ावा के वास्ते फल और सब्जियों को प्रसंस्करण ई विषय पर जानकारी आप डॉक्टर साहब से ले।
6: बिल्कुल बिल्कुल सर, किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाला सगला श्रोताओं ने आशा धाबाई का घना घना राम राम सा। श्रोतावा आज अपने साथ स्टूडियो में छे महेश के शर्मा, आप डीन कृषि महाविद्यालय कोटपुतली। सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत छे शर्मा साहब, राम राम सा।
8: राम राम सा।
6: और आज आप यहाँ से बात करेला किसाना की आमदनी बढ़ावा के लिए फल सब्जियां का प्रसंस्करण का बारे में। शर्मा साहब यह बताओ सा कि ज्या की आज को आपनो विषय छे कि किसाना की आमदनी बढ़ावा के लिए वहाँ की आर्थिक स्थिति ने मजबूत करवा के लिए अगर आप फल और सब्जियां को प्रसंस्करण करा, पर इमें समझ वाली यह बात छे कि प्रसंस्करण जो होवे छे वो काई होवे छे।
8: राम राम किसान भाइयों। देखो किसान भाइयों, यो प्रसंस्करण मतलब छे आपा जो बड़का आपने कहावत कह के रचा कि आम का आम और गुठली का दाम, तो ई के मान कहे छे आप आजकल देखो किसान भाई कितनी मेहनत सू खेती करे, और खेती करवा के बाद में आप जिया मान लो 100 किलो आप टमाटर पैदा कर तो भी लगभग 30 किलो टमाटर बेकार जाए सड़ गल जाए, जब सीजन हो तो भी में बहुत प्रोडक्शन होया करे, और वो प्रोडक्शन आपने भी के मायने करीब करीब मतलब 30-40% खराब हो जाए, तो इन्हें बचावाट है यो जो वेस्टेज है, एक तो एनवायरमेंट भी खराब हो, किसान भाइयों ने इनकम भी कम मिले, और दूसरा कंज्यूमर ने भी अच्छी क्वालिटी कौन मिले, तो फूड प्रोसेसिंग से मतलब से किसान भाइयों कि जो भी खेती से आपने फल एवं सब्जियां का जो प्रोडक्ट खावा का मिले खाना का रूप में बदलबो, या खाना का एक रूप ने दूसरा रूप में बदल खाबो, तो फूड प्रोसेसिंग में कई बात हो यहाँ करे जी आप फूड प्रोसेसिंग में वैल्यू एड कर दिया भी की मतलब जो बाजार मूल्य से बिना बढ़ा दिया जी हाँ बार आप आम की बात करा जी, तो आम जी सीजन में आपने मिले 50 रुपए किलो मिल जाए तो बीको पल्प निकाल, और अगर आप सर्दियां के मायने जो आपने फरवरी मार्च अप्रैल महीना में बेचा तो वो आप 200 रुपए का तक भी पल्प बिके, तो इस हिसाब से आप इन्हें प्रोसेसिंग कर और ज्यादा आमदनी कमा सका
6: जी। यानी कि बाबू मतलब यही चे कास्ट कर पाया कि सीजन का टाइम जो चीज सस्ती चे उन्हें आप ले, अगर ऑफ सीजन में जबकि वह पैदा कोनो है उस टाइम बाजार में अगर बेचोला तो आपने उस चीज को अच्छो दाम मिल जाओ लो, इसके लिए आपने वहाँ सामानों को फलों या सब्जी वहाँ की प्रोसेसिंग करनी पड़े ली ताकि वहाँ की जो उम्र चे वह बढ़ जावे। वासा बहुत ही बढ़िया तरीकों से किसानों के लिए हो कि प्रोसेसिंग कर वे आपको जो सामान चाहे उन्हें उच्च दरों पर बेच सके चे और आपकी आमदनी ने बढ़ा सके चे। अब आपसे यह पूछना चाहूंगा सा कि जहाँ प्रसंस्करण की आप बात कर रहे हैं कि फल और सब्जियां का किसान भाई प्रसंस्करण कर कहीं आपकी आमदनी ने बढ़ा सके चे, तो प्रसंस्करण का तरीका जो चे वे कौन कौन सा चे, सामान्य तरीका से किसान भाई की तरीका से फल और सब्जियों को प्रसंस्करण कर सके चे।
8: देखो किसान भाई जो आप सामान्य तरीका फूड प्रोसेसिंग की बात करा, प्रसंस्करण की बात करा पर्टिकुलरली फलान सब्जियां की, तो भी मैं आप गर्म कर कुछ हल्का गर्म कर भी उसमें आप जो फल एवं सब्जियां की सतह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीव पाया जाए जो फलान खराब करे भी उसमें बचा सका। डिब्बाबंदी जिन्हें आप कैनिंग कहवा, डिब्बाबंदी में आप कहें करा कि जो सब्जियां की डिब्बाबंदी करा तो वह आप ब्राइन सोल्यूशन में नमक का 2% घोल में करा और जो फला की डिब्बाबंदी करा कैनिंग करा बी के मायने आप जो शुगर सिरप चीनी को जो चास नहीं हुए बी के मायने किया करा जूस और जूस निकाल भी आप प्रोसेसिंग कर सका। और जूस ना आजकल तो फलां को जूस निकाल जूस ने ऐसा सच आप फ्रीज में रख डीप फ्रीज कर सका, दूसरों जूस ना आप कंसनट्रेट कर सका बी को पानी ने इवेपोरेट कर गर्म कर वाष्प के बना उड़ा और भी ना आप गाढ़ो कर सका जिनमें पानी मिला बाद में पिला सका। इसके अलावा भी पाउडर फॉर्म में जूस ने पाउडर का रूप में बना सका है जिसमें भी को वॉल्यूम आयतन कम हो जाए बिना आप मार्केट में बेचवा आसान नहीं रहे जी हाँ, आपने एक गिलास बनाना तो आपने 5 ग्राम ही पाउडर बहुत छे
6: जी,
8: तो यहाँ पाउडर फॉर्म में भी जूस ना आप बना सका बिना पानी ने उडार। इसके अलावा फर्मेंटेशन आप देखो ला अचार बनाओ कैरी

0: अचार बनावा है, गोंदा को अचार बनावा आप, लसोड़ा को अचार बनावा, ये
1: जी
0: सब अचार फर्मेंटेशन द्वारा बनाए जाए, और फर्मेंटेशन के बाद में बिना आप तेल से प्रिजर्व करा। इसके अलावा जमना है फ्रीजिंग, जी हाँ, पल्प, आम को पल्प निकाल लिया बिना आप फ्रीज लो टेम्परेचर पर फ्रीज कर दिया तो वो जम जाए, और फिर जब यहीं कस्टर्ड एप्पल सीताफल को आप पल्प ने निकाल फ्रीजिंग टेम्परेचर पर फ्रीज कर लिया तो वो बिल्कुल ठोस बन जाए, और जी यहीं अपन खानों से बिने तो बिना बाहर निकाल कमरा का टेम्परेचर पर रख दो तो वो मेल्ट हो जाए लो, और फिर आप बिने खा सका। इसके अलावा संशोधित वातावरण पैकेजिंग, आजकल यह भी खूब चाल रही हो कि फलाने सब्जियां ने जो एनवायरनमेंट चाहे जे मॉडिफाइड एटमोस्फियर पैकेजिंग को भी सिस्टम चाल गो,
1: जी
0: बी के मायने जी हाँ ऑक्सीजन की आप कम कर दिया कंसनट्रेशन CO2 ज़्यादा तो वही के मायने बी की जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो श्वसन क्रिया जब कम हो जाए ली और खराब होमा में टाइम लाग लो। पास्टुराइजेशन, पास्टुराइजेशन में आप कहें करा कि टेम्परेचर दे स्टीम दे और बी को जो माइक्रोब्स पाए जाए बी की सतह पर फल एवं सब्जियाँ पर बान आप खत्म कर दिया जिसमें बी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इसके अलावा भी कुछ और नई नई तकनीक ऐसे हैं जाके द्वारा किसान भाई फल एवं सब्जियां ने प्रोसेस कर और संरक्षित कर सके।
1: शर्मा साहब, आपा किसाना का आय बढ़ावा के लिए फल और सब्जियां का प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं और आप बहुत ही विस्तार से बता भी रहे हो। प्रोसेसिंग को भी आप तरीको बताया कि की तरह से प्रोसेसिंग करी जावे छे। अब आपसे यह जानबो चावला कि प्रसंस्करण का जो मोटा मोटा फायदा छे, या आपा यह सोच लेवा की उद्देश्य ने ले प्रसंस्करण करो जावे छे और मुख्य रूप से इनका फायदा काश्तकार भाइयों ने की तरीका से मिले छे, चाहे किसान छोटो होवे या फिर बड़ो।
0: देखो किसान भाइयों, फला सब्जियां का प्रसंस्करण सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपनों जो उत्पादन आप करें वो
1: जी
0: पूरों को पूरा उत्पादन आप सेफ रहे और आपने विश्व ज़्यादा पैसा मिले आप बाजार में बेच दिया, पहली बात तो यह होगी। दूसरी बात, जब बाजार में आपने भाव कम रहे हैं, जैसे टमाटर खूब पैदा होगा तो भाव कई बार देखा कि अपन तोड़वा को भाव कौन मिले, तो भी टमाटर ने आपा प्रोसेसिंग कर भी को चाहे पल्प बना रख लिया है फ्रीजिंग कर जिन्हें आपा फिर जब टमाटर 50 रुपये किलो 100 रुपये किलो होगा तो बेच दिया, यहीं भी को सॉस बना सका आप टमाटर को केचप बना सका, ये भी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जी, उत्पाद का आपा वैल्यू मतलब भी की प्राइस वैल्यू बढ़ा दिया
1: कीमत बढ़ा
0: तो
1: दी।
0: कीमत बढ़ा दिया, इस तरह से आपा बाने संरक्षण कर सका। तीसरी बात जो आवे, आप उत्पादन जो भी हो तो वो आपने अगर बिना आप सड़वा गलवा से बचा लिया तो आप लोग वातावरण भी को मतलब शुद्ध रह लो, और चौथी बात है जो आपा मतलब अच्छी क्वालिटी संरक्षण कर कंज्यूमर ने बेचाना तो कंज्यूमर का स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे है और कंज्यूमर की भी की एक्सेप्टेबिलिटी मतलब इन्हें खरीदवा की इच्छा जो रहे वह भी ज़्यादा रह ली, और जो सबसे बड़ी किसान भाई ने फायदा हो लो वो हो लो ई के माया ने आपने किसान भाई ने इनकम जो है, क्योंकि आज को टाइम छे आर्थिक युग छे बिना
1: बिल्कुल
0: पैसा काम चालक हो तो किसान भाई ने आमदनी भी ज़्यादा हो ली करीब करीब डबल हो जाए ली, तो
1: जी,
0: ऐसा सब चीज़ा देख रही आप प्रोसेसिंग को काम करा और किसान भाई की आमदनी बढ़ावा के बारे में सोचा।
1: शर्मा साहब, अगर आप बात कर रहे थे शुरुआत में तो आप एक शब्द को उपयोग कर रहे थे कि कैनिंग। तो कैनिंग की जब बात करा चा या डिब्बाबंदी जी ना आप समझ सका चा सरल शब्द में, उनका बारे में या बताओ सा कि जो काश्तकार भाया छे, चाहे वो छोटो किसान होवे बड़ो किसान होवे, वो की तरीके से इन्हें कर सके छे, काई की विधि छे, कितो पीसो लागे छे, कितो समय लागे छे, विस्तार से समझाओ सा।
0: देखो किसान भाइयों, जो कैनिंग छे डिब्बाबंदी छे, अब जी आप बात करें सब्जियां में कैनिंग की तो सब्जियां में कैनिंग जनरली मटर में हुआ करे, मटर का पहले आप भी का छिलका ने छिला ला और फिर दाना ने निकाल ला बाने, और बाद दाना ने निकाल अपना भी ने अच्छी तरह से धो लिया ला, ग्रेडिंग कर लिया ला, साफ सफाई कर लिया ला, और फिर उनके बाद में बाने थोड़ा हीटिंग थोड़ा वो
1: गुनगुना
0: देना
1: पानी में
0: पास्टराइज कर ला गुनगुना पानी में, और उनके बाद में आपा माने डिब्बा बंदी करा ब्राइन सॉल्यूशन में, ब्राइन सॉल्यूशन में नमक को घोल 2% नमक का घोल के मायने बान आपा डिब्बा बंदी कर और फिर अच्छी तरह पैकिंग कर दिया, और पैकिंग कर और फिर बाने आपा अच्छी तरह जीवाणु रहित कर और अच्छी तरह मतलब कोल्ड स्टोरेज में रख दिया वहाँ, और जब ज़रूरत हो मार्केट में जी हाँ मटर को सीजन चले गए सर्दियों के बाद में तो गर्मियों के मायने आपा भी ने मार्केट में निकाला और अच्छी रेट पर किसान भाई माने बेच सके। यही बात करा फलां की कैनिंग की, अगर जी हाँ आम की कैनिंग करा आप तो आम में क्या करा कि आम का छिलका ने पहले धोधार अच्छी तरह अच्छी क्वालिटी का आम आप सेलेक्ट करा, और फिर वह आम जो सेलेक्ट कर लिया माने छील और फिर बाकी जो पल्प छे बिने टुकड़ा में काट और अच्छी तरह मतलब उन थोड़ा सो हल्को सो भाप दे और फिर आपा उन्हें चीनी का घोल के अंदर और डिब्बा के अंदर डाल और अच्छी तरह बंद कर कैनिंग और पास्चराइज कर और फिर कोल्ड स्टोरेज में रखा। और जब आम को खावा को सीजन फ्रेश आम खावा को सीजन चलो जाए सर्दियाँ में ऊँ टाइम आपा उन्हें खावा के काम में ले सका।
1: यानी खेबा को मतलब यही चे काश्त कर बया कि साल भर सब्जियां और फलों की उपलब्धता के लिए और ऑफ सीजन में जी टाइम उत्पादन कोनो हुए ऊ टाइम अच्छी आमदनी लेबा के लिए ये दोनों ही तरीका बहुत बढ़िया छे कि आप प्रसंस्करण कर और कैनिंग कर भी फल और सब्जियां ने रख सको छो और आपकी आमदनी बढ़ा सको छो। अब यार आप निर्जलीकरण की भी बात करया चा तो आपसे विस्तार से जानबो चावेला काश्तकार भाई ने बताओ सा कि निर्जलीकरण से काई मतलब छे और इका काई फायदा छे और काई तरीका से करी जावे।
0: जी हां, बथुआ हो छो पालर हो छो आज हमने धूप में सुखा दिया करे चा और फिर धूप में सुखार जब ये को सीजन कौन रहे पालक को बथुआ को तो भी की सब्जी बनाया करे चा। पर आजकल वो धूप में सुखापा में जो सबसे बड़ी दिक्कत छे भी के मायन का है कि भी को कलर फेड हो जाए छे। अगर डायरेक्ट सनलाइट में सूर्य की धूप में ये हरी पत्तीदार सब्जियां सुखावला तो आप देखे वाला किसान भाई की सब्जियां को जो रंग छे वो हरे हो छे। और अगर भी ने डायरेक्ट आपा सूर्य की धूप में सुखा देना तो वो रंग उड़ जाए छे और हल्को पड़ जाए जो देखभा में अच्छो कौन लागे। आजकल जो छे सोलर ड्रायर आ रहा जो सूर्य की उष्मा में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आजकल तो लाइट भी जला रहे अपना सोलर से तो सोलर ड्रायर आवे बाग मायने आपा यानी सुखा सका हरी पत्तीदार सब्जियां ने और बाने सुखा और फिर जब बाको ऑफ सीजन है या महंगी छे उन टाइम बाने आपा उपयोग में ले सका। जी करेलो छे, करेलो अभी आप लोग खूब पैदा हो रहे हो, अब ई टाइम ये करेला ने आपा थोड़ा अच्छी तरह साफ सुथरो कर छील और नमक का घोल में थोड़ा धो और फिर भी ना आपा अगर सोलर ड्रायर में सुखा लिया तो बिने ऑफ सीजन में आवा बेच अच्छा मुनाफो कमा सकते। यही आपने हरी पत्तीदार सब्जियां में चाहे वो भथु हो चाहे चौलाई हो आपने चाहे पालक हो आज समय भी आपा सोलर ड्रायर में सुखा और ऑफ सीजन में या जब भी बाकी रेट बाजार में ताज़ा पत्तीदार सब्जियां रेट ज़्यादा हो तो आपा बाने बेच अच्छो मुनाफो कमा सका। केवल सीधो सीधो एक ही सिस्टम से कि जो भी खावा की चीज़ है बी में जो पानी रह जाए जहाँ पत्तीदार सब्जियां या जो भी सब्जियां जब हमें 80 से ले 90 से 95% तक पानी रहे पत्तीदार सब्जियां में करा तो 90 से 95% तक पानी रहे तो भी पानी ने उड़ावो बस और जो भी मान ठोस पदार्थ है वो ही आपने बचे रह लो पानी बिल्कुल उड़ा देला जिसों की वो संरक्षित रह सके लंबा टाइम।
1: यानी मॉइस्चर और नमी जो भी उन्हें खत्म करनी
0: इसके अलावा जो भी जिया फल का बात करा फल के जिया छिलको उतरियो अब जिया नींबू में बात करा नींबू को छिलको उतरियो तो वो छिलका का पीसा है जिया किसान भाई कहते हैं भाई आम का आम गुठली का दाम तो भाई यही बात करूंगा जी आम को पल्प भी आपने निकाल लिया आम की गुठली से स्टार्च निकाल लिया और वो स्टार्च जो वो आपने बहुत इंडस्ट्रीज में काम आया आजकल तो यही नींबू का मान है नींबू की जो इवन छिलको है बीसों भी बीम तेल निकले बीम सुगंध निकले बीम रंग भी निकले नेचुरल तो ऐसे सब चीज़ों से और मुनाफा हो जाए। जूस का तो पीसो मिल ही मिल गो और उनके अलावा जो भी का बाय प्रोडक्ट था जो पहले किसान भाई यहीं फेंक दे था तो बीसों भी आपने आमदनी मिल रही है आजकल तो न तो आप लोग एनवायरमेंट खराब है बीसों वातावरण खराब हो पॉल्यूशन कौन हो और पीसा भी मिले डबल मुनाफा हो किसानों ने तो ये सब चीज़ें कर रहा पा आजकल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमा सका। जी हाँ, नींबू का बीज का मौसमी को बीज बी के माने तेल पाए जाए थे तो बी को भी तेल निकाल और आजकल मार्केट में बेचो जाए और वो नेचुरल तेल तो बहुत ही महंगा हो जाकर बी जो सुगंध हो जाए बहुत अच्छी हो जाए क्योंकि आजकल सिंथेटिक ज़्यादातर सुगंध रही है मार्केट में आ रही है नेचुरल तो बहुत महंगी बिके तो इस हिसाब से अगर किसान भाई काम कर ला तो बहुत ज्यादा आमदनी वह कमा सके।
1: यानी कहबा को मतलब यही है कि थोड़ी सी आपने तकनीक जाननी चाहिए थोड़ी सी आपने जानकारी रखनी चाहिए पर हर एक चीज की वैल्यू चाहिए हर एक चीज की कीमत चाहिए। कोई भी चीज बेकार को ना चाहे बीज हो छिलको हो अंदर को पल्प हो या कोई भी चीज हो वैसा बहुत ही बढ़िया तरीका से आप जानकारी दे रहे थे। श्रोताओं महेश के शर्मा डीन कृषि महाविद्यालय कोटपुतली अपनी साथ है और आज आपने बता रहे थे किसानों की आमदनी बढ़ावा के लिए फल और सब्जियां का प्रसंस्करण का बारे में। शर्मा साहब एक और जो तकनीक छे उनको नाम काफी सुनबा में आवे छे स्पंदित विद्युत प्रौद्योगिकी तो यो काई छे काई तरीको छे ई तकनीक का बारे में भी माका जो काश्तकार भाई छे वाने विस्तार से बताओ ताकि वे जाने इन्हें काम में लेवे और आपकी जी की आमदनी छे उन्हें बढ़ा पावे।
0: स्पंदित विद्युत क्षेत्र प्रौद्योगिकी के बारे में किसान भाई एक नई तकनीक छे ई में काई करा कि पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड होया करे टेक्नोलॉजी एक छे जिसमें हल्की फूड प्रिजर्वेशन तकनीक है और लिक्विड प्रोडक्ट जहाँ जूस हो चे हैं दूध हो चे या जो फला की प्यूरी जो पल्प हो चे बीमें नुकसानदायक बैक्टीरिया ने खत्म करवाटे एक छोटी सी बिजली की पल्स मतलब बिजली को भी करंट दियो जाए, पल्स दियो जाए, भी को इस्तेमाल हो जाए और उनकी सेल्फ लाइफ ने बढ़ा दे जाए, क्योंकि वो जो खराब कर वाला जो बैक्टीरिया या फंगस भी छा वह खत्म हो जाए इस बीच में। साथ ही उनमें ताज़ापन में कम से कम असर डाले जाए और जो या स्पंदित विद्युत क्षेत्र प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी छे को इस्तेमाल और टेस्ट अलग अलग मकसद से किया जाए, जी जूस ने प्रिजर्व करवा हटे या फलान को पानी निकाल बा की बेहतर बनावा हटे सुखावा से पहली ट्रीटमेंट के तौर पर भी इन्हें यूज किया जाए, या बहुत अच्छी तकनीक छे, नई तकनीक।
1: शर्मा साहब आप बात कर रहे हैं बार फल और सब्जियां का बारे में, जो काश्तकार भाई फलों का बगीचा लगावे छे और वहां से आमदनी पावे छे, वहां के लिए आपसे पूछबो चाहूंगी कि जो अमरूद का प्रसंस्कृत उत्पाद छे वे कशा कशा छे और की तरीका से वहां से और अच्छी वैल्यू यानी कीमत ली जा सके छे।
0: देव किसान भाइयों, अमरूद ने जी पहले तो आप खावा चाहो ताजा फल नहीं खाया जा है, सीधो अमरूद ने खाया जा,
1: बिल्कुल।
0: पर आजकल अमरूद बहुत पैदा हो रहे थे और देश दुनिया के दूसरी जगह भी आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो अमरूद ने ताजा तो खा ही सके टेबल पर्पज के रूप में, तो खूब पैदा हो रही है तो आपने भी को प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन भी करना चाहिए। तो अमरूद का गुदा ना आप फ्रीजिंग लो टेम्परेचर पर फ्रीज कर रख सका और जब ऑफ सीजन हो तो बिना आप जो रूम टेम्परेचर भी निकाल रहे आप रख दें तो वो खावा लायक बन जाए। दूसरा आजकल आप देख रहे हो जूस भी पी रहा जो है अमरूद को, बहुत अच्छा लगे टेस्ट में, शादी ब्याह में लोग आजकल दे रहे चाहिए, तो अमरूद को आप मशीनों से जूस निकाल और बिना कंडेंस कर लें थोड़ो पानी नोड़ा दिया और कंडेंस कर और फिर बिना लो टेम्परेचर पर कैंड डिब्बा में बंद कर और रख कर लो टेम्परेचर पर रखा जिससे वो खराब कौन हो और जब जरूरत हो तो बिना आप मार्केट में बेच और अच्छा पैसा कमा सका। इसके अलावा आप आजकल देखो कि भी को लेदर गुआवा लेदर भी बन रहा है, गुआवा लेदर का हो जाए कि भी के माने गुआवा को जो पल्प छे बिने थोड़ा मॉइस्चर ने सुखा और प्रिजर्व कर लिया करे और फिर जब भी जरूरत हो उन्हें आप अमरूद का पल्प की या मतलब ठोस भी को आप खा सकें या बर्फी हो जाए भैया खा सका। तो ये कई अमरूद का प्रोडक्ट आजकल मार्केट में आ रहा है, आप माने बना सकें अमरूद।
1: अब जो नींबू और नींबू वर्गीय फल हो वाने की तरह से प्रसंस्कृत करे और कई कई उत्पाद नया बन प्रसंस्करण के बाद बाजार में आ रहे थे जाकि वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है और काश्तकार भाई ने जागरूकता रखनी चाहिए, नई तकनीक ने अपनानी चाहिए और यहाँ सब्जियां ने और फला ने प्रसंस्कृत करनी चाहिए।
0: नींबू, नींबू तो देखो किसान भाइयों आजकल आप देखो 200 रुपये किलो तक भी बिके, आजकल सस्ते हो गए मना गर्मी के टाइम तो 200 रुपये किलो तक,
1: बिल्कुल।
0: तो नींबू तो प्रसंस्कृत करवा को सबसे इम्पोर्टेंट फल है। अभी मैं नींबू का मायने कहें करा नींबू का रस ना आप प्रसंस्कृत कर सका और इको ड्रिंक्स बना सका, जूस बना सका नींबू का, लेमन जेस्ट नींबू को बाहरी छिलका में एसेंशियल ऑयल हो तो बीसू आप तेज खुशबूदार स्वाद दे वालों तेल निकाल सका, दूसरों जूस को पाउडर बना सका नींबू का जूस को भी अगेन पूरा पानी ना आप मछना ऑपरेट कर जाला सुखा दियाला और फिर भी ने आप पाउडर का फॉर्म में बना लेला और जब भी आप जरूरत हो तो पाउडर में पानी मिलाया और आप पी सका है। जो आपने तेल दे रहे आपने सुगंध दे रहे आपने कलर दे रहे नेचुरल, तो ये किसान भाई आटे नींबू तो एक वरदान से प्रकृति को और यो बहुत ही अच्छी आमदनी को साधन से किसान भाई की खेती कर और साथ ही साथ किसान भाइयों ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि आजकल जो सरकार है आपने चाहे वो केंद्र सरकार से चाहे राज्य सरकार वो ये सब का अगर FPO बना लेना आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लेना या खुद फार्मर भी इंडिविजुअल फार्मर भी कर सके तो माने ये जो प्रसंस्करण उद्योग लगा हुआ है फल एवं सब्जियां का सरकार एक सहायता भी दे रही, सरकारी सहायता मिल रही है तो सरकार भी अच्छा हो कि हमारा किसान भाइयों की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े,
1: बिल्कुल,
0: और बाने ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करा और बाकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सेफ रहे, जो कितनी मेहनत से दिन रात मेहनत से पैदा करें और कंज्यूमर ने भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिले खावा।
1: शर्मा साहब बहुत ही विस्तार से हर एक चीज ने आप काश्तकार भाई ने बता रहे छो, अब जब अपनी बातचीत समाप्ति की ओर है तो एक और सवाल मन में आ रहे हैं वो आपसे जानबो चाहवेला कि फल और सब्जियां का प्रसंस्करण का बारे में आप इतनी देर से बात कर ही रहे छा, काफी सारा फायदा तरीका आप बताया भी, अब कहीं कोई नुकसान भी चाहिए या कहीं सावचेती बरतनी चाहिए या भी बताओ।
0: देव किसान भाई हर चीज आप कहीं भी काम करा लाभ भी हो चाहे तो भी का नुकसान भी हो जाए,
1: बिल्कुल
0: जी। आप खाणो ही खाणो अगर आप जितनी भूख चाहे उतना खावाला तो वो फायदो छे,
1: बिल्कुल,
0: और ज्यादा खा लेना जी अभी ब्याह शादी में गया अगर मिठाई विठाई थोड़ी ज्यादा खा लेना तो वो नुकसान भी कर जाए। तो यही आपने फल एवं सब्जियां को प्रसंस्करण भी दोनों छे इनमें भी लाभ तो बहुत ज्यादा छे ही छे पर कुछ हानि भी छे। लाभ तो आप बात कर ही चुके किसान ने इनकम अच्छी मिल ली है, पॉल्यूशन एटमोसफियर को कौन लो भी को जितना उत्पादन है वो पूरा कंज्यूमर ने मिल लो अच्छी क्वालिटी मिल ली कंज्यूमर ने ये सब खावा ने सब तो फायदा है, आमदनी भी किसान भाइया ने खूब मिल ली पर कुछ नुकसान भी है। जी आप बात करें कि कैनिंग सब्जियां की कैनिंग आप करा ब्राइन सॉल्यूशन में नमक का घोल में 2% का में, तो बी का मान कहा कि सोडियम नमक मतलब ज़्यादा रहते, सोडियम ज़्यादा रहते तो वो आपने नमक थोड़ा खावा ज़्यादा चल जाए और वो आपने स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हुआ। मतलब ये नुकसान इतना ज़्यादा कौन है, जितने नुकसान आपने किसान भाइयों ने बी की मेहनत को रिटर्न नहीं मिले, कंज्यूमर अच्छी क्वालिटी नहीं मिले और वातावरण ने भी दूषित करे अगर फल सब्जी सड़ जाए तो नुकसान तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। बिना आप थोड़ी सावधानी रखकर जी हाँ अपना कैनिंग सू टुकड़ा फल का जब निकाल खाया तो बिना आप थोड़ा धोलियाँ साफ कर लिया जिसको कि वो जो चीनी की चास जब हट जाए यही सब्जियाँ ने जो नमक का सिरप में आप डिब्बाबंदी करा तो जब भी यूज लिया तो बिना थोड़ा अच्छी तरह धो लिया जिसको कि जो ज़्यादा नमक है वो निकल जाए। तो थोड़ी बहुत सावधानी रखकर आप जो फल एवं सब्जियाँ प्रसंग बड़ा नुकसान आसू बच सका आराम सू।
1: काश्तकार भाया किसाना की आय बढ़ावा के लिए फल और सब्जियां का प्रसंस्करण इके बारे में बहुत ही बढ़िया विस्तार सू बताया महेश के शर्मा आबडीन कृषि महाविद्यालय कोटपुतली। आज अपना स्टूडियो में आया और आपने जानकारी दिया इतना ही आपको खूब खूब धन्यवाद सा।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हा? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गो से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: जी
5: हाँ सर बहन कार्यक्रम का मैंने अब अपन थोड़ा सा संगीत की तरफ चला और राजस्थान की मिट्टी सी की एक लोक रचना है जो कि भाई लोगों तक पूर्ति करवा।
1: बिल्कुल सर।

0: प्रभु भाई थोड़ो सो गीत आज आप कम सुना पाया चा उनके लिए माफी चाहवा चा।
1: बिल्कुल माफी चाहवा, लेकिन देखो एक मायने मौसम की बात हो रही है, बिजली चमकवा की बात हो रही है, तो मौसम की क्यों ना थोड़ी सी बात कर जाए। तो देखो आज आप जयपुर का अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री लेर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रेबा को है, और न्यूनतम की अगर आप बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और आसमान का मजा बादला है, वे छाया रहे, सिर्फ खटे खटे हल्की सी बारिश है और बिजली चमक की पूरी पूरी संभावना है।
0: और अब स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि आज को जी को कार्यक्रम छे किसान वाणी उनको टाइम पूरा होते जा रहे, तो श्रोतावा दिराओ आगे आशा ने
1: और प्रभु दयाल ने
0: चालार करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी।
1: खेती बाड़ी

0: परसो आसो जा मैं रुक गो अरे सावन बरस बाद गो परसो आसो जा मैं रुक गो
1: अरे मूंग मोट उड़दारे माल मोरनी नाचे अरे मूंग मोट उड़दारे माल मोरनी नाचे
0: इंदे इंदे इंदे

0: नानो। अरे नानी पानत करे रे हीरे चलत जेल रे हो नानो।
1: अरे राबड़ी कावे को भाया सोच ने आजे।
0: हाँ
1: राबड़ी कावे को भाया सोच ने आजे।
0: इंदे इंदे।

0: अरे लड़बा ने आवे तारो बन लिया जे, अरे लड़बा ने आवे तारो बन लिया जे, के इंडे के इंडे इंडे यारा का अलगो जामो जी सुंगरी बाजे, इंडे यारा का अलगो जामो जी सुंगरी बाजे।
1: आशा वर्ण देखो बहुत ही मीठी सी लोक रचना है जी, रेडियो सेट के माध्यम से भाई लोगों तक पहुंचती हुई।
2: बिल्कुल सा, और अब जानकारी की भी थोड़ी सी बात हो जावे।
1: बिल्कुल जानकारी की जी आप बात कर रहे हैं, आप पहले जी कार्यक्रम की शुरुआत में भाई गए पशुओं को जो टीकाकरण है वो बरसात का दिनांक मायने होना चाहिए, तो बरसात के ऋतु के मायने पशुओं को टीकाकरण करवाना क्यों जरूरी है, ये विषय पर अपन जानकारी डॉक्टर श्री राम करीर जी दे रहे हैं और आंसू बात अपने मधुबेन कर रहे हैं, तो क्यों ने पहली बातचीत सुना दिया मेरे पश्चात में बता चीता और कर।
2: बिल्कुल सा
3: श्रोतावा, कार्यक्रम में आपने सागे है डॉक्टर श्री राम करीर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर PGIVER जयपुर में आप पदस्थापित हो, और जी महत्वपूर्ण विषय माथे आज मैं आपसे जानकारी लेशा, वो विषय है वर्षा ऋतु में पशुओं का टीकाकरण। तो डॉक्टर साहब स्टूडियो में आपको खूब खूब स्वागत, राम राम सा।
4: राम राम सा।
3: जैकि डॉक्टर साहब अपना विषय है कि वर्षा ऋतु में पशुओं का टीकाकरण, तो सर सबसे पहले तो आप आई बात बताओ कि वर्षा ऋतु में टीकाकरण क्यों जरूरी है।
4: हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और राम राम। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हर पशु और किसान भाइयों के लिए अत्यंत जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे पशु हमारे सहायक और हमारी आजीविका का आधार है। इनका जो स्वास्थ्य है वो न केवल हमारे परिवार के लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो अपन अब देखते हैं कि पशुओं में वर्षा ऋतु में टीकाकरण जरूरी क्यों है। तो देखिए इसके लिए जब वर्षा ऋतु आती है तो वो अपने साथ कई प्रकार की चुनौतियाँ लेकर आती है। इस मौसम में नमी अधिक रहती है एक तो, दूसरा चारों ओर कीचड़ और गंदगी फैल जाती है, कई प्रकार के कीटाणु बैक्टीरिया वायरस सक्रिय हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि पशुओं में रोगों का खतरा बढ़ जाता है, और हम सभी जानते हैं जो रोगों से बचाव है वो उपचार से बहुत ही बेहतर होता है। तो टीकाकरण भी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं, वो पशुओं में क्या है कि रोग होने से बचाव करते हैं। एक बात और कि कुछ जो रोग है जो पशु रोग है वो जूनोटिक टाइप के होते हैं, यानी कि वो पशुओं से इंसानों में भी फैल सकते हैं, और वर्षा ऋतु के दौरान ये संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि ब्रूसोलिसिस हो गया, रेबीज हो गया। तो टीकाकरण क्या है कि ऐसे जो रोग है उनको नियंत्रित करके जन स्वास्थ्य को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु में टीकाकरण न केवल पशुओं को बीमारियों से बचाता है बल्कि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाकर उनकी आजीविका भी सुरक्षित करता है।
3: वाचा डॉक्टर साहब, बहुत ही सहज और सरल शब्दा में आप बताया कि टीकाकरण वर्षा ऋतु को मायने क्यों जरूरी है। देखो विया तो सा टीकाकरण जो है हर अवस्था में और हर समय जरूरी हुआ करे है। जी आपा अपना टाबरा को बालपना से ही टीका को ध्यान रखा हाँ
4: जी,
3: ताकि आबाला समय में आपनो टाबर बीमारियां सु बचुरे हुए। वे ही अपना पशु है, वे भी अपना टाबरा की जियान है, अपना परिवार का सदस्य है, तो आरंभ से ही बाका टीका को आपा ध्यान रखा हाँ। पर वर्षा काल का मायने या वर्षा ऋतु में ही क्यों खासकर जरूरी है, तो यो आप बताया कि भाई वर्षा ऋतु का मायने संक्रमण और बहुत सारी बीमारियों को खतरों ज्यादा बढ़ जावे है। तो या तो आप बहुत चौकी बात बताया, अब वे कौन कौन सा टीका है जो आपने अपना पशुओं के लगवाना चाहिए।
4: जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए जो गाय भैंस हैं उनमें सामान्यतया 6 बीमारियों के बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं
3: जी।
4: अब देखो पहला जो टीका है वो गलगोटू रोग के लिए लगाया जाता है, और उसका जो टीका होता है उसका नाम HS वैक्सीन के नाम से आता है। ये साल में एक बार लगता है और ये मानसून शुरू होने के पहले लगता है, जैसे मई जून के महीने में लगता है। दूसरा टीका जो है वो लंगड़ी बुखार का लगता है, इसके टीके का नाम BQ वैक्सीन होता है, और ये भी साल में एक बार ही लगता है और मानसून से जस्ट पहले लगता है। तीसरी बीमारी जो है वो है खुरपका या मुंह पका, इसका जो टीका आता है उसका नाम FMD वैक्सीन होता है, और ये साल में दो बार लगता है, एक बार तो मानसून से जस्ट पहले लगेगा और एक बार दिसंबर या जनवरी माह के बीच में लगेगा। चौथा रोग है गिल्टी रोग, इसको एंथ्रेक्स भी बोलते हैं, और इसका जो टीका आता है उस टीके का नाम होता है एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, ये साल में एक बार लगता है और मानसून से पहले लगता है। पांचवी बीमारी है ब्रुसेलोसिस, ये जो ब्रुसेलोसिस बीमारी है वो कॉमन होती है या सामान्य होती है जानवरों में, तो इसके लिए जो टीका होता है वो जीवन में केवल एक बार लगवाना होता है, उसके बाद उसको दोबारा लगवाने की जरूरत नहीं होती, और ये किसी भी समय अपन लगवा सकते हैं
3: जी।
4: और छठवां जो रोग है वो अभी जो कॉमन हुआ था पहले, लंपी स्किन रोग। ये भी रोग, ये जो टीका है इसका साल में एक बार ही लगता है, और या तो ये मानसून से जस्ट पहले लगता है या फिर जब रोग का प्रकोप ज़्यादा हो तब लगता है। ऐसे ही भेड़ बकरी के लिए मुख्यतः चार बीमारियों के लिए टीके लगाए जाते हैं। पहला पहला भी रोग है फड़किया रोग, जिसको ईटी भी बोलते हैं। ये साल में दो बार लगता है ये टीका, एक तो जून के महीने में लगेगा और एक दिसंबर के महीने में लगता है। दूसरी बीमारी है बकरी प्लेग, जिसको PPR भी बोलते हैं। ये क्या है कि जीवन में एक बार लगता है इसका टीका और किसी भी समय इसको अपन लगवा सकते हैं। तीसरी बीमारी है खुरपका और मुंहपका रोग, ये साल में एक बार लगता है इसका टीका और ये अभी मानसून से कुछ टाइम पहले या कुछ 15 दिन पहले लगता है, मई जून के महीने में। जो गलघोंटू बीमारी है चौथी बीमारी, वो साल में एक बार ही लगती है और मानसून के एक माह के बाद में लगती है, यानी मानसून स्टार्ट होने के बाद में इसका टीका लगता है।
3: जी डॉक्टर साहब, यह तो आप बता दिया कि टीका कौन कौन सा अपन लगवाना चाहिए। अब टीकाकरण के दौरान वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो अपना पशुपालक भाई बहन जो आपने सुन लिया है, कौन कौन सी सावचेती रखे ताकि टीकाकरण के दौरान कोई समस्या नहीं आवे।
4: जी देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, तो मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि टीकाकरण से कम एक सप्ताह पहले पशुओं को जो पेट के कीड़े मारने की दवा है, जिसको डिवर्मिंग बोलते हैं, वो दे देनी चाहिए। टीकाकरण के दो सप्ताह बाद तक पशु को तनाव मुक्त स्थान पर रखना चाहिए और पशु जो है वो किसी भी रोगी पशु के संपर्क में आने से रोका जाना चाहिए। तीसरा है कि जो यदि कोई पशु जैसे ज़्यादा ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा वीक दुर्बल हो गया है या फिर वृद्धावस्था में है, तो उसको टीकाकरण अपने को नहीं करवाना चाहिए। और एक और बात है कि टीकाकरण के दो सप्ताह बाद तक पशु को उपचार हेतु ये जो एंटीबायोटिक औषधियाँ होती है, जैसे सल्फा औषधियाँ हो गई या कृमिनाशक हो गए या फिर जो प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करती है, ऐसी औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए, उनका प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। और एक बात और है कि दूध का जो सेवन है वो रोकने की ज़रूरत नहीं होती टीकाकरण में। टीकाकरण बस ये है कि दूध को है अच्छे से उबाल के बाद में उसका उपयोग किया जाए। और एक है कि डॉक्टर या प्रशिक्षित व्यक्ति से ही टीका हमेशा लगवाना चाहिए।
3: जी डॉक्टर साहब, या तो आप बताएं कि वर्षा ऋतु को मायने आपने टीकाकरण करवाना ही चाहिए, क्योंकि संक्रमण रोगा को खतरो वर्षा ऋतु को मायने ज़्यादा रेवे है। कौन कौन सा लगवाना चाहिए और के सावचेती रखनी चाहिए, यह भी आप बता दिया। पर ऐसी कौन सी खास बात है कि जो आपने या अपना जो पशुपालक भाई बहन है बाने ओ बेरो पड़ जाए कि टीकाकरण करवानो अनिवार्य है, कितनो जरूरी है, बासे कौन सा मोटा फायदा है, और अगर पशु ने फायदो है, पशु निरोगी रहसी तो अपना पशुपालक भाई बहन भी लाभान्वित रहसी, माने भी कोई समस्या को सामना कौन करना पड़सी, तो वे कौन सा बड़ा फायदा है टीकाकरण से, आ बताओ सा।
4: जी बिल्कुल, देखिए जो पशुओं के टीकाकरण करवाने के बहुत सारे फायदे हैं, जिनको किसान भाइयों या पशुपालक भाइयों को पता होना चाहिए, ध्यान में उनको रहना चाहिए। जैसे कि पशुओं में बहुत सारी बीमारियाँ होती है, उनसे टीकाकरण सुरक्षा प्रदान करवाता है। यदि टीकाकरण होया हुआ है तो बीमारियों के होने के चांसेज है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, ना के बराबर। दूसरा क्या है कि जो टीकाकरण है वो पशुओं की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है, और ये जो पशुओं में मृत्यु दर होती है इसको भी बहुत एक हद तक कम कर देता है। और एक कि ये रोगों को फैलने से रोकता है, यदि टीकाकरण होया हुआ है तो वहाँ यदि कोई बीमारी आ रही है तो वो फैलेगी नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो पहले से ही उनके टीके लगे हुए हैं, तो उस बीमारी का वो सामना कर पाएंगे, उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उसको सामना करके उसको परास्त कर देगा। एक जो दूध उत्पादन है वो जो कार्य क्षमता है वो यदि टीकाकरण करवाया हुआ है तो उसमें क्या होता है कि वो मेंटेन रहता है, वो बराबर बना हुआ रहता है, कम नहीं होता है। और जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कई रोगों का जो नियंत्रण करते हैं उनमें बहुत अच्छी मदद मिलती है टीकाकरण के माध्यम से। जैसे और कई जो सरकारी योजनाएं हैं, अपने राजस्थान गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं या फिर जो बीमा है, उनके लाभ लेने में बहुत मदद मिलता है, क्योंकि जो कुछ सरकारी योजनाएं हैं या जो बीमा है वो ये बोलते हैं कि आपके पशु का टीकाकरण होना अनिवार्य है, तो टीकाकरण जरूर करवा लेना चाहिए। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि टीकाकरण एक छोटा खर्च है लेकिन इसका बड़ा बहुत बड़ा लाभ है।
3: जी डॉक्टर साहब, टीकाकरण के अलावा और कौन सी बातें हैं जो कि बिरखा ऋतु का मायने अपन ध्यान में रखनी चाहिए?
4: जी बिल्कुल, देखिए वर्षा ऋतु में केवल टीकाकरण ही नहीं बल्कि बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना चाहिए किसान भाई या पशुपालक भाई को। इसमें जैसे अपन पहले बात करें, जैसे कि उसका जो आश्रय व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। आश्रय व्यवस्था अच्छी होने से क्या तात्पर्य है कि जो छत है वहाँ से पानी नहीं टपकना चाहिए। ये क्या होगा कि यदि छत से पानी टपकता रहेगा तो वो जानवर के ऊपर गिरेगा, तो जानवर उससे क्या होगा कि तनाव में चला जाएगा, इससे सारा उसका सिस्टम है या जो उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो भी कमज़ोर होगा और उसका जो दूध उत्पादन है वो भी कम हो जाएगा। एक क्या है कि जो फर्श है वो ऊंचा और ढलानदार होना चाहिए ताकि जो पानी और मलमूत्र है वो वहाँ एक जगह इकट्ठा ना हो, सारा का सारा बाहर निकल जाए। और जो पशुशाला है वो हवादार होनी चाहिए, यानी वहाँ पे जो वेंटिलेशन है, हवा का आदान प्रदान है, वो बराबर होना चाहिए ताकि पशु बाहर की ताज़ी हवा ले सके। एक है वहाँ पे कीचड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ये कुछ बातें थी जो आश्रय व्यवस्था में अपने को ध्यान रखनी थी। अब अपन बात कर रहे हैं उसकी स्वस्थता और संक्रमण में कि क्या होना चाहिए कि स्वस्थता और संक्रमण का अच्छे से नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए पशुशाला की क्या है कि रोजाना सफाई होनी चाहिए, मच्छर मक्खियों के नियंत्रण के लिए चूना या कीटनाशकों की उचित मात्रा में छिड़काव कर देना चाहिए अपने को। पानी के नाले की नियमित रूप से अपने को सफाई कर देनी चाहिए और जो चारा और पानी है उसकी भी अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, यानी गीला सड़ा गला चारा उसका उपयोग अपने को पशुओं के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मौसम के अनुसार संतुलित आहार भी उसको देना चाहिए। साफ और ताज़ा पानी पशु को हमेशा पिलाना चाहिए। और एक और बात अपन ध्यान रखना चाहिए कि जो परजीवी है उनका नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि जो अंदरूनी कीड़े हैं उनकी दवा जो वर्षा ऋतु के शुरुआत में ही दे देनी चाहिए, जिसको अपन डीवर्मिंग बोलते हैं। एक है कि बाहरी परजीवी जैसे कि चीचड़ी टिक आदि को मारने के लिए जो दवा है उसका छिड़काव करना चाहिए पशु चिकित्सक की परामर्श के अनुसार।
3: जी डॉक्टर साहब, बात करा आपा डीवर्मिंग की, तो यो डीवर्मिंग काई है और जो अपना पशु है बाने देनो चाहिए कि नहीं देनो चाहिए?
4: जी देखिए, बिल्कुल ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि डीवर्मिंग क्या है, ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई या पशुपालक भाई इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए डीवर्मिंग है क्या, पहले तो ये देखो, इसको बोलते हैं पेट के कीड़ों की दवा। यानी जो डीवर्मिंग है उसका तात्पर्य है कि जो पशुओं के पेट और उसके आंतों में रहने वाले जो परजीवी है जैसे कि गोलकर्मी हो गए, फीताकर्मी हो गए, फ्लूक हो गए आदि को मार के शरीर से बाहर निकालना, ताकि जो भी पोषण पशु ले रहा है उसका पूर्णतः उपयोग पशु खुद ही कर पाए। अन्यथा क्या होगा कि ये जो अंदरूनी कीड़े हैं वो पोषण के एक हिस्से का खुद उपयोग कर लेंगे, पशु पूर्णतया खुद के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा उनको। और जब पूर्णतया पशु जो खाना पानी ले रहा है उसका खुद उपयोग नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसके दूध और मांस उत्पादन में भी वृद्धि नहीं हो पाएगी। और क्या होगा, पशु के खून की कमी होने लग जाएगी, पशु का प्रतिरक्षा तंत्र जो है या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी और उसके दस्त लगने लग जाएंगे बार बार। कुल मिला के क्या है कि धीरे धीरे पशु का स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाएगा और पशु अस्वस्थ होने लग जाएगा। इससे सीधा आर्थिक नुकसान होगा किसान भाई को, क्योंकि जब दूध उत्पादन कम हो जाएगा तो वो सीधा का सीधा आर्थिक नुकसान पे जाता है। तो अपन क्या है कि अब ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक पशु है उसको हर 6 महीने में एक बार पेट के कीड़े की दवाई जरूर देनी चाहिए, और जो बछड़े छोटे बछड़े बछड़ियाँ हैं उनको प्रत्येक 3 माह में एक बार देनी चाहिए। और इसकी डोज कितनी देनी चाहिए खुद के हिसाब से नहीं, ये पशु चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही देना चाहिए, क्योंकि ये जो डीवर्मिंग की दवाई है कि बॉडी जो कितना वजन है शरीर का उसके अनुसार ही दी जाती है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जो डीवर्मिंग है, डीवर्मिंग का मतलब हो गया कि आंतरिक कीड़ों से बिल्कुल छुटकारा मिलना, और यदि आंतरिक कीड़ों से सारा छुटकारा मिल गया तो पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, और स्वस्थ हो गया तो पशु का उत्पादन भी बहुत बढ़ जाएगा या बहुत अच्छा हो जाएगा।
3: जी डॉक्टर साहब, तो पशुपालक भाई बहन जो आपने सुन रहा है, तो डीवर्मिंग कहीं अपना पशु ना आपने देना चाहिए कितना समय का अंतराल में, तो सा ध्यान रखो। और बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब आपने दे रहा है। डॉक्टर साहब, टीकाकरण की जब आप बात बताया, सावचेती बताया और कद कद लगवाना चाहिए यह आप बताया, तो आप लंपी स्किन रोग का बारे में भी बताया, और आप गेल का दिना की बात करा तो लंपी स्किन जो रोग है वो अपना पशुओं में इतनो फैल गया हो कि एक तरीके से महामारी का रूप में आप ये रोग ने देखा। तो सर, अब वर्तमान की अगर आप बात करा तो एकाद जो मामला है लंपी स्किन का वे आपने देख बाने मिल ही रहा है
4: जी।
3: तो वे कौन कौन सी सावचेती है जो आप रखा या के बचाव करा ताकि यो जो लंपी स्किन रोग है वर्तमान समय में वापस अपनो प्रकोप नहीं फैला सके या पशुओं में वापस यो नहीं फैल सके?
4: देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि देखो, पहले तो ये लंपी स्किन रोग है क्या। ये लंपी स्किन रोग एक वायरस जनित रोग है जो कि मुख्य रूप से गाय और भैंस में फैलता है। ये रोग मुख्य रूप से पशुओं की त्वचा को प्रभावित करता है, और साथ ही साथ ये जो पशुओं में लिम्फ नोड होते हैं और आंतरिक जो अंग होते हैं उनको भी एक हद तक प्रभावित करता है। ये रोग मुख्य रूप से मच्छर, मक्खी, जू आदि के द्वारा फैलता है, साथ ही संक्रमित पशु के संपर्क में आने से तथा दूषित चारे व पानी के सेवन से भी फैल सकता है। तो ये जब किसान, ये जब रोग होता है तो किसान भाई इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि 104 डिग्री फॉरेनहाइट से ज़्यादा का बुखार आता है गाय या भैंस को, त्वचा पर छोटी छोटी बहुत सारी गांठें बन जाती है और एक समय के बाद ये गांठें फूटने लग जाती है, और इस समय वर्षा ऋतु में ये मक्खियों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये मक्खियाँ वहाँ बैठ के अंडे दे देती है और वहाँ पर फिर कीड़े पड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें क्या है कि नाक और मुंह से पानी गिरना शुरू हो जाता है गाय भैंस के, आंखों से भी पानी आता है, दूध के उत्पादन में भारी गिरावट होती है, यानी जो दूध यदि कोई गाय या भैंस से 4 लीटर दूध दे रही है तो 2 लीटर से भी नीचे तक आ जाएगी। और इसमें क्या होता है कि भूख लगना बंद हो जाती है जानवर को। तो इसके बचाव के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? इसके बचाव के लिए पहले तो टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण या प्रभावी तरीका है, बचाव में साबित हो सकता है। इसमें क्या है कि हर 6 माह की उम्र से ऊपर की जो भी पशु है उन सभी पशुओं को टीका लगवा देना चाहिए। मच्छर मक्खियां हैं उनका

0: भाई बहना ने इतनी महती जानकारी आप दिया, एक ताई आप रो घना मानसु, धन्यवाद सा।
1: अर प्रभु भाई धन्यवाद आपा भी देवा, मधुबहन ने भी और डॉक्टर श्री राम करीर ने भी, और धन्यवाद स्वरूप कह लो या मनोरंजन के लिए कह लो, एक गीत आपा भी सुना और इया ने भी सुनावा और सगड़ा श्रोता भी सुनेला।
2: बिल्कुल।

Yes, it is.

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती बाड़ी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। अब से थोड़ी ही देर में सुनिएगा संसद की साप्ताहिक समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी है, अब आप जया भारती से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
0: अभी आपने सुना संसद में साप्ताहिक गतिविधियों की समीक्षा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। रात के 8:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत शोर इन द सिटी फिल्म से आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल और तोचीर रैना की। गीत को लिखा है समीर एंड अदल ने और संगीत दिया सचिन जिगर ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत कुछ ना कहो फिल्म से ही, आवाज़ उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म ये जवानी है दीवानी। आवाज़ है श्रीराम और शिल्पा राव की, संगीत के बोल है अमिताभ भट्टाचार्य के, और संगीत प्रीतम का।

0: घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। इस समय रात के 8:30 होने को है। अब से थोड़ी देर में सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और मेरे साथ हैं प्रशांत। प्रशांत नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: स्पोर्ट्स सेन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर से मौजूद हैं, नए फ्लेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स सेन के साथ खेल की हर बात।

0: शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन आज भारत ने 3 स्वर्ण सहित अब तक 7 पदक जीते। बॉक्सिंग में आज 7 और भारतीय खिलाड़ी फाइनल में उतरेंगे। भारत की तनुज शर्मा ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम 5वें स्थान पर रही और गुवाहाटी में डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीत के साथ शुरुआत की।
1: खेलों के आज 10वें दिन भारत ने अब तक 3 स्वर्ण समेत 7 पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में अब तक 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक आया है। पैरा शॉटपुट के F57 वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिला है। पुरुष ट्रिपल जंप में भारतीय खिलाड़ियों ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। सुनते हैं रिपोर्ट।
2: भारत जूडो में इससे पहले भी पदक जीतता रहा है, लेकिन पहले गोल्ड का
3: भारतीय मुक्केबाजों से जैसी उम्मीद थी वैसी ही शुरुआत मिली। महिला मुक्केबाजों ने महज 30 मिनट में 2 गोल्ड देश को दिलाए। पहले प्रीति पवार और फिर जैस्मीन लंबोरिया ने गोल्डन पंच लगाए। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ 5-0 से फाइनल बाउट जीती। SEC हॉल 5 में पहले राउंड में सभी 5 जजों ने प्रीति के पक्ष में 10-10 अंक दिए। दूसरे राउंड में एक बार फिर प्रीति ने सभी जजों से पूरे अंक हासिल किए। एक ओर प्रीति के हर एक पंच में दम दिख रहा था तो दूसरी तरफ डेलगाडो के पंच सही लैंड नहीं हो रहे थे। तीसरे राउंड में फिर प्रीति ने अपनी पावर दिखाते हुए सभी 5 जजों से 10-10 अंक हासिल करते हुए गोल्ड सुनिश्चित किया। उन्होंने इस गोल्ड को खास बताया।
4: I am really excited and so happy that I won gold medal here. I just gave my best. Definitely, I am aiming for LA 2028 and I hope and wish that I'll be part of LA 2028 and give my best for India. Thank you so much everyone for supporting me and motivating me. Keep supporting, keep motivating me.
3: वहीं जैस्मीन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में नॉर्दर्न आइलैंड की माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पहला राउंड 3-2 से जैस्मीन के पक्ष में रहा था, लेकिन अगले राउंड में जैस्मीन पूरी तरह से विपक्षी बॉक्सर पर हावी नजर आई और 5 जजों ने फैसला उनके पक्ष में दिया। जैस्मीन ने तीसरा राउंड भी 4-1 से अपने नाम करते हुए देश को 7वां गोल्ड दिलाया। उन्होंने यह पदक देश को समर्पित किया।
4: I want to dedicate

0: Three India and the people who supports me throughout my whole journey. This is first time in Commonwealth Games and we create a history. We all are well prepared for this moment and we need this for our country. We are very happy. My aim is to go in Olympics and I'll give my best there and also won a medal for my country.
1: लेकिन पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह मानदेन गबम का जादू ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सर जॉय डिस्किन के खिलाफ नहीं चला। जादूमणि ने अच्छी शुरुआत की और पहले राउंड में 3-2 से जीत हासिल की, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में वह अपनी लय बरकरार नहीं रख सके। दूसरा राउंड ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सर ने 5-0 से अपने नाम किया। तीसरे राउंड में एक बार फिर विरोधी मुक्केबाज ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5-0 से जीत हासिल की। इस हार से जादूमणि को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। जीत के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा किए।
2: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरे अंकल को दे दे करूंगा और BFI को, SAI को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे दे करूंगा।
1: उधर आज रात महिला 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन भी स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है लवलीना ने फाइनल मुकाबले से पहले।
3: फाइनल के लिए मैं क्वालिफाई हो चुकी हूँ तो फाइनल और भी ज्यादा टफ रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वो भी वर्ल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस बार गोल्ड लेके जा सकती हूँ क्योंकि हम लोगों का ट्रेनिंग भी अच्छा हुआ है तो जरूर इस बार गोल्ड ले पाएंगे।
1: एथलेटिक्स में भी आज का दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा। दिन का तीसरा गोल्ड एथलेटिक्स से ही आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 13.40 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुआल भी उनसे ज्यादा दूर नहीं रहे, शुभम को 13.28 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने 16.58 मीटर की लंबी छलांग भरते हुए रजत पदक पे अपना नाम लिखाया। उधर सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने 16.52 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता। हम आपको बता दें कि पैरा स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई हैं। इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीते। पैरा एथलेटिक्स में पदक जीतने का लंबा इंतजार खत्म हुआ और 3 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य समेत 6 पदक झोली में आए। पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। पैरा खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 1 गेम्स रिकॉर्ड और 1 एशियन रिकॉर्ड बनाया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
4: और कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत को बॉक्सिंग में अभी और स्वर्ण पदकों की उम्मीद है। महिला वर्ग में कुछ ही देर में साक्षी 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में रिंग में उतरेंगी। प्रिया 60 किलोग्राम, अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। पुरुषों के वर्ग में सचिन 60 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगे। पुरुषों के पोल वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स 4x400 मीटर रिले में भारतीय टीम पदक जीतने की कोशिश करेगी। जूडो में उन्नति शर्मा महिला 63 किलोग्राम और हर्ष टोकस पुरुष 81 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। बॉल्स में महिला सिंगल्स के सेक्शनल ग्रुप सी के सेक्शन सी में नैनमोनी सैकिया दक्षिण अफ्रीका की ब्रिजेट हर्सेल मान से मुकाबला करेंगी।
5: वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में कल 9वां दिन भी भारत के लिए बेहद यादगार रहा। खासकर जूडो खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इंजरी से वापस लौटे नीरज चोपड़ा ने भी जैवलिन थ्रो में बेहतर प्रदर्शन किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
6: भारत जूडो में इससे पहले भी पदक जीतता रहा है, लेकिन पहले गोल्ड का इंतजार था। इस लंबे इंतजार को आखिरकार अस्मिता डे ने खत्म किया। त्रिपुरा की 23 वर्ष की अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में शानदार वापसी करते हुए कनाडा की हेडी क्वाच को हराया। मुकाबले की शुरुआत में उन्होंने 1 अंक गंवाया और पेनल्टी भी मिली, लेकिन आक्रामक खेल जारी रखते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। गोल्डन स्कोर में अस्मिता ने निर्णायक अंक हासिल कर इतिहास रचा। अस्मिता ने बताया कि उन्हें गोल्ड जीतने का पहले से भरोसा था।
7: मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे से ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये मेरी पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स है और मैं इसमें गोल्ड मेडल जीती हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।
6: जूडो में ही 23 साल के हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ड्स को वाजा अरी से हराया। 4 मिनट तक चले मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों को अंक नहीं मिले, लेकिन अंतिम मिनट में हर्ष ने निर्णायक दांव खेलकर बढ़त बनाई और गोल्ड अपने नाम कर लिया। गोल्ड जीतने के बाद हर्ष काफी उत्साहित थे।
8: आई वर्क हार्ड फॉर दिस मोमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टुडे फॉर विन गोल्ड हियर।
6: महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में यामिनी मौर्य को इंग्लैंड की एसिलिया टोपराक के खिलाफ हार से रजत पदक से संतोष करना पड़ा। करीब 7 मिनट तक चले मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी अंक नहीं बना सका, लेकिन मैच में तीसरी वार्निंग मिलने के कारण यामिनी को शिकस्त झेलनी पड़ी। देश के स्टार जेवलिन थ्रोअर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ 85.83 मीटर तक भाला फेंका। अपने इस प्रदर्शन से नीरज संतुष्ट नजर आए।
9: मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कम बैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन भी है, आज सिल्वर मेडल है और अभी ट्राई करेंगे कि अभी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में धीरे धीरे और बनाए।
6: इसी स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। कठिन मुकाबले के बीच कांस्य जीत कर भी यशवीर खुश दिखाई दिए।
10: मेरा पहला मेडल है इंटरनेशनल में और मुझे ज्यादा खुशी है, सभी ने सपोर्ट किया है, परिवार ने, पापा, मम्मी, सभी पूरी फैमिली ने।
6: एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर ने 10 अलग अलग इवेंट्स वाले डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रचा है। वो कॉमनवेल्थ में इस स्पर्धा में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनकी बातों से इस मेडल का महत्व समझा जा सकता है। हम आपको बता दें कि 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर दौड़, 110 मीटर हर्डल, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर दौड़ वाले सभी इवेंट के आधार पर टोटल रैंकिंग बनती है। इस रैंकिंग के टॉप 3 प्लेयर्स को मेडल दिए जाते हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
5: उधर ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
4: और प्रशांत, अब कॉमनवेल्थ गेम्स से चलते हैं दूसरे खेलों की तरफ। भारत की तन्वी शर्मा ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में यू सुन को हराया। वे टूर्नामेंट में अब एकमात्र भारतीय चुनौती हैं। भारतीय महिला बैडमिंटन की नई उम्मीद तन्वी ने BWF सुपर 300 टूर्नामेंट में भारत के खिताब जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। आज ताइपे अरेना में दुनिया की 34वें नंबर की खिलाड़ी तन्वी ने अपनी सी काफी ऊंची रैंकिंग वाली 5वीं वरीयता प्राप्त वांग यू सुन पर सिर्फ 33 मिनट में आसानी से 21-17, 21-11 से जीत हासिल की और शान से खिताबी मुकाबले के लिए कदम बढ़ाया। खिताब के लिए कल उनकी टक्कर वियतनाम की गुयेन थुई लिन से होगी। अंतिम 4 के मैच में तन्वी पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आई और उन्होंने यू सुन पर एक बार जो पकड़ बनाई तो फिर विरोधी खिलाड़ी को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। 2024 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत की स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रही तन्वी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई है। खासकर पिछले 2 वर्षों में उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। पिछले साल वे ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 और गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 दोनों टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रही और उन्होंने 2024 में बॉन इंटरनेशनल और 2025 में डेनमार्क चैलेंज खिताब भी जीता था।
5: और अब धर्मेंद्र स्क्वाश पर भी बात कर लेते हैं। कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने 5वें से 6वें स्थान के प्लेऑफ में इंग्लैंड को 2-0 से हराकर 5वां स्थान हासिल किया। रुद्र सिंह ने रेखा केमिसी को 11-5, 8-11, 11-5, 11-6 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद सानवी कलंकी ने इव पार्किंग पर 11-6, 11-9, 11-9 से जीत हासिल की। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई थी। भारतीय पुरुष टीम ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था।
4: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। मेजबान देश के 8 खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला सिंगल्स वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में क्लीन स्वीप करते हुए सेमीफाइनल में 4 स्थानों पर कब्जा किया। अब सभी अंतिम चार मुकाबले भारतीय खिलाड़ियों के बीच ही होंगे। वहीं पुरुष वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने विदेशी और घरेलू चुनौती को पार करते हुए सेमीफाइनल के चारों स्थान पर कब्जा कर लिया।
5: पर अब बात फुटबॉल पर भी कर लेते हैं। धर्मेंद्र, गुवाहाटी में 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज पिछले विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ के शुरुआती मुकाबले में बोडोलैंड एफसी को 6-0 से हराया। विजेता टीम के लिए अलाउद्दीन अजराई ने हैट्रिक लगाए। बेहतरीन प्रदर्शन किया है धर्मेंद्र, गुवाहाटी में खिलाड़ियों ने
4: जी। और अब तो समय ये भी कह रहा है कि श्रोताओं से विदा लेने का वक्त हो चला है। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी धर्मेंद्र और मेरे साथी प्रशांत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
2: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
2: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
3: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44.55 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379.35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193.95 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
4: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने

0: निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1,400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
3: अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरा अंकल को दे करूंगा और BFI को, SAI को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
2: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5,000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2000

0: Right? Authorities have issued alerts to people living in nearby areas. Fishing activities have been banned along the Kerala, Karnataka and Lakshadweep coast until tomorrow. Anila Balakrishnan, Akashavani News, Thiruvananthapuram.
1: In Maharashtra, continuous rainfall has led to a sharp rise in the water levels of rivers, streams and lakes, with water entering homes in several low-lying areas due to flooding. Jalgaon district has been among the worst affected, where four people have lost their lives due to the heavy rains till now. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Cross-border trade between India and China through Nathula Pass in Sikkim resumed today, ending a suspension of more than 6 years. A report.
2: Nathula, located at an altitude of over 14,000 feet in East Sikkim, served for centuries as a vital trade route along the ancient Silk Route connecting India with Tibet. Border trade was formally revived in 2006 after remaining closed since the 1962 India-China skirmishes and continued uninterrupted until it was suspended in 2020 due to the COVID-19 pandemic. The resumption marks a positive sign in bilateral engagement between India and China. Border trade will operate from Monday to Thursday, with the gate opening at 7:30 a.m. IST, and each registered trader will be allowed to conduct trade worth up to rupees 2 lakhs per day. Officials confirmed that the existing list of approved imported and exported items and the standard operating system remain unchanged. This is Moinak Chatterjee with Manush Pratim Sharma from Akashvani News Gangtok.
1: In Himachal Pradesh, the cross-border trade between India and China also resumed through Shipkila in Kinnaur today after a gap of around 6 years. State Revenue Minister Jagat Singh Negi inaugurated the Shupan Trade Mart at Namgya, a border panchayat in Puhu subdivision of Kinnaur district, and flagged off a group of 17 traders to commence cross-border trade. National Security Advisor Ajit Doval was conferred the Lokmanya Tilak National Award 2026 at a function held at Pune today. The award, instituted by the Lokmanya Tilak Smarak Trust, was presented by Union Home Minister Amit Shah on the occasion of the 106th death anniversary of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. The Delhi BJP today lodged a complaint against leader of opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, independent MP Rajesh Ranjan, alias Papu Yadav, SPMP Avadhesh Prasad and other concerned individuals for allegedly hurting religious sentiments in the parliament complex yesterday. The BJP delegation, led by New Delhi MP Vansuri Swaraj, demanded registration of an FIR against the opposition leaders. In view of the closure of Jammu-Srinagar National Highway NH44 between Jammu and Srinagar, the railways has decided to operate a special train between Badgam and Sri Mata Vaishno Devi Katra to facilitate stranded passengers and manage the heavy rush at railway stations. At the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, Indian boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar won gold medals in their respective finals, while para-athlete Soman Rana also bagged a gold in men's shot put F57 event. We have more from our sports desk.
3: India climbed to 6th place today after its medal tally rose to 30, including 8 gold, 15 silver and 7 bronze medals. Indian boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar delivered dominant victories in their respective finals to win gold medals. Preeti claimed the women's 54kg boxing title with a commanding 5-0 victory over Canada's Scarlett Delgado. Jasmine secured another 5-0 win in the women's 57kg final, defeating Michaela Walsh of Northern Ireland. India also celebrated a historic achievement in para-athletics, with Soman Rana winning gold and Shubham Jual taking silver in the men's shot put F57 event. The result marked India's first ever Commonwealth Games gold medal in the men's shot put F57 event and the nation's first double podium finish in the category. In athletics, triple jumper Praveen Chitrawal won silver while Silva Prabhu earned bronze. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Union Sports and Youth Affairs Minister Dr. Mansukh Mandviya congratulated the medal winners. With Vikas Churagja from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekananda Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Center approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shot put F57. That is all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का इफ्तिताह किया और साइंस, टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त का सेहरा भारतीय नौजवानों को दिया। वजीर आजम ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। मरकज ने सैलाब से मुतासरा रियासतों के लिए इमदाद के तौर पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू हो गई है। ओडिशा में सैलाब का जोर जारी है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और 6 अफराद की मौत हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने सोने के तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के शॉटपुट F57 में पैरा एथलीट सोमन राणा ने भी सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइंस, टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त में नुमाया रोल के लिए भारतीय नौजवानों की सताइश की है और उन पर जोर दिया है कि वो सफाई सुथराई की मुहिम, पानी की बचत और कुदरती वसाइल को महफूज रखने के शोबों में भी अपना रोल अदा करें और भारत में बनाई गई मसनूआत तोहफे में दें। जना मोदी आज मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि हमारे नौजवानों को राह दिखाना और मुल्क की तामीर के लिए काम करने की खातिर उन्हें बाइख्तियार बनाना स्वामी विवेकानंद का नजरिया था।
5: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
4: जना मोदी ने कहा कि हमारे नौजवानों की सलाहियत की बदौलत भारत दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन मार्केट बन गया है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इख्तराआत और प्राइवेट सेक्टर के खलाई मिशन में नई नई पेशरफ्त हुई हैं। इसके अलावा जना मोदी ने ITIs, IIMs, IITs और एम्स समेत नई यूनिवर्सिटियां और कॉलेज कायम करके नीज मेडिकल सीटों की तादाद में इजाफा करके तालीम के शोबे में गुज़श्ता 12 साल के दौरान की गई तरक्की को उजागर किया।
5: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
4: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश रियासत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और मरकजी सरकार बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे और सनती तरक्की के जरिए स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के नजरिए को हकीकत की शक्ल देने के तईं पूरी तरह अहदबंद है। भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू बैनल अक्वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करने के बाद एक जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा کہ ہوائی اڈے، سڑک اور توانائی سے متعلق

से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात पेश आए हैं और कई इलाकों में पानी भर गया है। कुटायम, उडुकी और मलापुरम जिलों से आज बारिश से वाबस्ता 6 अमवात की इत्तला मिली है, जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH 44 के बंद होने के पेश नज़र रेलवे ने फंसे हुए मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने और रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ से निमटने के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान एक खसूसी रेलगाड़ी चलाने का फैसला किया है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि शाहराह बंद होने के बाद श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र कमर्शियल कंट्रोल जम्मू तवी की दरखास्त के बाद ये फैसला किया गया है। मरकजी सरकार ने टैक्स मुंतकली की एक इजाफी किस्त के तौर पर रियासती सरकारों के लिए 1,09,019 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं, जो 10 अगस्त के लिए तयशुदा महाना मुंतकली के अलावा हैं। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा है कि इस इजाफी किस्त का मकसद रियासतों को सरमाया अखराजात और तरक्याती अखराजात के अमल में तेजी लाने के लिए मजीद सहूलत फराहम करना है। वजारत की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों के लिए जारी किए गए अलहदा अलहदा दादोशुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 19,208 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं, जबकि बिहार को 10,845 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिले हैं। उधर मगरबी बंगाल को 7,866 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपए मिले हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आगाज करेंगे। मुनशियात के खिलाफ 100 हफ्तों की मुल्कगीर जन भागीदारी मुहिम शुरू होने के मौके पर इसका आगाज हो रहा है। इस प्रोग्राम में 10,000 से ज्यादा मकामात से मुल्क भर के नौजवान हिस्सा लेंगे। मस्कूरा मुहिम के तहत पूरे मुल्क में हर इतवार को हफ्तेवार सरगर्मियों का अहतमाम किया जाएगा, ताकि बेदारी को फरोग देने और एक ऐसा मुआशरा बनाने में अवाम की शमूलियत की हौसला अफजाई की जा सके, जहां मुनशियात की लानत ना हो। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने आज फजाइया के नायब सरबराह की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर उन्होंने कौमी जंगी यादगार पर गुलदायरा नजर किया और मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सूरमाओं को खिराज अकीदत पेश किया। 16 जून 1990 को एक फाइटर पायलट के तौर पर फजाइया में शामिल हुए एयर मार्शल तेजपाल सिंह को 3,500 से ज्यादा घंटों की परवाज का तजुर्बा है। वो कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। एयर मार्शल तेजपाल सिंह भारतीय फजाइया में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आज दिल्ली बीजेपी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, आजाद रुकने पार्लियामेंट राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद और दीगर मुतालिका लोगों के खिलाफ कल पार्लियामेंट के अहाते में मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के सिलसिले में एक शिकायत दर्ज की है। नई दिल्ली की रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज की क्यादत में बीजेपी के वफद ने अपोजिशन लीडरान के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने का मुतालबा किया। ग्लासगो में दौलत मुश्तरक खेलों में तमगों की तादाद 30 होने के बाद भारत आज छठे मकाम पर पहुंच गया। भारत ने सोने के 8, चांदी के 15 और कांसे के 7 तमगे जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने अपने अपने फाइनल मुकाबले में सोने के तमगे जीते। प्रीति ने खवातीन के 54 किलोग्राम के जुमरे में कैनेडा की स्कारलेट डेलगाडो को 5-0 से हराकर खिताब जीता। मौजूदा आलमी चैंपियन जैस्मीन ने खवातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में शिमाली आयरलैंड की मिशेला वाल्श को 5-0 से शिकस्त दी। पैरा एथलेटिक्स में मर्दों के शॉटपुट F57 मुकाबले में सुमन राणा ने सोने का और शुभम जोयाल ने चांदी का तमगा जीता। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मैसूर में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का इफ्तिताह किया और साइंस, टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त का सिहरा भारतीय नौजवानों को दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। मरकज ने सैलाब से मुतासरा

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक थौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूँ, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी, फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है, सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू क हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक
धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों के, वह एक हैं। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो लेखन है, उस लेखन का तरीका अलग है, लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं।

0: इसकी ताकत भी है। और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी, हिंदी एक बड़ी भाषा थी क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व तो ज्यादा था। तो देखा तो हिंदी में तमाम पत्रिकाएं थी, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सबकी पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहां ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए। और वह जानने का माध्यम ही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था जो समाज की व्यवस्था थी उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें, तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में वो किस प्रकार का बीता। और इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उन क्षेत्र के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से निश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में यानी अत्यल्प में पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेर दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
2: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
1: तुम सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते है, भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव इस ऋषि भूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है क्रूर और कराल है।
2: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
3: एक समय पर भारत भारती की स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
2: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथेय बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
1: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुज जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहां क्या हो रहा है आजकल संसार में। सुख शांति में सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
2: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड, भविष्यत खंड, मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
4: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
2: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
5: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
2: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
1: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, कलम का दम और सोजे वतन।
6: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत तो होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का। रचनाकार नवाब राय यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है।

0: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
1: जब वे सूफी वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
2: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की पांचवी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को ये भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
0: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
3: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
2: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
0: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। चिन्मया भगिनी ने अपनी संगीत शिक्षा पद्मभूषण विद्वान मदुरई श्री टी एन शेष गोपालन और कलईमा मणि विद्वान नैवेली श्री आर संतान गोपालन से प्राप्त की। आप अपने गुरु की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि के कारण आप देश विदेश की विविध संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करती आ रही हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों पर आपके द्वारा प्रस्तुत अनेकानेक कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। चिन्मया भगिनी अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम में चिन्मया भगिनी के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। चिन्मया सिस्टर्स आर वन ऑफ द लीडिंग एंड पॉपुलर डियो इन द फील्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक विद देयर मेलिफ्लुअस वॉइसेस, spirited singing and strict adherence to classicism, the duo has captured the hearts of rasikas worldwide. Chinmaya sisters are senior disciples of Padma Bhushan awardee Madurai Sri T.N. Seshagopalan and Kalaimamani Neyveli Sri R. Santana Gopalan and have successfully imbibed and observed the specialities of their guru style in their singing. They have travelled extensively and performed in prestigious venues all across India and abroad. They are A-graded artists of Akashvani and have had the privilege of performing in many special programs organized by Akashvani and Doordarshan. In tonight's concert, Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika are accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on the violin, Shri B. Ganapati Raman on the Mridangam and Shri N. Sundar on Morsing.
0: कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं नाट्य राग और रूपक ताल में हरिकेशनल्लूर मुत्तैया भागवतर की रचना शक्ति गणपतिम।
1: The concert for tonight begins with the composition of Harikeshanallur Muthaiya Bhagavathar in Raga Nattai set to Rupaka Talam Shakti Ganapatim.

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं मां मव मीनाक्षी, वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद मां मव मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट टू मिश्र चापुतालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मया भगिनी, श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। दे आर अकंपनीड बाय श्रीमती श्रद्धा रविंद्र ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा, रचनाकार हैं संत त्यागराज।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद नन्नू पालिम्पा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा मोहनम सेट टू आदितालम।

0: अभी आपने सुना तनिया वर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: यू जस्ट हियर टू अ तनि आवर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय श्री बी गणपति रामन एंड बाय श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदिताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मन में।
1: Chinmaya sisters conclude their concert with Muruganai Bajji Maname, a composition of Papanasam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters, Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam, and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashvani Chennai and was broadcast from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा

0: सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
0: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। इस समय रात के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी सुबह 5:53 पर। शुभ रात्रि, जय हिंद।